0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज के अलावा FM 103.5 MHz पर। इस आकाशवाणी श्रीनगर पेश प्रोग्राम सुबुगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबुगाही युक अजुक शुमार हच तुहन मेज़बान मुबशिर रुफाई तुंदिस खदमत मज हाजिर। प्रोग्राम आगाज करो तिलावत कलाम पाक तो अम के तर्जम सूद।

ਸ਼ੇਦ ਦਸ ਪਹਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਿਓ ਨਾ ਖਸਤ।

ہنس کھڑی لول مسر میو

0: Dön almanmaz zeri de zer, çuhaz misar miyon.
1: सुबह तेज हो सुबह का ही भोजन। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश्र होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर

बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुब के साथ मैं हूं सकीना और मेरे साथ आज हैं
1: जहूर अहमद
0: जी दोस्तों। आज कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं नसीर अहमद और इरशाद अहमद नाइको।
1: जी सकीना जी, सुबह सुबह सभी लोग बागम बाग में रहते हैं, अक्सर लोगों का मकसद यही होता है कि जल्द अज जल्द अपने काम पे पहुंचा जाए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने जहूर, लेकिन अगर इस भागम भाग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है तो कह सकते हैं कि आप कामयाब नहीं, तरक्की याफ्ता नहीं है, क्योंकि तरक्की खूबसूरत एहसासों का नाम नहीं है बल्कि खूबसूरत एहसास का नाम है, खूबसूरत दिल का नाम है।
1: जी सकीना जी, सही दुरुस्त फरमाया आपने। हम इंसान हैं, सोशल एनिमल हैं, तो दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी लोग आपके रास्ते में हैं उन पे भी ध्यान दीजिए।
0: बिल्कुल 100% सही बात कही आपने जोर, और हम कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से उस रफ्तार पे ब्रेक लगाइए जिसमें आपका टारगेट सिर्फ पैसा ही पैसा है, क्योंकि रफ्तार वही भले जिससे सांस ना फूले और रफ्तार वही सही जिससे किसी का नुकसान न हो।
1: सो दोस्तों, मखसूस रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल हम एक मखसूस रफ्तार के साथ ही म्यूजिकल जर्नी में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी दोस्तों, कश्मीर के मौसम का क्या कहना। बाहर का मौसम है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मौसम ऐसा है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग जोग दर जोग इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं सैलानी, और ये कह सकते हैं कि बाकी कंट्री से भी लोग कश्मीर आ रहे हैं यहाँ के हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए। और हम चाहेंगे कि ये साल शानदार रहे। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो दुआ करते हैं जरूर कि ये साल सबके लिए अच्छा रहे, हर तरीके से हर शोबे में तरक्की हो। हम यही चाहेंगे, ये हमारी बेस्ट विशेस सभी के लिए,
1: यही दुआ।
0: अब चूंकि आज 10 जून है तो आज आलमी सतह पर इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन मनाया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि तहजीबों के दरमियान मकालमे का बैनुल अक्वामी दिन, और ये भी है कि आज के दिन का थीम होता है वेडनेसडे है, बुध का दिन है, स्पोर्ट्स हमारा एक होता है कि मेन स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे आगे चल के, या इस इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे दोस्तों ने देखा होगा, उनका दरवाजा खटखटाया होगा किसी ने इस चीज के लिए कि आपके घर में कितने अफराद हैं, तो आपको कुछ क्लू मिला?
1: हाँ, मर्दमशुमारी के बारे में बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल सही समझा आपने, इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने दोस्तों को देंगे, क्योंकि मर्दमशुमारी इस साल की शुरू हो गई, और ये कह सकते हैं कि मौजूदा कौमी जो मर्दमशुमारी है वो किसी भी मुल्क की तरक्की, मनसूबाबंदी और वसाइल की तकसीम के लिए बुनियादी अहमियत रखती है।
1: जी जी, मौजूदा दौर में मर्दमशुमारी की अहमियत ज्यादा बढ़ती है
0: जी,
1: क्योंकि इससे पता चलता है कि किस जगह पे कितने लोग रहते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी उसी हिसाब से उन्हें सहूलियात जो है फराहम की जाती है
0: या मुयसर की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मर्दमशुमारी के अदादोशुमार की बुनियाद पर नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और दीगर मंसूबे भी फिर तश्कील दिए
1: जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ तबकात जो है उनकी माशी और समाजी हालत क्या है, उसका भी अंदाजा लगाया जाता है।
0: और ये भी अपने दोस्तों को बता दें कि मर्दमशुमारी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस साल किया जा रहा है। आप डिजिटल इंडिया में इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन की जाती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन में अपनी जो मालूमात है वो फराहम कर सकते हैं, आप डिटेल ले सकते हैं क्या है क्या नहीं है।
1: जी सकीना जी, इस अब तक भारत में 15 बार जो है सेंसस हुआ है
0: जी,
1: और पहली बार अंग्रेजों के दौर में 1882 में
0: जी
1: जो पहला सेंसस हुआ है
0: जी,
1: और आजाद हिंदुस्तान में 1951 में पहली मर्दमशुमारी हुई है।
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने सुनने वालों को दी, और ये भी शेयर करना चाहेंगे कि साल 2011 में अब तक आखिरी मर्दमशुमारी अंजाम दी गई, उस वक्त मुल्क की कुल आबादी 120 करोड़ के आसपास थी, और उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जब उस टाइम 20 करोड़ वाली वो रियासत थी तब।
1: जी, 2011 में मर्दमशुमारी में 62 करोड़ मर्द थे और 58 करोड़ औरतें दर्ज की गई। तब लिटरेसी रेट मुल्क की 74% दर्ज की गई।
0: और जहूर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुल आबादी रियासत की उस वक्त 1,25,00,000 दर्ज की गई थी।
1: तब जो
0: इकट्ठे था। तो ये आंकड़े हैं, अब चूंकि अब मर्दमशुमारी हो रही है उसके क्या आंकड़े हैं वो तो आने वाले दिनों में सभी दोस्तों को पता चल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि बाकी जानकारी के अलावा या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो शेयर करने से पहले एक कश्मीरी गीत अपने सुनने वालों के लिए पेश करते हैं।

0: बात होगी स्पोर्ट्स की। दुनिया भर में जारी खेलों की बड़ी सरगर्मियां जारी है और इनमें सबसे नुमाया जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ रखने के लिए साइक्लोथॉन्स, गोल्फ टूर्नामेंट्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए टूर्नामेंट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं।
1: जी, अपने वादे की बात करें तो ये दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि वादे में डल झील समेत दीगर जो आबी जखायर है उनको भी फरोग दिया जा रहा है और साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स, ये जो पानी के खेल है, उनको भी फरोग दिया जा रहा है। इनमें वाटर स्कीइंग, कयाकिंग और कनोइंग के मुकाबले शामिल हैं जो मकामी नौजवानों के लिए एक कह सकते हैं कि फॉल सरगर्मी है। और इसके अलावा अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में मशगूल रखने और मनुष्यात से दूर रखने के तहत महकमा जो सेहत है, महकमा खेल जो है, वो जम्मू कश्मीर की जानिब से कई इवेंट्स मुनक्कद कर रहा है। इनमें थंगटा, कराटे, वुशो, टाइकोंडो की बाकायदा कोचिंग और टूर्नामेंट्स भी शामिल है। सो कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं, कोशिश करें पढ़ाई के साथ साथ। हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा 5, 6, 7 साल का भी होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको खेलों की तरफ रागब करें, वक्त की बहुत अशद जरूरत है। और ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों को, आप कुछ कहना चाहे थे जरूर क्या,
0: ताकि उनकी जो सेहत है वो जिस्मानी नशोनुमा वो
1: बेहतर तरीके से हो जाए।
0: कश्मीर में रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स जो है, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स दुनिया के खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स में
1: शुमार होते हैं।
0: इसके अलावा सड़कों पर मैराथन और साइकिल रेसेस जैसे इवेंट्स भी बाकायदा से मुनक्कद हो रहे हैं
1: और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कश्मीर में जब हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही था कि आने वाला क्या है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो कर क्या रहा है, हुकूमत कर क्या रही है। जब हम नशा मुक्त की बात करते हैं तो बच्चे का अटेंशन पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ मबजूल कराना, ये मैंने पहले भी कहा कि वक्त की अशद जरूरत है। जब हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट ये कहेंगे कि बच्चा ही गस कुनी रुच वायते लागू सो लगे तेले, जब पेरेंट्स इस बारे में सोचेंगे बचपन से ही बच्चा, यूजुअली हम जब बच्चे की छुट्टी होती है हम कहते हैं कि ये उधम मचाने के लिए है, ननिहाल जाने के लिए है, ददिहाल जाने के लिए है। लेकिन अगर उस पीरियड को भी हम पॉजिटिव वे में देखें, बच गए लेते मगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सुतरा 10-15 अगर कोर्स बेहतर है, कुछ वो सीखे, फिर आगे चल के अगर वो 6 साल का है 10-20 दिन उसको किसी कोच के पास भेजा, उसमें वो ट्रेनिंग की खेलेगा कूदेगा और बच्चों के साथ वो देखेगा बाहर की दुनिया क्या है। तो उन एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल रखना बहुत जरूरी है। हम आज लाइव शो पयाम सुबह में 10:30 से 11:30 तक कोशिश करेंगे, ये जो आज पेरेंट्स से वो सुने वो शो, एक कोच को हमने बुलाया है, आपका बच्चा जिस भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहता है उनको एक हिसाब से गाइडलाइन मिलेगी।
0: जी सकीना जी, दुरुस्त फरमाया आपने, आज के दौर में ज्यादा खेलों की अहमियत बढ़ रही है क्योंकि अब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आम हो गया है, बच्चे ज्यादा स्मार्टफोन में अपना टाइम लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है इनका जो जिस्मानी नशोनुमा है वो उस
1: बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि वक्त की अशद जरूरत है कि हम इस चीज को समझे। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल मंतजमीन को भी चाहिए कि अगर एक दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तो वो होनी चाहिए, क्या इसके बच्चे स्कूल बैठे रोजन, घर बैठे रोजन, की यह है कि पत कोई स्टेडियम इनडोर या आउटडोर ये किसी खेल में पार्टिसिपेट करें। देखो ये एक बात हमने नोट्स की है, ये मैं बारह शेयर करती हूँ कि जब बच्चा 8, 9, 12 में जाता है मुंशी क्लास से बंद कर, तो ऐसे देखा गया है कि गार्डन्स में बैठा रहता है, ब्रिजेस पे बैठे रहते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए अगर ये दोस्तों से गेंद ये दुआ की तो वो एक अलग पॉजिटिव वे में उसकी नशोनुमा होगी और आगे बढ़ेगा। और ये कहते ही हैं कि स्पोर्ट्स इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है।

0: जी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो आप एंजॉय कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लाइव शो एंजॉय कर रहे हैं आप। पयामी सुब आपके साथ है, आपकी मेजबान सकीना और आज मेरे साथ हैं
1: मैं जुहर अहमद।
0: जी जुहर बताइए।
1: जी सकीना जी, आज 10 जून है। अकवामे मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 10 जून को तहजीबों के दरमियान मुकालमे का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जाता है।
0: जी
1: यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। इसका बुनियादी मकसद ये है कि माशरों और तहजीबों में के दरमियान जो बाहमी एहतराम है
0: जी
1: उसको फरोग देना है।
0: ये कह सकते हैं कि बाहमी एहतराम, अमन और इफाम व तफहीम को फरोग
1: देना है
0: ताकि दुनिया में जो अदम बर्दाश्त है और नफरत है
1: नफरत
0: उसका खात्मा किया जा सके। बिल्कुल सही। और ये कह सकते हैं कि ये जो दिन है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की बुनियाद पर 10 जून को तहजीबों के माबेन मकालमे का बैन अल-अक़वामी दिन इसको करार दिया। और
1: इसका मकसद दुनिया भर में जंगों, नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत की जगह रवादारी और मुश्तरका इंसानी इकदार पर फजा कायम करना है।
0: जी पुरमन फजा तभी कायम होगी जब हम दूसरे मजाहिब, दूसरे जो आस पड़ोस में लोग हैं मुख्तलिफ मजाहिब से, मुख्तलिफ फिरकों से, एक दूसरे की कदर करेंगे, एहतराम करेंगे। और ये भी कह सकते हैं सकाफती तनो का एहतराम ये नजरिया पेश करता है कि कोई एक तहजीब दुनिया की हाकिम नहीं हो सकती बल्कि तमाम तहजीबें इंसानी तारीख और विरसे का अहम हिस्सा है। जब हम दिमाग में ये चीजें लेके आगे बढ़ेंगे तब मुझे आपसे शिकायत नहीं होगी, आपको किसी और से शिकायत नहीं होगी। जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी फिरके हैं,

सबका एहतराम होना जरूरी है। और ये भी देखिए, जब हम कहते हैं कि वक्त की जरूरत है, ये भी हम देख रहे हैं कि जंगो जदल, इंसाफ नहीं है, सुकून नहीं है, उसके लिए हम दुआ करते हैं जिस भी मुल्क में या जिस भी धरती पे ऐसा है। एक दूसरे का जब एहसास हो, अमन हो, तो आगे बढ़ना तरक्की से वो दिल को भाता है और एक हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कह सकते हैं कि हम दुआ करते हैं सभी अमन से रहे, भाईचारे से रहे और जिंदगी में आगे बढ़े।

0: तो व्रत कल्चर स्टार्ट करा।
1: तो इसमें जो है प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डिस्पोजेबल आइटम्स जो हम इस्तेमाल करते हैं
0: बहुत ज्यादा। सो कुशी शुनो खांद्रस में सुस्तु प्लास्टिक को आसान छ अगर डिस्पोजेबल करो तो एक प्रत कुशी छ प्लास्टिक को आसान।
1: और माहिरों का कहना है कि हर मिनट दुनिया के समुद्रों में एक कोड़े के ट्रक जितना प्लास्टिक शामिल हो रहा है।
0: अच्छा।
1: और 2050 तक माहिरों के मुताबिक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है।
0: देखिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, आंकड़े भी बताए गए कि 2050 तक समंदरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। और ये इंफॉर्मेशन देखिए आपने ये बहुत अच्छी बात छेड़ी जोहर, ये मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि मुख्तलिफ कंट्रीज ऐसी है जो आसाइश की चीजें कभी इन्वेंट करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक ऐसी कंट्री है जापान, वहां पे रेकिन सेंटर फॉर इमर्जेंट मैटर साइंस की मौकिकीन ने नवंबर 2024 में एक इनकलाबी प्लास्टिक तैयार किया। आपने प्लास्टिक की बात छेड़ी तो जहन में ये बात आई, कहीं पे थी कभी पे पड़ा था, तो उसमें जो समंदरी पानी में सिर्फ 2 से 3 घंटों में ये मुकम्मल तौर पर घुल जाता है और कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ता है। और ये जो मवाद होता है ना समंदर में कीमियाई, वो उसमें कीमियाई तौर पर टूट जाता है और बैक्टीरिया इसे मुकम्मल
1: खत्म कर सकते हैं।
0: और जबकि मट्टी में ये 10 दिन में खत्म होकर किसी बढ़ाने वाले गजाई ऐसा खारिज करता है।
1: ये प्लास्टिक महफूज, मजबूत और किसी भी शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: और ये कह सकते हैं कि ये रिसाइकल होने वाला है।
1: जी रिसाइकलेबल है।
0: तो देखिए जब हम शादियों की बात करते हैं, अब ये प्लास्टिक इस्तेमाल हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास नियमुल बदल भी है, लेकिन कोशिश पूछना वाला कौन चीजों का आदत गो पत्र छूटन की तेज बचिन पे उसका आदत आसान पत्र तक टाइम लगा, मगर ये तुथ आदत इस तो मगर ये सेहत कह अलार्मिंग सिचुएशन आज जो पंचहस तीन आमंदर मज ग हंद प्लास्टिक ज्यादा तो अच्छ थोड़ा
1: बेहतर गए कि अगर डिस्पोजेबल आइटम इस्तेमाल कम कर कम कर प्लास्टिक इस्तेमाल तो तम चीज कर ज्यादा इस्तेमाल बार बार बार इस्तेमाल बाकी चीज
0: तो पयाम सुबह में बातें जारी रहेंगी लेकिन इस वक्त कह सकते घड़ी का इशारा है कि खबरों का टाइम हो रहा है। और दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि बस हमारे संग बने रहिए, देश विदेश की जानकारी भी आप लेते रहिए, अभी हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। सो बने रहिए हमारे संग आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम स्टेशन और प्राइमरी चैनल से।
2: ये छे आकाशवाणी आदाब सुबह दून 8 बजे मुबशिर रुफाई बोजनावि खबर गोड खास खास खबरन पे नजर। सरकारन विकसित भारत जी राम ची एक्ट दुरुस्त मुल्कस मज लोगू कर बापत रियासतन तो यूटी एन खतर जायद 9.5 खरब रोपियन हिंद बजट तजवीज थम। श्रीनगर लेह कौमी वत पे तमीर कर जोजीला टनल हंद ब्रेक थ्रू मुकम्मल कर आमुत। भारतन पाकिस्तान मकबूज जम्मू कश्मीर अंदर पुलिस कारवाई हिंस मजम्मत करान अत 30 नफर मार सपदनस पे तशवीश बोमुत। तो नीट यूजी दाखिल इम्तिहान यी 21 जून दुबारा हन तलीमी हिंद वजीर तो सेहत महकमिक वजीरन हत इंतजाम जायज। सरकारन एम जी नरेगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण याजि वी जी जी राम जी एस मबर पा तब्दील कर बापत रियासतन तो यूटी एन खतर 9.54 खरब दुनमथ करोड़ रोपिन हिंद अबूरी बजट तफवीज कर तजवीज थम। ये एक्ट गुरुस्त मुल्कस मज अवली जुलाई पे नफिज अमि कथिंद एलान कुर गमी तरक्की हिंद वजीर शिवराज सिंह चौहान नवी दिल्ली मज सारनी रियासतन तो मरकज कन जेर इंतजाम इलाकन हिंद जरात कन वजीरन सत अख वर्चुअल मीटिंग कर पिमो वो सरकारन ये एक्ट लोगू कर नजर तल थवित तमाम रियासतन तो यूटी एन पेशगी तैयारी कर हिदायत दुत। जम्मू कश्मीर मजीर लद्दाख सलावन वाजन कौमी शहरस पे तमीर सपदान जोजीला टनल हंद हतमी ब्रेक थ्रू आव राहत मुकम्मल कर सड़क ट्रांसपोर्ट।

0: जी सकीना जी, हम नगमे भी सुन रहे हैं। आज शादियों का जो है सीजन चल रहा है,
1: बिल्कुल तो बाहर आने के साथ ही फंक्शंस पे एक हिसाब से वो शुरुआत हो जाती है। और 10 मिनट चला ब्रेक ही

रात 9:30 प्रोग्राम पेश होगा सन फनकार। मेहमान हैं मारूफ गुलूकार गुलजार अहमद मीर। प्रोग्राम की मेजबान हैं गुलाम रसूल आकून। गजलों का हफ्तावार फोन प्रोग्राम हेलो महफिल गजल पेश होगा शब 10:00 मेजबान इरम कुरैशी। स्पॉन्सर प्रोग्राम जोर तो जहां और ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9:00।

सुबह 9:30 बजे शोबे खबर की पेशकश एनडीए सरकार के 12 साल मेहमान हैं असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स हकीम इरफान रशीद, मेजबान तारिक रातर। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश होगा सुबह 10 बजे। प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर अब्दुल रहीम आमा बानहाली से मुतल्लिक है, तहरीर मरगूब बानहाली।

अली मोहम्मद शेख और साथी छक रो पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। बस भी निस्वारस्त होगी 12:40 पर। मेहमान हैं डॉक्टर शबीर अहमद माकरी। प्रोग्राम का मौजू है नशावर चीजों से नुकसान। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4 बजे और

0: पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा

0: क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था।

0: हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम बलाबू एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय तुछु लाइव शो भोजन पयान सुबह सकीना जी इस वक्त इस बोझना हो पानी समय के कोशिश
4: बस ये तो वन भी जरूर की वारिया कत्तिच करनी चुना सिला गुने बोझना हो बर्थ एम बर्थ पद करो क्या कहते
3: अहना ठीक है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रूषित सुनो,
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टाइम सुबह
5: जी।
4: मैं हूं आपका मेजबान जहूर अहमद और मेरे साथ हैं
5: सकीना
4: जी। सकीना जी, प्रोग्राम जारी रहेगा, हम अपने सामान के साथ और भी चीजें
5: शेयर
4: करेंगे
5: जी।
4: गाने होंगे,
5: इन्फॉर्मेशन
4: होगी,
5: गेस्ट भी होगा।
4: हाँ, तो फिलहाल जो है घड़ी इशारा कर रही है कि हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरों का बुलेटिन सुनेंगे
5: जी। जी जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपके साथ तो हैं मुख्तलिफ जानकारियों के साथ, गेस्ट के साथ, और खासकर एक छोटे हीरो से हम आज के लाइव शो में बात करेंगे ठीक लगभग 9:15 पे या 9:10 पे। तो आपसे कहना चाहेंगे वो छोटे हीरो कौन से, अंदाजा लगाइए, सस्पेंस थोड़ा सा रखते हैं। तो फिलहाल खबरें आकाशवाणी दिल्ली से।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जीराम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार मुद्दतेकार 4399 दिन हो गई है।

0: इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनव्वो पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क्यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इकतसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि ख़ानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वजीर आजम की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इकतसादी तौर पर फाल भारत की उनकी दूरअंदेशी को खिराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये हुसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है, बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी क़यादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इकतसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वजीर आजम मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वजीर आजम मोदी को एक मिसाली शख्सियत और क्यादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वजीर आजम मरापे ने पापुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज़ बनकर उभरा है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के एक मामूली पस मंजर से शुरू होने वाले सफर से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की क़यादत करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इकतसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी और इकतसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम हुसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबी मुल्क की आज़ादी के बाद की तारीख में एक अहम लम्हा है। साबिक सदर जमहूरिया ने एक रोजनामे में लिखे गए एक मजमून में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि 2014 की अब तक की मुद्दत में हुक्मरानी, सियासत और अवामी बहस में हिंदुस्तानियत की जानिब एक फैसला कुन तब्दीली देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी ने भारत की तहजीबी विरासत की शान में इजाफा किया है, उन्होंने जमहूरी रिवायात को उजागर किया है और कौमी इदारों में अवामी एतमाद को मुस्तहकम बनाया है। नायब सदर

0: सीपी राधा कृष्ण ने वजीर आजम मोदी को उनकी हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ओहदे पर रहने की ये मुद्दत कार महज वक्त की पैमाइश नहीं है, बल्कि इससे मुद्दत के तरक्याती सफर में यकसर तब्दीली लाने वाले दौर की अक्कासी होती है। जनाब राधा कृष्णन ने यह भी कहा कि जिस तरह अब्राहम लिंकन ने गुलामी की जंजीरों से लाखों लोगों को आजाद कराया था, हालिया दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को शदीद गुर्बत के शिकंजे से बाहर निकालकर लाखों कुनबों को सबकी शमूलियत वाली तरक्की, उम्मीद, मौके और वकार बख्शा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आजाद भारत के सबसे तवील अरसे तक मुसलसल मुंतखब होने वाले वजीर आजम बनने पर साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि ये कामयाबी काफी अहम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सियासी मुसाबकत, मखलूत हुकूमत की सूरत हाल और मीडिया की मुसलसल जांच पड़ताल के दरमियान हासिल हुई है। एक अंग्रेजी रोजनामे में अपने मजमून में जनाब नायडू ने स्वच्छ भारत, गरीबों के लिए मकानात, जनधन खातों, फवायद की बराह रास्त मुंतकली, यूपीआई अदायगी और आयुष्मान का सहरा नरेंद्र मोदी की क्यादत के सर बांधा। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: इस मीटिंग में इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों और वजीर आजम समेत बीजेपी की आला क्यादत के शामिल होने की तवक्को है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकज ने मुल्क में देही तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देही तरक्की की मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने एमजी नरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपए पहले से ही मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक उबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने ये बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। ये मीटिंग विकसित भारत जीरामजी पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की 1 तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी

0: फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदराबास और किशिम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कोवी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफ़र 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियाँ।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी श्रीनगर सामहीन पेशकदमत छो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो और जहां और।
3: प्रोग्राम जू और तो जहां और तो वातनावान डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, द डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
4: دوپے ہسا ژے بوزت مے کیا سا باسان کپٲرۍ تام یری سپدن واجی
5: خبر ژے کت کن نانو
4: ونان کیا سا بو باسا آسان تھوت وت وت اتن کشان
5: ژے چھے گمژ کت یا وچھک تس بچاری کیا چھ اتن کش کش گومت پیٹ چھس یمے ورک ہی وتھان ات ژے کس فکر چھے
4: ہا یہ من کتے اوسم پائے تمی چھ تکلیف ات سو چھ مغلاج سمت بارت گام ات چھ ونان سوریس
5: پس پس چھ ات علاج
4: ان ستا ات کیا ڈاکٹر نسیرز گروپ اپ یونائنین پنچ کرما ہسپتال وے چھ ات
3: سمینی محترم السلام علیکم پروگرام زو اور تو جہاں اور ہس تہس خدمت من حاضر سمین حکمت گئی وزڈم دانائی نت ونہوس پن دماغ عقل مندی سان استعمال کرن تو مرض کس صورتس من امی اظہال کرن سون حکیم صاحب اگر ونکن تہ دود کپ کن سات چی سہ ون کہ امی گو کم قسم گاس کھومت پت اگر ازکن طبیبن پرژھو زی ڈب دودچ چائے تو گو دودچ چائے مز کیا فرق چھ جوابن ونو نہ چھ امی خاطر کان ٹیسٹ آمت بناون تو نہ کان کرائٹیریا فکس آمت کرن ات ونو سائنسی جواب مگر سامین اگر وزڈم عقل ہند استعمال کرو مشاہد استعمال کرو اس ہکو کن تہ مسلس حل ژھانڈت سامین الرجی الرجک زکام شانش اچھن ہز الرجی یا الرجک کنجکٹوائٹس چھ تیتھ امراض یمن سائنسک جواب چھ کہ یتھ دود ہکو اس کنٹرول کرت البتہ مکمل علاج چھن ممکن مگر قدرتی علاج یونانی علاج یا آیورویدک علاج چھ یمن تمام مسائلن

0: भारतीय पैरा क्रिकेट टीम में जगह बनाकर जम्मू कश्मीर बिलखुसूस शोपाया का नाम रोशन कर दिया है।
1: तो ये थी आज की सुर्खियां। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। लाइव शो जारी है पयाम सुबह, और कभी कभी सिग्नेचर ट्यून्स जहन में जब आ जाते हैं तो पूरा पता चल जाता है कि इस वक्त क्या पेश होने वाला है। एक आवाज आपने सुनी, देखिए क्लिक हो गया जोर से कि लगा कि न्यूज पेश होने वाली। अभी टाइम है फिलहाल, ये गजल आप समाप्त कीजिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

0: क्या शेड्यूल रहता था, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी।
1: मैम मैं तो पहले सुबह जल्दी उठता था और स्कूल जाता था
0: जी,
1: फिर वहां से आके मैं कुछ फ्रेश होता था, फिर खाता था, उसके बाद में अपना स्टेडियम जाता था, वहां से आके मैं पढ़ता था
0: जी। ये कब से आप कराटे सीख रहे हैं?
1: 2 साल से।
0: 2 साल से?
1: यस मैम।
0: 2 साल के बच्चे तो पेरेंट्स को तंग करते रहते हैं मोबाइल के लिए, खाना नहीं खाना, इधर करना उधर करना, तो कैसे आपने ये कराटे सीखा, कैसे शौक पैदा? 2 साल में किसने आपसे कहा था कि कराटे सीखो?
1: मैम मेरे टीचर जो है फिरदौस अहमद सर
0: जी,
1: और बच्चों को देख के मेरे को शौक भी आया खेलने का
0: जी। तो सहज जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो
1: यस,
0: वहां से आके कितने बजे आपकी छुट्टी होती है?
1: मैं 4 बजे घर पर जाता हूँ।
0: तो फिर होमवर्क होता है?
1: वो मैं शाम को करता हूँ खेलने के बाद, वहां से आता हूँ जब एकेडमी से।
0: एकेडमी से आके ये कब तक, कितने घंटे का होता है ये आपका पीरियड वहाँ पे सीखने का? घंटा, 2 घंटा?
1: 1 घंटा।
0: 1 घंटा होता है?
1: यस मैम।
0: तो आपके पेरेंट्स का आपके लिए कैसा सपोर्ट रहा?
1: बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और वो कहते हैं कि मैं, हम आपको आगे भी सपोर्ट करेंगे, आप ऐसा ही करते रहो।
0: देखिए अक्सर बच्चे सहज खाने पीने में बड़े क्या कहिए वीक है या जिद करते हैं। देखिए आग तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और बातों बातों में आपने कहा कि खाना खाता था वहां से आके ये आप तो नहीं मम्मी को तंग करते हो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब चूंकि आप स्पोर्ट्स में आ गए हैं।
1: नो मैम नो।
0: जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप पढ़ो भी और पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलो
0: जी। तो इस वक्त आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी, क्या कहना चाहेंगे मम्मी के बारे में, क्या उसने आपके लिए किया है, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को करना चाहिए? अक्सर पेरेंट्स करते हैं नहीं, बच्चे को खाली पढ़ाई करनी है और स्पोर्ट्स में नहीं भेजते हैं।
1: वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत खुश हुए जब मैंने मेडल निकाला, और वो बोलते हैं ऐसे ही करते हो आगे भी सपोर्ट करेंगे, इससे अच्छा आउटपुट हमें और दो।
0: अच्छा आगे चल के क्या करना है, ये जो आप सीख रहे हैं कराटे ये जारी रखना है ऐसे ही?
1: यस मैम जारी रखना है।
0: गोल्ड मेडल लाएंगे कि नहीं?
1: यस मैम।
0: बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर। और आपसे बात करने का सहज मुझे ऐसा ही एक कल जहन में आया कि नहीं आपका हक बनता है, आपकी पीठ थपथपानी, आपको कंग्रेचुलेट करना है, और ये भी कि बच्चों को पता चले कि आप सीख सकते हैं छोटी उम्र से ही, जब आपको कोई खेल पसंद है उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। और अक्सर माँ बाप को लगता है कि ये खेल है, आजकल खेल प्रोफेशन भी बन सकता है ना?
1: यस मैम।
0: तो आपके लिए सहज आपको बेस्ट विशेस देते हैं, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे कश्मीर को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका फ्यूचर खेल में ब्राइट रहे, पढ़ाई में ब्राइट रहे, हमारी यही विशेस है आपके लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सहज।
1: थैंक यू
0: जी। जहूर क्या इस नन्हे मुन्ने बच्चे के बारे में?
2: जी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अब कश्मीर के बच्चे बाहर जाते हैं, मुल्क के बाहर जाते हैं, अच्छे मेडल लाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: देखिए ये छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, बातों से ही हमारे सुनने वालों को पता चला होगा, और मकसद यही था कि अक्सर छोटे बच्चे लेकिन ये है कि आप खेल प्रोफेशन आप बना सकते हैं, बच्चे को आप इसके आगे इसमें एक्सेल करा सकते हैं, अगर आपके बच्चे को लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। आपने कई ऐसे स्पोर्ट्समैन देखे हैं जो कश्मीर से, अभी मैंने एक क्रिकेटर की बात की, वसीम अहमद पर्रा, उनको क्रिकेट में सिलेक्ट किया गया है नेशनल्स के लिए। तो यही सोच के हम ये बात कर रहे हैं कि सहज से कि आपको कैसे मोटिवेट किया गया, आप अपना टाइम कैसे निकालते थे स्कूलिंग से आके फिर सीखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो इस बात से आगे बढ़ेंगे कि सहज के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी खेलों की तरफ
2: रागब करें, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे कश्मीर के लिए, तो ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको खेलों की तरफ रागब करें और वो आगे जाए।

0: करके इसमें नाम कमाए,
1: नाम का अपना नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। फिलहाल आपको बता दें कि थोड़ी ही देर के बाद आप खबरें सुनेंगे और खबरों में आपको ये बता दें कि आप कश्मीरी में भी सुनेंगे, उर्दू में भी सुनेंगे और 9:30 बजे कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 10 बजे भी एक प्रोग्राम होगा और 10:30 बजे फिर से खेलों की बात होगी और टारगेट हमारा यही यूथ होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, यूथ होंगे कि किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो आगे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एक कोच को हमने दावत दी है और उम्मीद करते हैं कि उन बातों से आपको फायदा ही मिलेगा। अब खबरें, बस हमारे संग बने रहिए।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

0: तो क्या हो जाता था, बहुत सारे ये जो जब हम फाइल करते हैं कि ये कंफ्यूजन हुआ करता था कि टैक्स ईयर आपका पुराना है और असेसमेंट ईयर आपका ये है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये कंफ्यूजन 2 साल का जो है ये इसको हम खत्म करके टैक्स ईयर बना देते हैं, कि आप अगर पिछले साल का भी टैक्स असेसमेंट भर रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2026 से आपका टैक्स ईयर माना जाएगा, यानी कि 26-27 आपका टैक्स ईयर है। और
1: ये कहां तक जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर कौन से मंथ तक, अगले साल कहां तक जाएगा?
0: ये तो मार्च तक जाएगा, ये तो अगले साल मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन असेसमेंट ये होगा 25 का। लेकिन उसको आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, क्योंकि जब आप कहीं टैक्स भरेंगे आपको पूछेंगे आपने अगर 25 का भरा है तो हाँ जी हमने भरा है, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर 26-27 था। सो ये अगेन लगता है कि ये इसमें क्या फायदा है, इसमें ये फायदा है कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हुआ करते थे और इससे फ्रॉड्स भी बचती है काफी, इसमें ये जो लीगल लूपहोल्स जब आती है इतने सेक्शन से तो काफी सारे जो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं व्हेन दे आर फाइलिंग देयर टैक्सेस एंड ऑल, वो सरकार ने मद्देनजर रखते हुए इसको खत्म कर दिया है।
1: हकीम इरफान साहब, TDS जो है या TCS रूल्स जो है, TDS के बारे में पहले हम बात करेंगे, किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स रिफॉर्म्स के अंडर आता है TDS?
0: TDS का मतलब है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए की कमाई की है और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 10% आपका टैक्स बनेगा इस 1 लाख रुपए की कमाई में, तो आपको जब आप टैक्स भरेंगे तो जो कंपनी आपको पे कर रही है वो आपको 1 लाख रुपए नहीं देगी, वो आपको 10,000 रुपए पहले ही कट देगी और वो आपको 90,000 हाथ में दे देंगे। तो क्या उससे आपका नुकसान होता है? नहीं, क्योंकि जब आप एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आप वहां पर मेंशन करते हैं मेरा जी 15,000 टैक्स बनता है लेकिन मैंने TDS भरा था, यानी कि मैंने पहले ही 10,000 रुपए भरा है, तो इन द एंड ऑफ द ईयर आपको सिर्फ 5,000 रुपए भरने हैं। तो ये अब इसमें आपकी आसानियां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आसानियां पैदा की है वो ये है कि आपको अब ये स्ट्रीमलाइन सारा प्रोसेस हो गया है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूंगा, फॉर एग्जांपल फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए हम पहले फॉर्म 16A भरते थे, फॉर्म 16B भरते थे, उसको चेंज करके अब आई थिंक फॉर्म 130 और समथिंग, इसमें थोड़ा अगर डिफरेंस होगा क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट इसमें जो जब आप टैक्स भरते हैं तो उसमें काफी सिंप्लीफाई किया गया है टर्मिनोलॉजी को भी और सिंप्लीफाई किया गया है इस टैक्सेशन भरने का प्रोसेस को भी, ताकि इन द एंड साल के एंड में जब आप टैक्स भरे तो आपको ये कार्यदारद वाला मामला ना लगे, ये इतना आसान मामला लगे और हर एक आदमी जो टैक्स भर रहा है उसको आसानी से ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो मैं करने जा रहा हूं वो हर कोई आदमी आराम से कर सकता है।
1: इरफान साहब, ये TCS रूल्स क्या है जिसको भी स्ट्रीमलाइन किया गया?
0: जी, TCS में हम देखते हैं जैसे इसमें मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर था फॉर ओवरसीज टूर पैकेजेस, ये अब इसमें जब आप बाहर जाते थे फॉर एग्जांपल और आप खर्चा करते थे अपने फैमिली बाहर मीन्स आउटसाइड द कंट्री जब आप जाते हैं और आप क्या करते थे, आप 5% आपका TCS बन जाता था। फॉर एग्जांपल आपको अगर 1 लाख रुपए का टूर पैकेज बनता था और आपको जो टूर ऑपरेटर है वो आपको 1,05,000 रुपए बढ़ता था, अब वो इन्होंने 2%
1: पे करना होता था
0: और वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपको पहले ही टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने इंडिया ने इसको फ्लैट 2% कर दिया है, तो आपकी अगर फॉरेन काइंड ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स है वो थोड़ा सस्ता हो गई है उस वजह से। तो ये इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें अब बड़ा रिलीफ मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको कोई ज्यादा काइंड ऑफ इन्होंने जो उसको नाम दिया है इट्स लाइक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यानी कि आपको जो ट्रांजेक्शन है TCS जो है वो आपके 2% कर जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन में भी आपका जो अगर फॉर एग्जांपल जो बाहर जाते थे लोग और वो वहां पर पढ़ाई के लिए जाते थे उसमें भी उन्होंने रिड्यूस किया है 2% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा। तो उस वजह से भी अगर पहले आपका खर्चा ज्यादा होता है अब थोड़ा कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, तो इस वजह से आप एनकरेज हो जाएंगे ज्यादा बाहर टूर में भी। ये April 1, 2026 से ये अप्लाई हो गया। जी जी।
1: तो इरफान साहब, दूसरी बात जो है, जैसे हम कॉर्पोरेट और मार्केट रिफॉर्म्स की बात आती है, इस सिलसिले में इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे सामने इनको?
0: देखिए, खासतौर ये कॉर्पोरेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम टर्म यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं इस कंट्री में और लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, जो हम देखते हैं कि जब हम मार्केट्स में इकोनॉमी में कभी कभी स्ट्रगल करती है, अभी भी हम देखते हैं देर आर सम चैलेंजेस द इकोनॉमी इज फेसिंग डिस्पाइट द फैक्ट अभी जो फिगर्स आए हैं गवर्नमेंट के फिगर्स से और ग्रोथ रेट इज लाइक पॉजिटिव एज पर द गवर्नमेंट फिगर्स दैट हैव कम अभी इस वीक में जो फिगर्स आए हैं, लेकिन देर इज अ स्ट्रगल। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उन्होंने बोला कि कुछ मेजर्स लें आप ताकि आपकी जो इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो एंड ऑल, तो उस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए दिस इज द लार्जर आइडिया ऑफ एंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार ने क्या किया है कि ये जो मल्टीपल आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको मल्टीपल टैक्सेस भरने पड़ते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब

0: मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स डिजाइन किया हुआ है और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट जो है उसको 15% से 14% कर दिया है। और ये जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्सेस है ये कॉरपोरेट या इन्वेस्टमेंट जो करते थे या यहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे उनको भरना पड़ता था टुवर्ड्स द सरकार, उसको 1% कम कर दिया गया। और 1% इसलिए कम कर दिया गया है कि ताकि उनको बोले जो आपके पुराने लॉज थे उसको शिफ्ट होके आप एक नए लॉ में आ जाएंगे, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपको 1% बच रहा है, देखिए 1% हमारे लिए तो काफी कम लगता है लेकिन जो कॉरपोरेट्स हजारों करोड़ों और लाखों करोड़ों का काम करते हैं उनके लिए 1% का जो बचत है वो बहुत ज्यादा है और दैट गोज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। सो उनके लिए ये एनकरेज करने के लिए, उनको नए सिस्टम में लाने के लिए उनको सरकार ने ये एक सुविधा दी है या आसानियां उनके सामने रख दी है। और इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि आपको जो मैन्युफैक्चरर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है उनको भी सिंप्लीफाई किया है इस नए टैक्स लॉ ने। और साथ ही साथ जो फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में जो लोग थे तो वो कभी क्या करते थे कि ये जो प्रमोटर वगैरह क्या करते थे वो कभी जो टैक्स लूप होल को यूज करके आप कभी क्या करते थे कि आप शेयर उठाते थे और एक लीगल लूप होल को एक्सप्लॉइट करके वो उनको उस कमाई को वो टैक्सेशन में नहीं लाते थे। लेकिन अब क्या किया है सरकार ने नए लॉ में, आपको जो आप प्रमोटर जो है जो आपके जो जब ये शेयर आप लेते हैं उसमें जो आप कमाई करेंगे उसको आप कैपिटल गेन्स टैक्स में लाया है, यानी कि आपको उस पर भी कैपिटल गेन्स में आपको उसमें टैक्स लगेगा। तो दिस इज अ लिटिल टेक्निकल लेकिन ये है कि ये कॉरपोरेट्स को मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए है, ये जो शेयर बाजार वगैरह है इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन ना हो उसके लिए, तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है गवर्नमेंट ने किसी फ्रॉड का कोई शिकार ना हो, तो दिस इज लाइक व्हाट गवर्नमेंट हैज ओवरऑल वर्कड अपॉन।
1: तो क्या इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट और मार्केट रिफॉर्म्स की जो आपने बात की गवर्नमेंट इज डूइंग इट यू नो एक लॉन्ग टर्म है, एक बहुत ओवरऑल एक मेजर रिफॉर्म है, कि क्या इससे ओवरऑल क्या लोगों की ओवरऑल जो है मतलब पीपल्स लाइवलीहुड पीपल्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पे किस तरह का असर आप देखते हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है?
0: देखिए मैं ये कहूंगा कि पहला साल जब किसी भी रिफॉर्म का होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट इमीडिएटली। तो अभी इस साल बहुत सैलरी एम्प्लॉयज को कंफ्यूजन है कि हमें हाथ में कितना आएगा, अलॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमारी तो इंक्रीमेंट हो गई है लेकिन पैसा हाथ में कम आ रहा है, सो बिकॉज दैट इज दे आर अडेप्टिंग टू द न्यू टैक्सेशन लॉज। तो ओवरऑल द टैक्स लॉज आर मेड टू काइंड ऑफ रिड्यूस द बर्डन ऑफ काइंड ऑफ द पीपल, कि जो ये जब हम रिटर्न भरते हैं तो उसमें बर्डन कम हो जाए और आसानी, जैसे मैंने कहा, आसानी पैदा हो। लेकिन मसला यह है कि इसमें गवर्नमेंट की ईमानदारी बहुत जरूरी है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगी, और साथ साथ में जो कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े टैक्सेस पे करते हैं क्या उनके ऊपर उतनी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और ये सिर्फ एक मिडिल क्लास को बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारे जो कंसर्न है आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये एड्रेस होंगे, और ये रिफॉर्म जिसके कि अभी पहले पहले दिन है और इसमें अभी थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़े से चैलेंजेस है, थोड़े से कंफ्यूजन है, वो आगे जाके ये थोड़ा क्लियर हो जाएंगे और आई एम श्योर पीपल विल अडैप्ट टू द न्यू फॉर्म्स।
1: तो इरफान साहब, जैसे आपने कहा कि ये बहुत सारे समझने के लिए है कि कई चीजें समझनी है, टेक्निकल चीजें, या जब तक अडेप्टेशन हो जाए, क्या इस सिलसिले में किस तरह का अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के सेंसिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग जिनको ये टैक्स पे करना है चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह का काम किया जाना चाहिए इस सिलसिले में?
0: सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखिए जब आप कोई स्टेप उठाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो एंड यूजर है या जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो 100% एफिशिएंट हो। उसके लिए मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस हुआ करता था ये उन्होंने एक्सटेंड किया, अब कुछ और, ये पहले 50% एचआरए देते हैं और 50% एचआरए इन्होंने कुछ और शहरों में एक्सटेंड किया। लेकिन इसके लिए मैंने जो कहा कि आपको जो अवेयरनेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉर्पोरेट एक बड़ा तबका हमारा प्राइवेट मुलाजिमों का है जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए रखने चाहिए फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑफकोर्स फॉर द कॉर्पोरेट्स देयर हैव टू बी प्रोग्राम्स जहां उनको समझाया जाए कि ये उतना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त कॉर्पोरेट्स भी अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने में कि ये फंक्शन कैसे करेगा, एंड दे आर नॉट एबल टू कन्वे टू देयर एम्प्लॉइज द वे इट शुड बी कन्वेड। तो आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू डू द सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स, द प्राइवेट कंपनीज हैव टू कम फॉरवर्ड विद द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और खुद पहले, जैसे हम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन समझना वो है कि जो आप दूसरे को समझा सके। तो अगर आप जो ये हमारे एचआर कंपनीज है या एचआर हेड्स है हमारी प्राइवेट कंपनीज के या इवन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, दे हैव टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव, एंड द गवर्नमेंट ओवरऑल हैज टू बी प्रोएक्टिव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड that this is a pro-people tax reform और ये कैसे उनको benefit देगा। मुझे लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम टैक्स भरने वाले हैं अगले साल का, सब लोग अभी तो टाइम है, तो पीपल विल स्टार्ट काइंड ऑफ फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स एंड ऑल, एंड आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट इस कम्युनिकेशन में कामयाब हो गई तो द नंबर ऑफ द रिटर्न्स विल ड्रेस्टिकली इंक्रीज।

0: दिस ईयर।
1: हकीम इरफान साहब, व्हाट अबाउट द कंप्लाइंस? जो कंप्लाइंस जो होता है, जो रूल्स टैक्स पे करने के लिए जो कंप्लाइंस का जो एक पॉइंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस?
0: देखिए, कंप्लायंस का तो यही है कि मैंने जैसे कहा कि ये जो नया फ्रेमवर्क आया है, तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन की तरफ इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो पैरामीटर्स जो चेंज हुए हैं, या इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बहुत सारे बाहर जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि इन्होंने 6 महीने का इनको ग्रेस पीरियड दिया है कि अगर फॉरेन में अकाउंट है और आप उसमें 20 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 महीने तक आप हमें वो आराम से इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा ये अकाउंट है एंड ऑल, और फिर हम आपको पुराने पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके आगे इस पे आपको टैक्स या वट एवर इज द प्रोसेस वो आपको लगेगा। तो कंप्लायंस में आई थिंक इट्स अ टू वे प्रोसेस, जैसे गवर्नमेंट का भी एक अपना रोल बन जाता है, और ये जो इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनाए हैं उस पे भी अपना एक उसका असर होगा आगे जाके, एंड देन यू विल सी दैट पीपल विल फॉल इन लाइन। खासकर मुझे लगता है कि इसमें मिडिल क्लास से ज्यादा कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है, जो बड़े इदारे वगैरह है, उनको
1: आम लोग तो टैक्स पे करते हैं जनरली।
0: देखिए, जो बेचारे आम लोग मिडिल क्लास है वो तो करते ही करते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स होते हैं। अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉई मुलाजिम है या गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसके पास ऑफिस में ही इतना सारा
1: से तो सोर्स पे ही डिडक्ट हो
0: गया। वन इज दैट, एंड आल्सो द अकाउंटेबिलिटी इज वेरी स्ट्रांग एट दैट लेवल। लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लायंस का मामला बड़े कॉर्पोरेट्स के बारे में, उस पे सरकार को फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स उन्होंने की है, और मैं जो ये कह रहा था अभी, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो आसानियां पैदा की है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे है, अगर आप रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, तो आपको टैन का काम नहीं, आप पैन कार्ड पे ही वो कर सकते हैं, तो ये चीजें कंप्लायंस के लिए ही बनाई गई है। और उसके ऊपर जो CBDT है या बाकी एजेंसीज है, देन दे विल वर्क ऑन इट कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करें।
1: हकीम साहब, व्हाट अबाउट दिस एमनेस्टी? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एमनेस्टी इन टैक्स रिफॉर्म?
0: देखिए, मैं एमनेस्टी की मैं वही कह रहा था कि जो मैंने अभी मेंशन किया आपको, फॉर एग्जांपल ये जो बाहर जिनके अकाउंट है, कंट्री से बाहर जिनके, उनको बोला गया है कि आपको पिछले बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, आप टेंशन ना ले, अगर आपके पास 20 लाख से ज्यादा अमाउंट है अपने एक फॉरेन अकाउंट में, आप हमें वो उसको आइडेंटिफाई करें, इन्फॉर्म करें, फिर हम उसको पीछे का हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सारी जो एमनेस्टीज दी गई है, या इसी तरीके से मैंने जो कहा कि आपको जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं कि डेडलाइंस को एक्सटेंड किया है फॉर एग्जाम्पल, और इसी तरीके से जो मैंने कहा कि फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर की जो बात हमने की कि आपको एसेट अपना डिस्क्लोजर करना है, या सेफ हार्बर फॉर लिटिगेशन एग्जिट, यानी कि आपके जो इवन इफ द टैक्स डिपार्टमेंट डिस्कवर्स एन अंडर रिपोर्टिंग और एरर आपकी फाइलिंग में, वो आपको रीअसेसमेंट का मौका दे देंगे। तो ये एमनेस्टी है इन द सेंस कि अगर आपको गलती भी हुई है तो वो आपको इसके लिए पकड़ेंगे नहीं, यानी कि आपको हर किसी चीज में क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले हम हर किसी चीज से डरते थे कि अगर मैंने ये गलती थोड़ी सी कर दी तो सरकार
1: ये होगा।
0: डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर वायलेशंस है कंप्लीटली, तो माइनर वायलेशंस को कंप्लीट डीक्रिमिनलाइज किया गया है, तो आपको डरने की बात नहीं है, ताकि गवर्नमेंट कहे कि लोग आगे आ जाए तो इनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा छोटी छोटी चीजों पर। तो ये सारी चीजें जो सरकार ने की है, तो ये मैं जो कंप्लायंस की बात करते थे वो है, और एमनेस्टी इज टू गेट मोर पीपल इन टू गिविंग टैक्सेस एंड मोर एंड मोर पीपल टू काइंड ऑफ टू मेक क्लियर what they are earning, how many bank accounts they have and all. तो वो public करने के लिए, government की notice में लाने के लिए ये काफी transparency लाई गई है।
1: जी, what about this digital intervention or digital push, how it is helping all these implementation of tax reform, what is this about?
0: डिजिटल पुश जो हम देखते हैं, देखिए पहले क्या होता था, हम जब टैक्स की बात करते थे तो हमारे दिमाग में वी विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट द पेपर्स और वो इतने सारी फाइल्स एंड ऑल दैट। तो सरकार ने क्या किया है कि आपका जो सारा काम है उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि लार्जर आइडिया ऑफ
1: ईज ऑफ डूइंग थिंग्स,
0: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जब हम करते हैं, तो उसमें उन्होंने सारा वो डिजिटाइज जो किया है, प्रोसेस सारा किया है, तो उसको जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम दिए गए हैं वो उसमें लाया गया है। तो मेनली जो हमारा डिजिटाइजेशन का जो स्टेप है, दैट इज अगेन टू मेक मोर एंड मोर पीपल फ्रेंडली, जो बनाने के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और मैंने जो कहा कि आपके ये जो सेक्शन 536 तक 800 कुछ कम किए गए हैं, तो आई थिंक दैट इज टू मेक इट मोर ऑनलाइन फ्रेंडली, ताकि ऑनलाइन भी अगर आप जब कोई रिटर्न भरे तो उसमें आपको कोई मुश्किल पैदा ना हो।
1: तो हकीम इरफान साहब, व्हाट अबाउट दिस टैक्स एग्जेम्पशन जो है ऑन कंट्रीब्यूशंस, डोनेशंस, हाउ इट इज ओवरऑल हेल्पिंग, और हाउ इट वुड हेल्प इफ इट इज एनकरेज्ड मोर एंड मोर, गवर्नमेंट इज गिविंग एग्जेम्पशन ऑन कंट्रीब्यूशन डोनेशन टुवर्ड these social service organizations are there, those are government registered or voluntary organizations there, NGOs are there. So how it is benefiting, and is there a requirement of any more reforms in this?
0: देखिए टैक्स बेनिफिट आपको देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे नए जो ये हमारा रिजीम है इसमें

0: आप 100% टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अगर आप मांग सकते हैं 100%, तो फॉर एग्जांपल आप नेशनल डिफेंस फंड में या प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में या स्पेसिफिक स्टेट लेवल डिजास्टर रिलीफ फंड में, दीज आर द प्राइमरी हाई प्रायोरिटी नेशनल डिफेंस एंड रिलीफ फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एवरी सिंगल रिपू यू गिव रिड्यूसेस योर टैक्सेबल इनकम टू द एग्जैक्ट अमाउंट. तो इनमें अगर आप बरतते हैं, आप अपना डोनेशन देते हैं, तो उसमें एनकरेज हो जाता है आपको. अगर आप किसी न किसी तरीके से नेशन बिल्डिंग में काम करते हैं, चाहे वो आप सोशल सेक्टर में हो, चाहे आप ये में जो रिलीफ फंड्स वगैरह है सरकार के, तो उसमें आप 100% क्लेम कर सकते हैं अपना रिलीफ रिफंड, एग्जेम्पशन भी कर सकते हैं और रिफंड जो
1: रिफंड
0: जो आता है उसमें भी आप कर सकते हैं. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके जो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट्स हैं, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ने किए हैं, देखिए द होल आइडिया इज टू हैव एन आइडिया कि पैसा कितना कहां जा रहा है, किसका जा रहा है, और उसमें आपको ये जो दो नंबर पैसा जो मार्केट में है उसको ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं उसको उस पर थोड़ा कदगन लगाने के लिए सरकार ये एनकरेज करती है. लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी प्राइवेट एनजीओ जो रजिस्टर्ड है उस पर आप 50% का, जैसे मैंने कहा अभी इनिशियल डेज है तो अभी एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अब नया सीखना है, तो उस हिसाब से 50% आप रिफंड क्लेम या एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने इसलिए की है ताकि आप जो पैसा किसी और गलत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको फिर अकाउंटेबिलिटी आगे नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आगे अकाउंटेबिलिटी है, उसको अपना रिफंड भरना है, उसको अपना टैक्स फाइल करना है या उसको अपना रिटर्न देने हैं सरकार को. तो सो दिस इज टू काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस ऑफ दिस जो मनी मूवमेंट है वो सरकार के पूरी नजर में रहे.
1: तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सरकार भी एनकरेज करती है कि जब आप डोनेट करते हैं, जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं towards all these you know public interest you know institutions, public interest activities. तो इसका मतलब भी तो अवामी फलाह बहबूदी है ना, लोगों का, लोगों की तो इसमें तो comfort है, इसका development है, उनके लिए राहत है. Is it like this?
0: नहीं, वो तो है ही. और इनफैक्ट सरकार जो करती है वो आपके काइंड में डोनेशन को फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज दें, कोई गोल्ड दे या कुछ, वो एनकरेज नहीं करती है. सरकार बोलती है कि आप पैसे दे दो और पैसे पे आप फिर exemptions क्लेम कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल.
1: नहीं, why so? Why not this kind? What is the, the difference?
0: क्योंकि क्या हो जाता है फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं किसी ने सोना दे दिया, सोने का वैल्यू कितना है, वो उसका प्रोसेस कैसे हम करेंगे और फिर अकाउंटेबिलिटी किसको ठहराएंगे, सुनार कौन होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो अब देने वाले बोलेगा मैंने 10,000 का जुमका दे दिया था, सुनार बोलेगा इसका वैल्यू 5,000 था, जिसने लिया वो बोलेगा नहीं ये तो 2,000 का भी मेरे पास था. सो काइंड ऑफ स्टॉप ऑल. और इस बीच में काफी पैसा यहां वहां हो सकता है, इस आड़ में काफी पैसा गलत जगह पे लग सकता है. तो सरकार इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन इट एज मच एज पॉसिबल.
1: तो हकीम इरफान साहब, व्हेन पीपल पे टैक्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन व्हाटएवर, वेदर इट इज थ्रू जीएसटी और जो टीडीएस है, टीसीएस है, जो भी है, सरकार की रिस्पांसिबिलिटी इसमें किस तरह से आपको दिखती है एज एन इकोनॉमिक यू नो एन ऑब्जर्वर इकोनॉमिस्ट, किस तरह से आप देखते हैं सरकार को इसमें क्या जिम्मेदारी है जो टैक्सेस आते हैं?
0: देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो टैक्सेस आते हैं सरकार को ये इंश्योर करना है कि दिस इज द पीपल्स मनी. पब्लिक एक्सचेकर इसका नाम ही इसलिए ये पब्लिक के लिए है, तो इस पब्लिक एक्सचेकर को कोई पर्सनल एक्सचेकर ना समझे और उसको इंश्योर करना है कि सरकार के लिए जो करप्शन हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, चाहे वो सरकार में या गैर सरकारी
1: किसी भी तरीके से
0: है, किसी भी तरीके का जो करप्शन है, द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट द करप्ट फेस द लॉ. और फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी कंपनीज है वो सरकार को चूना लगा के वो सेफ
1: इवेड
0: ना करे और सेफ्टी मोड में ना जाए. तो सरकार को ये इंश्योर करना है, क्योंकि तभी लोगों का भी भरोसा बढ़ जाता है. अगर आप किसी को 1,00,000 रुपए पे पकड़ते हैं और 1,00,00,000 करोड़ वाले को छोड़ देते हैं तो ये लोगों के मन में जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है. सो द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर द कैच द बिग फिशेस एंड एंश्योर द एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स सो टू द बिग फिशेस, सो दैट आपका जो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस है लोगों का आपकी सरकार
1: और
0: में,
1: एक एक छोटी लेवल पे एक टैक्स पेयर है उसका भरोसा,
0: ही नोज दैट उसका पैसा सेफ है. अगर कोई आपका 10,00,000 रुपए साल का कमाता है और वो सरकार को 1,00,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए देता है तो उसको पता है कि ये कहीं सही रस्ते में लगा है. और अगर वो देखता है कि किसी नेता या किसी बड़े कॉरपोरेट या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट या बाबू के घर पे गया है और वो महल बना रहा है और मेरा मोहल्ले का स्कूल प्राइमरी हेल्थ सेंटर
1: सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है,
0: तो दैट इज वेयर द रिजेंटमेंट कम्स इन. ये जो हम फिर सड़क पे लोग निकलते हैं या फिर हमें बुरा लगता है कि लोगों को गुस्सा क्यों है, तो यही वजह हो जाती है कि अगर आप सड़क बिजली पानी जो आपने प्रॉमिस किया है कि टैक्स पेयर को, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द लाइफ, अगर आप उसको प्रोवाइड कर पाते हैं तो फिर ये टैक्स पेयर का मनी सही रास्ते में लगता है. अगर ये नहीं हो रहा है और ऐश कुछ परसेंट ऑफ लोग कर रहे हैं और गरीब आवाम के पास

0: अब टैक्स पेयर के पास, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है, उसके पास वापस कुछ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ नेगेटिव रिएक्शन। और ये जो लॉज का फिर जो कोर मतलब है, देखिए इतना सारा मेहनत जो सरकार ने की है, ये मेहनत इसलिए की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीमलाइन हमारी इकोनॉमी हो और स्ट्रीमलाइन हमारा मनी मूवमेंट हो, हमें समझ आ जाए पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, तो ये सारा स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर इसका बेसिक पर्पज लूज हो जाएगा। द एम ऑफ दीज रिफॉर्म्स विल नॉट रीच टू द लास्ट माइल एज आई सेड। सो द पॉइंट इज दैट द सरकार का जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है दैट हैज टू बी स्ट्रेंथन, एंड द करप्शन दैट इज देयर इन द सिस्टम इट इज देयर, हम ये नेगेट नहीं कर सकते हैं। सरकार को कोशिश करनी है कि सिस्टमेटिकली को आहिस्ता आहिस्ता इसको रूट आउट करें, ताकि कॉन्फिडेंस जो लोगों का है सिस्टम में वो वापस रेस्टोर हो जाए और रेस्टोर के साथ साथ बढ़ भी जाए। एंड इफ इट्स नॉट हैपनिंग देन दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द बैंक।
1: हकीम इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वैल्यूएबल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन ऑन टैक्स रिफॉर्म्स। आपका इस प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया तारिक साहब।
1: इसके साथ ही टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से इस खसूसी प्रोग्राम

0: बढ़ भी जाए, एंड इफ इट्स नॉट हैपनिंग देन दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द मैन.
1: हकीम इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वैल्यूएबल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन ऑन टैक्स रिफॉर्म्स. आपका इस प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
0: शुक्रिया तारिक साहब.
1: इसके साथ ही टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से इस खसूसी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. सामीन, आप अपनी आरा और फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर रिकॉर्डेड मैसेज या तहरीरी तौर या रिटन फॉर्म में भी भेज सकते हैं, जिससे हम अपने प्रोग्राम और न्यूज प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं. मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर्स इशफाक शाह और कौशिकी कश्यप के अलावा रिकॉर्डिंग मोमिनीन मुख्तार अहमद शाह और शौकत अहमद गिलकार के हमरा इजाजत दें. खुदा हाफिज.
2: समीन, आप टैक्स रिफॉर्म्स से मुतल्लिक शोबे खबर का तैयार शुदा ये प्रोग्राम सुन रहे थे. होस्ट तारिक राथर. यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलाव FM 103.5 MHz पर समय सुबह 10 बजे.

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाईजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप रह दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
2: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझा सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रे दोहा आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश्र सब्दा।
3: سامنے محترم تو اسو بوزان صوفی تیرے شی وچارن پٹم اپنی پروگرام صوفی صدا

0: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सेमिनार आपको बता दें कि आप समाप्त कर रहे हैं इंटरैक्टिव लाइव शो पयाम सुबह, आज सुबह 7:10 से ये 11:30 तक जारी रहेगा। आइए समाप्त करते हैं इस प्रोग्राम का बाकी हिस्सा।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुब।
3: यारो यारो
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। पयामे सुब
4: सुनो सजना,
2: पयामे सुब।
0: जी दोस्तों, लाइव शो पयामे सुब के साथ मैं हूँ सकीना। मॉर्निंग से आपके साथ है, मेरे साथ जोर भी थे, अब लाहौता ने ज्वाइन किया, वो भी अपनी ड्यूटी संभाल रही है। लेकिन अब 10:30 से 11:30 तक एक गेस्ट से हम बात करते हैं। आज चूंकि आपको पता ही है वेडनेसडे जो बुध का दिन होता है वो स्पोर्ट्स का दिन होता है, स्पोर्ट्स की बात होती है, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो जाए। अब ये कहे कि आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले चंद बातें मैं आपसे शेयर करूं। पहले तो ये कि कंट्रोल रूम में आ चुके हैं अब अल्ताफ अहमद, मोहम्मद शफी मीर और आईपी सिंह, और हमारे असिस्टेंट है इस वक्त अब्दुल कयूम। और ये मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि गर्माई जोन जम्मू में तातीलात हो चुकी है, स्कूल्स की 1 जून से छुट्टियां हो चुकी हैं। अब कश्मीर में जूं जूं गर्मियां बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी छुट्टियां होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं सबको, खासकर पेरेंट्स को, ये छुट्टियां होती है ये मुख्तसर अरसा दरअसल एक इम्तहान है कि हम अपनी जो न्यू जनरेशन है उनकी तरबियत को कितनी अहमियत देते हैं। अगर ये वक्त हिकमत, मोहब्बत और सही रहनुमाई के साथ गुजारा जाए तो बच्चों की शख्सियत में पॉजिटिव तब्दीली पैदा की जा सकती है। लेकिन अगर ये दिन जो छुट्टियों के हैं गफलत और बेमकसदियत और स्क्रीन की नजर हो जाए तो इसके मनफी असरात देर तक बाकी रहते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि छुट्टियों को सिर्फ आराम का नहीं बल्कि तरबियत और इसलाह का बेहतरीन मौका समझे। यूजुअली देखा गया है कि जब छुट्टियां होती है, समर वोकेशंस होती है, बच्चों के जहन में भी ये बात बिठाई गई है, उन्हें उधम करना है, ननिहाल जाना है, घर में ऐसे ही दिन भर जो उनका मन आए वो करना है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये वक्त हुनर के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। हर छुट्टी में अपने बच्चों को कोई ना कोई एक हुनर जरूर सिखाया करें, इसलिए कि तालीम अगर शोर फहम का जरिया बनता है तो हुनर भी बिलाशुबा इंसान को बोका नहीं सोने देता, इसको भी आप पेशा बना सकते हैं। तो अब बारी है अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की। तो आज के गेस्ट हैं इंडियन पंचेक स्लेट फेडरेशन के चीफ कोच इरफान अजीज बोटा। इरफान अजीज बोटा साहब का शो में वेलकम करते हैं।
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
5: सभी सुनने वालों को।
0: जी बताइए कैसे हैं आप, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं?
5: माशाल्लाह। और अभी सुबह का जस्ट कंजेस्टेड ट्रैफिक,
0: जी
5: रश ओवर,
0: जी
5: रेस्ट इज ओके।
0: सुबह सुबह मैंने ये बात छेड़ी कि बागम बाग होती है कैसे काम पे पहुंचा जाए, और सबका टारगेट है जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पहुंचा जाए, और पैसा भी कमाना है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपनी होती है। बहरहाल स्पोर्ट्स की बात चली, बच्चों की बात चली, इरफान साहब आप चूंकि चीफ कोच है इंडियन पैनचेक स्लेट फेडरेशन के, ये एक मार्शल आर्ट है।

0: मार्शल आर्ट में जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग और वुशो भी आता है। पहले आप तफसील से ये बताइए सुनने वालों को कि ये इंडिक पैंजिक सिलेट फेडरेशन होता क्या है, फुल फॉर्म में कि आम इंसान एक समझित और इसके में से चुन के नस्कात कराना।
1: एग्जैक्टली मैं जो लिटरी तर्जमा हमारा है पैंजिक सिलेट का
0: जी,
1: इसका मतलब है पैंजिक मींस खुफिया
0: जी
1: और सिलेट मींस दाव, एक खुफिया दाव है। ये बेसिकली युद्ध कला है साउथ एशिया की, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई दारुस्सलाम ये कंट्री से ये डेवलप हुआ है। ये मलाई आर्ट है
0: जी।
1: मलाई का जो सारा बेल्ट है वहां से डेवलप हुआ है, क्योंकि पुराने जमाने में एक हर कौम डिसाइड होती थी कि उसमें कितनी क्षमता है जंग लड़ने की।
0: अच्छा,
1: तो हर कौम का एक अपना खुफिया तरीका होता था जंग लड़ने का,
0: डिफेंड करने का जी।
1: अपने खुफिया तरीके होते थे अपने इनको तैयार करने के लिए
0: जी जी।
1: तो इस आर्ट को धीरे धीरे इन्हीं युद्ध कलाओं को स्पोर्ट्स में बदला गया, सो दैट कि एक बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेबिलिटी दोनों ही बरकरार रहे और बच्चा एक जानियाब हो एक नए मुफीद चीज से, जो फिजिकल एक्टिविटी में उसकी हेल्प करे, जो डिसिप्लिन में उसकी हेल्प करे और जो उसकी मेंटल पीस
0: है पीस के लिए।
1: Exactly.
0: जी।
1: तो उस उन्हीं चीजों के लिए इन मार्शल आर्ट्स को डेवलप किया स्पोर्ट्स में
0: जी।
1: जैसे आपने अभी बोला मार्शल आर्ट में दो चार गेम का,
0: देखिए जैसे हाँ आपकी बात हम थोड़ी सी रोक रहे हैं, कराटे
1: जी
0: जहन में आता है कि मुश वाले किह वाले, ये जो इंडियन पैंजिक सिलेट फेडरेशन है इसमें वुशो में भी बॉक्सिंग में भी हम पंच मारते हैं, ये क्या गेम?
1: ये सब मार्शल आर्ट एक ही है
0: जी, बिल्कुल।
1: मार्शल आर्ट्स में क्या होता है स्टाइल अपना अपना,
0: सही,
1: हर किसी का अपना स्टाइल। जैसे हम डॉक्टरी पेशे में ले तो हर डॉक्टर तो सारे ही होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: एवरीवन इज बीइंग कॉल्ड डॉक्टर, बट द थिंग इज कि कोई आंखों का डॉक्टर,
0: कोई पेडियाट्रिशियन
1: का डॉक्टर,
0: कोई
1: गायनिक है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, ऐसी इसी तरह मार्शल आर्ट में अलग अलग स्टाइल है
0: जी।
1: हर किसी को अपना एक डिफरेंट स्टाइल है और वो उनके कौम की छवि,
0: अच्छा,
1: उसको मतलब डिस्प्ले करता है। लाइक इफ वी से जूडो इट्स फ्रॉम जापान
0: जी,
1: तो इसमें जापान की कल्चर की झलक है
0: जी।
1: इसी तरह जैसे कोरिया में ताइक्वांडो है, तो या अभी हम बात कर रहे हैं पैंजिक सिलेट की, इट्स फ्रॉम इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में ये कल्चर है, ये एक लाइफस्टाइल है
0: जी।
1: और लकीली आजकल दुनिया छोटी हो गई है, ग्लोबल हो गई है,
0: सही।
1: तो ग्लोबल दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपना
0: जी,
1: तो हम पूरे दुनिया का अडेप्टेशन कर सकते हैं, उनके कल्चर्स को अडेप्ट कर सकते
0: हैं।
1: लाइक इफ वी से लाइक इंडिया
0: जी,
1: इंडिया में भी अपने कुछ मार्शल आर्ट्स है, जैसे हमारा लोकल दंगल है
0: जी,
1: या कल्लारी पट्टू है
0: जी,
1: ऐसे बहुत सारे आर्ट्स है जो इंडिया के भी अपने हैं, या जैसे वी रिसेंटली हमने कबड्डी को इंट्रोड्यूस करा है,
0: सही, दुनिया में, सही, सही,
1: इंडिया से
0: जी, बिल्कुल,
1: या हॉकी हमारा नेशनल गेम है,
0: सही,
1: बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, या बैडमिंटन है जो जिसको इंडिया ने मतलब इन्वेंट किया था
0: जी,
1: लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है,
0: सही बात है।
1: तो ये छवि है स्पोर्ट्स की जो पूरे दुनिया में एक मैसेज लेके जाती है कंट्री की। उसी तरह हर स्पोर्ट्स का अलग अलग एक दायरा है
0: जी,
1: उसी दायरे में हम आते हैं मार्शल आर्ट के दायरे में। अब हमारे में डिफरेंस क्या है, हमारा जो मार्शल आर्ट है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफेस्ट मार्शल आर्ट। वाई? क्योंकि इसमें फेस अटैक्स नहीं होते हैं
0: जी,
1: इसमें आपको सिर्फ पॉइंट लेना है, आपका मुद्दा नहीं है कि आप अपने दुश्मन को घायल कर दो, आप अपने दुश्मन को डिसेबल कर दो
0: जी,
1: आपका काम है सिर्फ अपना हुनर का मुजाहिरा करना।
0: अच्छा,
1: तो इसमें हमारे पास पंच भी चलता है, किक भी चलता है और थ्रो भी चलता है
0: जी,
1: बट इन अ सेफर प्रोस्पेक्ट।
0: वो कैसे?
1: बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट ऑन द फेस।
0: अच्छा,
1: क्योंकि फेस एक ऐसी चीज है जिसको हम पूरे शरीर का हेड ऑफिस बोल सकते हैं
0: जी, जी, सही,
1: फेस पे चोट पूरे शरीर पे चोट लगती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वी रिस्ट्रिक्टेड अवर प्लेयर्स की नहीं
0: जी,
1: पे नहीं मारना है।
0: अच्छा,
1: ना तो आपका किक जाना चाहिए ना आपका हाथ ही जाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर गलती से आपने मार भी दिया तो आप माइनस में चले जाओ, आपको माइनस मार्किंग होगी। सो टू मेक इट सेफ, और वी आर इन अ पाथ फॉर ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में जाने के लिए कंपलसरी है कि सेफ्टी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए
0: जी जी,
1: और सेफेस्ट मार्शल आर्ट्स हो. तो ओलंपिक में जाने के लिए वी नीड टू मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स.
0: जी इरफान साहब, उस बारे में हम बात करेंगे कि ओलंपिक्स

0: में जाने के लिए क्या करना है ये भी आपसे जानेंगे कि हमारे बच्चे छोटे छोटे आपकी एकेडमीज होगी पूरे कश्मीर में, उनको वहां ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक ट्रैक सभी दोस्तों के लिए आप भी एंजॉय कीजिए।
1: हर प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3S, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या?
2: स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ।
1: शाबाश।

0: जी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और लाइव शो पयाम सुबह आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी मेजबान सकीना के साथ। गेस्ट है स्टूडियो में इंडियन पैंटिक स्लेट फेडरेशन की चीफ कोच इरफान अजीज बोटा साहब, और हम बातों बातों में पहुंच गए थे
1: चीन
0: पहुंच गए थे। और सुनने वालों को बता दे जिन्होंने अभी रेडियो सेट्स ऑन किए कि हम चाहते हैं कि आगे जो समर वेकेशन आने वाली हैं, छुट्टियां होंगी बच्चों की, कभी कभार होती है छुट्टियां 10-12 दिन की, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए पॉजिटिव वे में। तो इसी सिलसिले में हमने इरफान अजीज साहब को दावत दी आज के शो में। तो मार्शल आर्ट की बात हो रही है, तो आगे आप बात जारी रखिए कहाँ तक आप पहुंचे थे और आप बात को आगे बढ़ाइए।
1: देखिए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जो कैंप्स हो रहे हैं, मतलब समर वेकेशंस हो रही है, उनको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। मैं आपको यहाँ जिमनी एक एग्जांपल दे दूं। माशाल्लाह हम सब मुस्लिम हैं और हमारे में एक रमजान का महीना आता है,
0: बिल्कुल,
1: दैट इज पर्टिकुलरली टू मेक यू डिसिप्लिन। तो एक रिफ्रेशिंग कोर्स होता है हमारे लिए,
0: बिल्कुल
1: सेम चीज हमारी स्टडीज में भी ये ब्रेक आता है, समर ब्रेक या विंटर ब्रेक। तो हमें इस ब्रेक को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूटिलाइज करना चाहिए।
0: जी,
1: पॉजिटिव एनर्जी जो है दैट कम्स विद स्पोर्ट्स, दैट कम्स विद टेक्निकल हैंड्स या टेक्निकल कोई नॉलेज है तो उससे आती है, तो हमें इसको अच्छे से यूज करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये एक अच्छा मौका है जब हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि आप बाहर निकल के खुद को निखारो और खुद की एबिलिटीज चेक करो। वी शुड चैलेंज देम, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली हमारी जनजी तो छोड़ दो, अल्फा बीटा जो नई आई है बहुत लेजी है, वो अपने कंफर्ट बबल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते।
0: ये भी कह सकते हैं कि सेलफोन से बाहर नहीं आ रहे।
1: एग्जैक्टली, वो हमारे लिए एक फोपा बन गया है, एक सामाजिक बिद्दत बन गया है हमारे लिए मोबाइल। जो जैसे नॉर्मली अगर कोई गलत चीज करता है, कोई सिगरेट पीता है या कोई नशा करता है, तो वो माँ बाप के सामने नहीं कर सकता या माँ बाप उस पर नजर रखते कि आपने ये गलत

0: क्यों किया, बट ये ऐसा नशा है जो वो माँ बाप के सामने ही करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: माँ बाप ही एनकरेज करते हैं कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मोबाइल लो और साइड में बैठो।
1: यानी कि सीख पेरेंट्स से ही मिलती है।
0: एग्जैक्टली जी, एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। तो जो हमारी ये है वही बच्चा भी सीखेगा, बिकॉज वी आर द आइडल फॉर द किड्स।
1: इरफान साहब, आपकी अकेडमीज बहुत सारी होंगी कश्मीर में, उस बारे में बात करेंगे। आपने पेरेंट्स की बात की है, तरबियत एक होती है, होनी चाहिए छुट्टियों के दिनों में। देखिए, कुछ यहाँ पे बच्चे होंगे, लड़कियां भी लड़के भी, जिन्होंने एक्सेल किया है, एक तो आप उनके नाम बताइए, एक पेरेंट्स ने उनके साथ कैसा एक राबिता रखा, क्योंकि यूजुअली जब हम कुछ कहते हैं पेरेंट्स के बीच में पढ़े करान एम्स कहते मेल बिचेरिश टाइम, इस बारे में आपको क्या लगता है कितनी परसेंटेज बच्चों की है आपकी अकेडमी?
0: बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि हमारे यूनिट्स, हमारी अकेडमीज कहाँ कहाँ है, तो हम तरतीब से चलते हैं। हमारी अकेडमीज पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मुझे बोलना चाहिए फैली हुई है। जहाँ जितने भी सारे गवर्नमेंट के स्टेडियम्स है वो मल्टी एक्टिविटी स्टेडियम्स है, उनमें पंचक स्लॉट की क्लास ऑलरेडी है। चाहे आप शेर कश्मीर स्टेडियम लो, चाहे आप गिन्नुन राजबाग स्टेडियम लो, चाहे आप पोलो ग्राउंड वाला स्टेडियम लो, इलाही बाग वाला स्टेडियम लो, या जितने भी, या जो हमारे पास यहाँ पे बेमिना में है, जितने सारे स्टेडियम्स है उनमें ऑटोमेटिकली हमारी क्लासेस ऑलरेडी रागिब है।
1: गांव देहात की अगर बात करें, वहां पे एकेडमीज है।
0: गांव देहात की बात करें तो हमारे जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है और जितने भी सारे प्राइवेट स्कूल्स है, हम 200 से ज्यादा स्कूल्स के साथ मुंसलिक है जिनको हम प्री स्कूल और पोस्ट स्कूल में ट्रेन करते हैं।
1: अच्छा,
0: ताकि हम उनकी करिकुलर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब ना करें। और बहुत सारे स्कूल्स में तो हमारे कोचेस जाते हैं एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर, जो उनका स्पोर्ट्स पीरियड एक घंटे का या डेढ़ घंटे का होता है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं इन बैचेस कि हम स्कूल्स में बच्चों को डेवलप करें। यू वोंट बिलीव, अभी हमारे पास ऑन रोल 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा लड़कियां हैं।
1: अच्छा।
0: हमने रिसेंटली यहाँ अस्मिता नाम से एक टूर्नामेंट किया था।
1: अच्छा।
0: जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टूर्नामेंट है, स्पेशली प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन ओनली।
1: अच्छा।
0: हर गेम में, ना कि सिर्फ हमारी गेम में, बट यू वोंट बिलीव, हमने श्रीनगर में 550 लड़कियों के साथ टूर्नामेंट किया, 550 इन ऑल एज ग्रुप्स। द एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम एज 3। हमारा जो कॉम्पिटेटिव एज है वो 3 से 5 पहला एज ग्रुप आता है।
1: अच्छा।
0: इट गोज अप टू 45, बट देयर इज अ प्रोविजन है
1: कि स्टार्टिंग
0: 90 इयर्स तक का भी और 100 साल तक का भी खेल सकता है इफ ही इज ट्रेन्ड एनफ।
1: अच्छा।
0: मास्टर्स में वो खेल सकता
1: जी,
0: है।
1: जी, जी।
0: तो हमारे पास जो बिल्कुल टॉडलर्स है, हम हमारी लैंग्वेज में उनको सिंगा मकान करके बुलाते हैं।
1: अच्छा।
0: सिंगा मकान, प्री जूनियर, जूनियर,
1: अच्छा,
0: ऐसे ऐसे करके कैटेगरीज बढ़ जाती है, जो 3 से 5 साल, 5 से 7 साल, 7 से 9 साल, ऐसे ऐसे करके कैटेगरीज ऊपर बढ़ती है।
1: इरफान साहब, उन कैटेगरीज की हम बात करेंगे, उनका एडमिशन कैसे होगा, कितने दिन का कोर्स होगा, लेकिन हमने आपसे पूछा था कि कश्मीर की बच्चियां या लड़के जिन्होंने एक्सेल किया, उनके नाम अगर आप मेंशन करते, क्योंकि कहते हैं जब कोई अच्छा करे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए।
0: Exactly.
1: उससे बाकी एनकरेज होते हैं बच्चे कि हमें भी आगे जाना चाहिए।
0: Exactly. मैं उस मामले में मैं बहुत ही आभार प्रकट करूंगा स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने रिसेंटली टैलेंट को पहचाना और उनको कैश अवार्ड से नवाजा। यू वोंट बिलीव कि हमारे श्रीनगर से करीब करीब हमारी गेम से
1: हुए
0: तो बहुत सारे बच्चे थे, सिर्फ हमारी गेम से 19 बच्चे हुए थे
1: Select.
0: इस कैटेगरी में सिलेक्ट, जिन्हें इंटरनेशनल मेडल के बिहाफ पे कैश अवार्ड मिला।
1: अच्छा।
0: हमारी एक लड़का लड़की है अक्सा गुलजार, वो सुपर हैवी वेट में खेलती है, 100+ kg में है।
1: अच्छा।
0: सोरा में रहती है और शी गॉट 12 lakh rupees फॉर हैविंग एन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड
1: चैंपियनशिप।
0: या हमारे बहुत सारे बच्चे है, अहमद ताहा मसूदी है जो सबसे सब जूनियर है, जिसने पहली बार दुबई में जूनियर में मेडल लिया।
1: अच्छा।
0: या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, हमारे यहाँ पे तौकीर है, बिल्किस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेडियम से जाके मेडल लिए, एजाज लिए, उनको गवर्नमेंट ने सराहा, पहचाना, गवर्नर ने उनको अपने सामने में बुलाया, उनके साथ डिनर किया, उनको मेडल से नवाजा और उनको कैश अवार्ड मिला। किसी को 3 लाख मिले, किसी को 5 लाख मिले, किसी को 7 लाख मिले, सबको एक अच्छी अमाउंट मिली, जिससे उनको आगे, बेसिक चीज है, बच्चे को अमाउंट देने का मतलब नहीं है उसको लालच देना स्पोर्ट्स में आने के
1: सही,
0: लिए
1: सही।
0: ये सिर्फ एक प्रयास है बच्चों को ये रखने के लिए, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट। अगर आपको थोड़ा पैसा मिलता है, वो पेरेंट्स को भी चाहिए वो बच्ची के ही बहबूदी के लिए लगाए, उनकी जो नरिशमेंट है, उनका जो खाना पीना है, उसकी रिक्वायरमेंट में

0: लगाए, उनका जो ट्रेनिंग एसेसरीज है, ट्रेनिंग एसेसरीज उनके बहबूदी के लिए लगाए। ये एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का कि वो पैसा बच्चों को बच्चों के ही ऊपर खर्च हो।
1: तो उसका मौजूद देखिए, वो पेरेंट्स जब हमारी जनरेशन में, आपकी जनरेशन में कोई खेलने निकलता तो ग्राव करीबन 2000। देखिए आज जो आप ये बच्चों के साथ कहते हैं कि टाइम जो जाए करा, मैं इस माज पर समझू टाइम जाए करा, आप अपना टाइम बचाने के लिए बच्चे का टाइम जाया कर रहे हैं। ये सेलफोन क्यों बच्चे के हाथ में है? कभी माँ ऐसी मिस बच्चे से बातें दीवानी है, कहें दीवान से दिमाग बिल बिल गच्चे कारण, मतलब उसमें भी ये होता है, मतलब अपना टाइम बचाने के लिए हम बच्चे का टाइम जाया करते, उसका फ्यूचर जाया करते। मैं ये सोचू कि ये गुंदुन इसमें भी बच्चा एक्सेल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आपको अपने बच्चे का टैलेंट पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: देखिए स्पोर्ट्स में हमारे में एक डिसिप्लिन है, एक लाहे अमल है, दैट इज टाइम टेबल
1: जी,
0: टाइम को स्केड्यूल करना। हमारे पास दिन में 24 ही घंटे हैं, 25वां नहीं हो सकता।
1: सही बात है।
0: तो इस 24 घंटों में आपको 8 घंटे का रेस्ट भी चाहिए, आपको 1.5 से 2 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए, आपको स्कूल के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए
1: जी,
0: आपको रिटर्न स्टडीज के लिए 2 घंटे चाहिए, और आपको रिफ्रेश होने के लिए, बच्चे को काम होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, रीडेवलप होने के लिए उसको पर्सनल मी टाइम चाहिए
1: जी, जी, जी।
0: हम चाहते हैं कि पेरेंट्स उसको समझे और उस मी टाइम को क्रिएटिवली स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करें।
1: तो उस बारे में जरूर हम बात करेंगे, आपने स्कूल की भी बात छेड़ी, उस तरफ भी हम थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि बच्चों को टाइम तो जरूरी मिलना चाहिए खेल के लिए। फिलहाल उनके लिए, सभी दोस्तों के लिए एक ट्रैक आप सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए, हम भी आपके साथ हैं।

0: जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह जारी है आकाशवाणी श्रीनगर से। आज हमारे गेस्ट है शो के इरफान अजीज बोटा, इंडियन पैंटिक स्लेट फेडरेशन की चीफ कोच। बातों बातों में इरफान साहब बात छिड़ी थी स्कूल्स की। देखिए, वी पे स्कूल टू एजुकेट अवर चिल्ड्रन, उच्च फीस दिवान पढ़ाई खतर, मगर जब बात आती है ट्यूशन की, अति चुबाचु फसान पाचो सा स्कूल पर तेमिस ट्यूशन गसुन, ये बनो ना वन ट्रेंड, पत क्या करे बच्चे। कहीं आपने टाई अप किया है स्कूल के साथ, आपकी जो एकेडमीज है आपने कहा कि स्कूल्स के साथ भी हम करते हैं कि ये बच्चे बच्चा बिचोर अमे ट्यूशन निश नर्सरी पर वुछान के बच्चन से ट्यूशन करना मोल मौज।
1: देखिए, अगर हम इस बारे में जाए तो इस्लाह की जरूरत पेरेंट्स को है, बच्चों को।
0: वही आपने पहले भी कहा कि हम पेरेंट्स के एक हिसाब से ये करते हैं।
1: Exactly.
0: अगर ये बिचोर स्कूल चु पढ़ान पता अगर नेरियम से बच्चा कहता भी करे कोई खेल के साथ ही जुड़ जाता, किसी इंडोर स्टेडियम में जाता, आउटडोर कहीं

0: अगर
1: आप आज की जनरेशन देखें, अगर हमने छोटी सी शॉपिंग करनी हो
0: जी,
1: कुछ भी लेना हो, तो हम 50 वेबसाइट्स को खंगालते हैं, मुझे
0: है।
1: सस्ता कहाँ मिलेगा
0: जी, जी।
1: और मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। बट ये इनक्विजिटिवनेस और ये जो मतलब हमारे में ललक है देखने की कि हमें अच्छा कहाँ मिलेगा, पता नहीं ये स्टडीज के मामले में कहाँ भाग जाती है।
0: सही बात है, पैसा तो खर्च बहुत करते हैं।
1: जब हम स्कूल जाते हैं, वी पेड, मतलब हमारे पास अभी जो एजुकेशन सिस्टम है विच इज वेरी वेरी टॉप क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम।
0: सही बात।
1: आजकल आप देखिए बच्चे सारे 90% 80% से नीचे कोई आता ही नहीं है। दैट मींस स्कूल्स आर डूइंग गुड जॉब। अगर स्कूल अच्छा जॉब कर रहा है, वो आपको अच्छे रिजल्ट यील्ड कर रहे हैं, व्हाई डू यू नीड बैकअप ट्यूशंस।
0: सही बात है।
1: ये एक बच्चे, ये एक पेरेंट को क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्यों जाएगा ट्यूशन
0: जी। आपने कहा कि हमने स्कूल्स के साथ भी एक हिसाब से कह सकते हैं कि टाई अप्स की है, आप उन टीचर्स को या पेरेंट्स को
1: एग्जैक्टली
0: किस तरह की ये देते हैं?
1: देखिए अभी हम क्या करें, हमने एक नया रिजीम जारी किया है जिसमें हमने एक अपना स्लोगन रखा है ईच वन टीच टू, कि एक कोच सिर्फ एक प्लेयर को ना पढ़ाए, एक प्लेयर को ना समझाए, वो साथ में उसके पेरेंट को समझाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारे पेरेंट्स और किड्स की मीटिंग कर रहे हैं, उनको साथ बुला के उनके साथ बैठ के उनको हेड ब्रेक डिसीजन में डिस्कशन में समझाते हैं कि स्पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक स्पोर्ट्स आपके बच्चे के लिए कितना
0: जरूरी है,
1: कारामद है, उससे बच्चे में क्या क्या चीजें आती है, जैसे बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, बच्चा टाइम बाउंड हो जाता है, उसको टाइम समझ आता है, बच्चा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाता है, बच्चा गोल सेंट्रिक हो जाता है, बच्चा सेल्फ केयर करना शुरू करता है, सेल्फ एस्टीम आ जाती है बच्चे में। ये जो चीजें हैं जो आपको ग्रूमिंग स्कूल में बड़े होके आपको अलग से लाखों रुपीस देने पड़ते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को ग्रूमिंग स्कूल में अलग से भेज दे, तो ये चीज स्पोर्ट्स में पहले से ही डिसिप्लिन में हो जाते। और अगर आप बच्चों को छोटी एज में ना दे, मोस्ट ऑफ द किड्स 5 साल की उम्र में उनका दिमाग का डेवलपमेंट 95% हो जाता है।
0: अच्छा,
1: 5 साल तक। सो 5 साल तक हम बच्चे को सब कुछ, मैं यहाँ पे एक जिम्मी एक सवाल उठाऊंगा, अगर आप देखेंगे ना कि 5 साल तक बच्चे को अगर आप 3 से 5 लैंग्वेज एक साथ सिखाओगे,
0: सीखेगा
1: वो एक साथ सीखेगा। माय ओन किड, मैं उसको जब बोलूंगा कि किसी भी आइटम के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल त्रेश, मैं उसको बोलूंगा यक्षवना त्रेश कशिरपेट।
0: अच्छा,
1: पानी बोलते हैं उर्दू में, वाटर बोलते हैं अंग्रेजी में, बिलीव मी वो मुझे तीनों अलग अलग वर्जन में बात करता है।
0: अच्छा,
1: वो मेरे माँ बाप से बिल्कुल कश्मीरी में बात करता है, वो अपने भाई बहनों से हिंदी उर्दू में बात करता है, वो मेरे से या मेरी माँ के, मतलब अपनी माँ के साथ अंग्रेजी में बात करता है, अपने टीचर्स के साथ अंग्रेजी में बात करता है। हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम बच्चे, इनके पास इतना पावर है सीखने का, हम बोलते नहीं पहले ये इंग्लिश सीख ले, बाद में उर्दू सीखे,
0: लास्ट में
1: कश्मीरी सीखे, जबकि कश्मीरी हमारी पहचान है। और अगर हम अपनी पहचान ही भूल जाएंगे तो हम कश्मीरी कहां से कहलाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हमें नहीं चाहिए कि हमें अपनी कश्मीरी पहचान खो देनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: वही चीज को अगर हम देखें लाही अमल, जैसे मैंने आपको बोला पेरेंट्स को, हम ये चीजें भी पेरेंट्स को समझाते हैं। हम पेरेंट्स को बुला के उनके, उनको बोलते हैं आप हमें जज करो, आप ऊपर जाके बैठो और आप देखो आपका बच्चा किस वे में ट्रेनिंग कर
0: रहा है, क्या सीख रहा है,
1: क्या सीख रहा है, उसकी एनर्जी लेवल कहाँ तक चल रही है। और बिलीव मी हमें पेरेंट्स से बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मिलेनियम्स पेरेंट्स है या जो नए नए जेंजी पेरेंट्स बने हैं, वो हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं पहले मेरा बच्चा बहुत उदम मचाता था 4 बजे के बाद, अब वो 4 बजे के बाद ही प्रेफर्स कि एक आधा घंटे वो सुकून से बैठे, या तो कोई बुक पढ़े या थोड़ी देर के लिए टीवी देखे, उसको सुकून मिल जाता है क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी तो ऑलरेडी खर्च कर चुका है।
0: सही बात।
1: स्कूल में पढ़ने के बाद, हमारे साथ ट्रेनिंग के बाद, दरसगाह जाने के बाद, तो वो अपनी एनर्जी का वो पूरा कोटा खत्म कर चुका है, अब उसको थोड़ा सा शांत चाहिए,
0: शांति चाहिए।
1: सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के बच्चे खाने पीने में इतनी कोताही करते हैं, वो कोताही इसलिए है क्योंकि उनका शरीर उनसे मांगता ही नहीं है। जब वो एनर्जी खत्म ही नहीं करते हैं, अगर
0: तो
1: कोई बच्चा सुबह सुबह सुबह सुबह एक अंडा खा लिया बच्चे ने, जो 6 ग्राम प्रोटीन है, उस 6 ग्राम प्रोटीन को यूज करने के लिए आपको 1200 कैलोरीज भी तो जलानी है, तब आपको दोबारा भूख
0: लग सकती
1: है। और वो बच्चा अगर सिर्फ एक कोने में दुबक के बैठ के मोबाइल पे बैठेगा तो वो एनर्जी कैसे जलेगी। तो हम बच्चों को हम कोसते हैं कि ये नहीं खा रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि भाई साहब वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहा, जितना आप उसको पावर दे रहे हो, जैसे हम मोबाइल में चार्ज करते हैं, तो जब चार्ज

0: होगा तभी तो दोबारा करेंगे ना, जब बच्चों की एनर्जी खत्म होगी तभी वो दोबारा मांगेंगे खाना
1: जी, जी.
0: और उस एनर्जी खत्म करने के लिए दे नीड स्पोर्ट्स, दे नीड फिजिकल एक्टिविटी. एक
1: और दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है. और हमने ट्यूशन की बात की, अगर बेचारे इस बच्चा से ट्यूशन स्कूल पर पे न करूँ ज़रूरी कथा है अमिस मिल टाइम ये इंडोर स्टेडियम कुन तो ये हे चुके हैं. और ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए अगर स्कूल इस पेरेंट्स फीच करा पे पढ़ने खातर सुस सिलेबस गए ती कवर गुन अमिस गए दिम हेर पे खसन पढ़ने खातर पत बे. पेरेंट्स तो करते हैं उस मामले में केयर, माँ देखेगी पापा देखेगा, लेकिन पत्य ट्यूशन गु ये अख बोड़ बार मसल बनान कि बच्चे चुन पत कुन एक्टिविटी सचानी बे इशू वनकस वनान कि सिगरेट बच्चे चवान ड्रग्स करान. तो जाहिर सी बात है जब ये खेल कूद में जाएगा ही नहीं अमिस रूद दिमाग यल तो ये गलत चीजों की तरफ जाएगा.
0: हर बात के लिए बच्चे को जिम्मेवार
1: नहीं सहरा सकते.
0: सबसे पहली बात, बच्चे को हम प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें 90% लाने हैं.

0: सा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे
2: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज ब्रॉडली कर क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स
1: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
3: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह।
3: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
4: जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह में आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और आज शो के मेहमान हैं इंडियन पैंटिक स्लेट फेडरेशन की चीफ कोच इरफान अजीज भोटा साहब। हम बात कर रहे थे इरफान साहब एकेडमीज की एडमिशन अब बच्चे को करना है, छुट्टियां हो जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, गर्मियां जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है छुट्टियाँ होनी ही होनी है। तो पेरेंट्स को एक हिसाब से इस वक्त गाइडलाइन मिल जाएंगी कि अगर ये 15-14 दिन छुट्टी मिले वो दा मिले अस क्या शु करूँ, 5 बजे या 6 बजे। इंडोर स्टेडियम की हम बात करें, यहाँ पे अगर श्रीनगर में कोई है तो एडमिशन के लिए 15 दिन का क्या कोर्स है, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को?
5: देखिए, एज फार एज कोर्सेज आर कंसर्न, फेडरेशन का एक रोल रहता है कि हम मैक्सिमम यूथ को इन्वॉल्व करें
4: जी।
5: हमारे लिए पेमेंट मैटर नहीं करता है।
4: सही।
5: सो हम कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए चार्ज नहीं करते।
4: अच्छा।
5: वी ट्रेन फॉर फ्री। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी स्टेडियम है
4: जी,
5: आप स्टेडियम में आएंगे आपको सिर्फ एक नॉमिनल सा चार्ज जो स्टेडियम का मतलब डे टू डे केयर टेकिंग है 100-150 रुपए पर मंथ, आपको सिर्फ उतना भरना पड़ता
4: जी,
5: है
4: जी।
5: और जो ट्रेनिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एसोसिएशन
4: जी।
5: ना कि यहाँ पे हर स्कूल में, जिन स्कूल्स में हम जाते हैं हमारे ट्रेनर्स स्कूल में भी फ्री एजुकेशन देते हैं।
4: अच्छा।
5: स्कूल इज बाउंडेड टू पे हिम स्टाइफन फॉर TADA ओनली, कि उनका ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखे, दैट्स ऑल
4: जी।
5: और ये क्लासेस, फ्री क्लासेस हमारे पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं। आजकल दुनिया बहुत छोटी है, मोबाइल में सिमट के रह गई है। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सर्च करें पेंचक स्लॉट, आपको नियरेस्ट सेंटर मी
4: कौन सा
5: आपको
4: है
5: मिल जाएगा।
4: बिल्कुल,
5: आपको हर जगह का सेंटर मिल जाएगा। और हमारे पास पूरे श्रीनगर में अभी 180 से भी ज्यादा सेंटर चल रहे
4: जी, जो नजदीकी सेंटर होगा पेरेंट्स को वहां पे जाना है,
5: आप भेज सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ उन 2% बच्चों के लिए स्पेशल सेंटर्स बनाते हैं जिन्हें हम स्पेशल एक्सलेंस सेंटर बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स को सीरियसली एज अ करियर बनाना चाहते हैं
4: जी।
5: क्योंकि उनके लिए हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, स्पोर्ट्स साइनस लगती है, उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग लगती है, उनकी डाइट लगती है, उनका प्रॉपर टेक केयर लगता है, उनकी मेडिकेशन लगती है। तो कुछ एक क्लासेस है जिन्हें हम प्रोफेशनली सिखाते हैं, लेकिन वो भी तब सिखाते हैं जब बच्चे में ऑलरेडी इंटरेस्ट हो, उसने ऑलरेडी 1-2 नेशनल खेले हो, नेशनल में उसने मेडल जीता हो, हमें पता चलता है कि नहीं ये बच्चा आगे जाके इसमें स्पार्क है या आगे जाकर लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है।
4: सही।
5: तो हम उन चुनिंदा बच्चों को चुनते हैं, वो हम चुनते हैं कि ये 1-4 बच्चे हैं, ये 1-10 बच्चे हैं, हम उनके पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर जाके उन बच्चों को हम अपने स्पेशल सेंटर्स में लेके प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट।
4: अगर ये 10-15 दिन का कोर्स है, इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा पेरेंट्स को? मतलब टाइमिंग क्या रहेगी बच्चे के लिए, अगर ये समर में आप स्टार्ट कर रहे हैं छुट्टियों में तो क्या बच्चों के लिए?
5: एग्जैक्टली, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आप किसी भी सेंटर पे जाओ। नॉर्मली हमारे सेंटर्स अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में चलते हैं, लाइक सुबह 6 बजे
4: और 7 बजे
5: और शाम को 4 बजे के बाद। बट क्योंकि समर वेकेशन होने वाली है तो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे हम समर वेकेशन के लिए अलग से मिड डे कैंप लगाते हैं जो 11-12 बजे चलता है।
4: अच्छा।
5: वेरीज फ्रॉम एवरी
4: जो सेंटर,
5: एवरी सेंटर से वेरी करता है कि क्योंकि हम हर जगह पे जहां पे भी हमारे बच्चे होते हैं उनका पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टाइम स्लैब चुनी जाती है कि ये डेढ़ घंटे का टाइम स्पेसिफिक है, हम ये डेढ़ घंटे आपके बच्चों को ट्रेन करें। और ये जो 10-15 दिन वाला कैंप है मोस्टली उनको बस वही 100-500 रुपए 200 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा उनका एडमिशन चार्जेस, जो उनका कार्ड बनेगा, उनका ये

0: बनेगा उसके लिए लगते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द ट्रेनिंग, आप कहीं भी सेंटर पे आ सकते हैं।
1: अभी इरफान साहब छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का, खेल खेल में ये मार्शल आर्ट उसमें उनको क्या सिखाया जाएगा कि ये गचन ये एक हिसाब से इंजॉय करना चाहिए कि मेरी छुट्टियां वसूल हो गई और खेलते खेलते खेल हो गया।
0: देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ह्यूमन है, जो हम है,
1: जी जी,
0: हम में नेचर एक है सर्वाइवल का,
1: सही,
0: ये इंस्टिंक्ट है, बचपन से हमारे में ही जीन्स में है हमारे,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो एवरी किड ही लव्स टू फाइट, चाहे वो खेल में हो चाहे वो हकीकत में हो।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: बच्चों को
1: पंच मारना तो
0: आपस में लड़ना अच्छा लगता है। हम स्टार्ट करते हैं -3 ईयर्स की एज से लेकर 100 साल तक, हमारे पास कोई भी बच्चा, कोई भी लेडीज, कोई भी साइज, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आ सकता है।
1: अभी पंच मारना कहा ये आप सिखाए,
0: हम वो सिखाते हैं।
1: जी तो चलिए बात जारी रहेगी। श्रीनगर में अब तक आपने क्या अचीव किया, अगर इस गेम की हम बात करेंगे, इस आर्ट की बात करेंगे, लेकिन इस ट्रैक के बाद।

0: जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह जारी है आकाशवाणी श्रीनगर से। आज हमारे गेस्ट है इरफान अजीज बोटा, इंडियन पैंचिक्स लिट फेडरेशन के चीफ कोच। बात हमने छोड़ी थी कि श्रीनगर ने अब तक क्या क्या अचीव किया, अगर इस मार्शल आर्ट की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स या जिन्हें हम पर्क्स बोलते हैं कि पर्क्स हमें स्पोर्ट्स से क्या मिलते हैं, रादर देन डिसिप्लिन, टाइम कंजप्शन, गोल सेंट्रिक एंड ऑल दैट, हमें एक स्पेशल टैब मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन।
0: जी,
1: हमें एक कैटेगरी मिल जाती है
0: जी,
1: जिस कैटेगरी में से हम जो भी यहाँ रिनोन स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसमें हमें एक स्पेसिफिक कोटा मिलता है
0: जी।
1: सो वंस यू आर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, दैट मींस कि आपने नेशनल लेवल का कोई मेडल लिया है
0: जी,
1: वो भी कंसिस्टेंसी के साथ एक दो साल
0: जी,
1: तो आपको एक कैटेगरी मिल जाती है। उस कैटेगरी का यूज करके आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाते हो
0: जी।
1: आपको स्कूल्स में एडमिशन, स्कूल्स में डिस्काउंट, कॉलेजेस में एडमिशन, नीट में आपको अलग कोटा।

0: मिलता है, जैसे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपको आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अलग से कैटेगरी
1: ये
0: मिलती है,
1: बेनिफिट्स हैं।
0: और नीट में मिलता है, सी गैट में मिलता है, यू गैट में मिलता है, जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं
1: उनमें आपको एक
0: उनमें आपको मिलता है, एडमिशंस मिलते हैं। आप
1: जी
0: जितने भी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस, एलपीयू, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बहुत, मैं कितने गिनाऊं, इतने सारे कॉलेजेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन देते हैं इफ यू आर एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। रही बात श्रीनगर की, ना कि सिर्फ इतना ही, प्लस आपको एसआरओ मिल जाता है, दैट मींस आपको जॉब अवेलेबिलिटी मिल जाती है। रिसेंटली जो हमारा SO12 आने वाला है, जिसमें कश्मीर में स्पेशली 250 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है उनके मेरिट क्राइटेरिया पे कि इनके मेडल टैली अच्छी है, उन्हें जॉब मिल रही है, उसमें हमारे गेम से भी 43 बच्चे हैं, उसमें हमारे 3 गेस्टेड है। सो आपको जॉब मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी है, आपको अच्छा एडमिशन मिल रहा है, आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, आपको अच्छी तालीम मिल रही है, इससे ज्यादा एक बच्चे को क्या चाहिए?
1: बिल्कुल सही,
0: वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें कि कश्मीर ने अभी तक क्या क्या किया, यू वोंट बिलीव, हमने अभी तक 21 MBBS बच्चों को एडमिशन किया है, हमारे पास 11 LLB वाले हैं, हमारे पास MBA वाले 18 से ज्यादा बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज, BBA, बाकी कोर्सेज में जिनका एडमिशन हुआ
1: हो चुका है।
0: हमारे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स जो MBBS के बाद करते हैं, MD वगैरह करते हैं,
1: जी
0: हमारी सर्टिफिकेट बेसिस पे उन्हें मास्टर्स मिली है, उन्होंने वहां पे एक्सील करा है। हमारे कश्मीर में 21 बच्चे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था, पिछले 2 साल में 21 बच्चों ने इंटरनेशनल खेल के इंटरनेशनल प्लेयर बनने का एजाज लिया है, और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है, आज के 2 साल में वी हैव अ मतलब टारगेट ऑफ 50 more kids, तो जिनमें से अभी तक हमने 20-25 बच्चे ऑलरेडी मेडलिस्ट आ चुके हैं जो अब 2025 और 2026 के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये 2 साल की कैटेगरी होती है।
1: और इरफान साहब देखिए, इतनी अचीवमेंट है, हो सकता है कि कई पेरेंट्स के जहन में सवाल उभरा होगा, छोटा बच्चा मार्शल आर्ट, देखिए जब आप बच्चे का एडमिशन करेंगे, कोर्सेज करवाएंगे छोटी एज से, ऐसा नहीं है कि हीरोज पर मार्शल आर्ट से सीख, आगे चल के वो ये गेम सीख सीख के, एक्टिविटीज देख देख के, अपना जो इसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किस गेम में जाना चाहता है, वो भी सिलेक्ट कर सकता है।
0: एग्जैक्टली, और मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को वायलेंस सिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: मार्शल आर्ट का मतलब है हम बच्चे को समझा रहे हैं कि वायलेंस क्यों नहीं करनी
1: ना चाहिए। हाँ,
0: वायलेंस, बिलीव मी, जितने भी मार्शल आर्ट बच्चे हैं आप कभी भी नहीं देखोगे वो सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने सड़क पे झगड़ा किया और अगर मैंने किसी को एक ही मारा तो वो उठेगा ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: वो उड़ जाएगा,
0: सिंपल। तो हम बच्चे को उसकी पावर को कंट्रोल करना सिखाते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, ना कि हम उनको रैंडम बफून्स बनाते हैं कि आप जाके रास्ते पे लड़ो, हम उनको डिसिप्लिन करते हैं।
1: डिसिप्लिन की आपने बात छेड़ी, हम करेंगे मिनी ओलंपियड की बात करेंगे, बाहर होते हैं बच्चों को जमा करते हैं, उनकी एक्टिविटीज होते हैं, उनके कॉम्पिटिशन होते हैं, उस बारे में बात करेंगे इस ट्रैक के बाद। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें वाकई कुछ क्रिकेट पसंद, कुछ चेस पसंद, कुछ बदल का गेम पसंद, उनकी कुछ क्यूरीज होंगी, वो सोचना चाहते हैं कि अगर हम इस एकेडमी में जाएं तो क्यों जाएंगे, उस बारे में थोड़ी सी हम तफसील से आपके साथ बात करेंगे इस बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद।

0: जी इरफान साहब, हम बात कर रहे थे मिनी ओलंपियाड की। मुख्तलिफ कंट्रीज में आप गए होंगे, वहाँ एक्सपोजर बहुत है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, बच्चे कहाँ कहाँ पे एक्सेल नहीं कर रहे हैं। माशाल्लाह कश्मीर का भी एक रुझान बढ़ रहा है, हम भी यही चाहते हैं। तो कश्मीर में मिनी ओलंपियाड कभी हुआ है, उस बारे में बताएं, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में?
1: देखिए, एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, यहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं
0: जी।
1: और कश्मीर क्योंकि एक कोल्ड क्लाइमेट एटमोसफेयर है, तो हमें एक अपर हैंड है पूरे इंडिया में कि हम विंटर गेम्स होस्ट करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें बहुत सारी गेम्स होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी गुलमर्ग खचाखच भरी होती है, एक भी होटल खाली नहीं होता है देखने वालों से कि कौन सी गेम्स चल रही है
0: जी।
1: और उसमें मुख्तसरन डिफरेंट सी गेम्स होती है, मार्शल आर्ट भी होता है, या हम यहाँ मार्शल आर्ट्स के कई बार इंटरनेशनल, हमने एशियन चैंपियनशिप यहाँ इंडोर स्टेडियम में होस्ट करी है, दोनों तीन बार होस्ट करी है
0: जी।
1: तो गेम्स होती है, हर बार होस्ट होते हैं, हर दिन हमारी एक्टिविटीज होती है। अगर आप स्पोर्ट्स कैलेंडर आज देखेंगे काउंसिल का, एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग। अभी काउंसिल भी अपने पूरा जोर लगा के सारे गेम्स को लीग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल रहा हो, क्रिकेट रहा हो, मार्शल आर्ट रहा हो, चाहे वो रग्बी रहा हो, चाहे वो प्रो रग्बी रहा हो, चाहे वो बास्केटबॉल रहा हो, सबकी लीग्स कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हाई लीग्स? बिकॉज हमें भी दुनिया के साथ मॉडर्न होना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और लीग्स जो है वो एक कंसंट्रेटेड गेम्स होते हैं जिनमें प्रो एथलीट्स आपस में कंपीट करते हैं कंपिटेटिव वेज में, और उन्हें बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट भी मिलता है और फेम भी मिलती है
0: जी।
1: क्योंकि इसको एंटरटेनमेंट वे में भी देखा जा सकता
0: है। सही बात है।
1: तो रही बात ओलंपियाड की, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी हमने होस्ट करे हैं।
0: फ्यूचर में कोई
1: फ्यूचर में भी प्लानिंग है? अभी श्रीनगर काउंसिल होस्ट कर रहा है बहुत सारी गेम्स, तो अभी क्योंकि जब हम कोई बड़ा ओलंपियाड होस्ट करते हैं तो एक गवर्नमेंट का खासा रोल होता है।
0: बिल्कुल, एक इनिशिएटिव होता है,
1: एक इनिशिएटिव होता है, खासा रोल होता है। सारी फेडरेशंस मिलके उस रोल को सपोर्ट करते हैं,
0: सपोर्ट करते हैं।
1: बट मेन चीज होता है जो गवर्नमेंट होती है उनको इनिशिएट लेना होता है कि इसको होस्ट मैं करूंगा।
0: सही।
1: मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं 10 गेम को एक साथ एक बैनर के नीचे होस्ट कर पाता हूं, और वो हमने कई बार करके दिखाया है इन विंटर गेम्स। इन समर गेम्स इंशाल्लाह वी आर होप फॉर कि इस बार भी हमारा कुछ ऐसा हो।
0: अब चूंकि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा ज्वाइन करे एकेडमीज को, ये मार्शल आर्ट सीखे, फिर आगे चल के उनकी किस्मत। लेकिन एप्रिसिएशन की बात आती है, जब कोर्स 15 दिन का किया, 20 दिन का, कोई सर्टिफिकेट वगैरह इनको मिलती है?
1: बिल्कुल, ना कि सर्टिफिकेट। हम जितने भी स्कूल्स में जाते हैं हम स्टार्ट ही करते हैं क्रैश कोर्स से, जो कैप्सूल कोर्स होता है, सिर्फ 10 दिन का होता है। हम 10 दिन में उनको बेसिक थीम बताते हैं कि मार्शल आर्ट कैसा होता है, फिर उनके स्कूल के ही अंदर हम छोटी छोटी टीम्स बनाते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, किसी का नाम दे दिया, जगहों का नाम दे दिया, सूफीज का नाम दे दिया, और फिर उन्हें 10 दिन के बाद आपस में एक छोटा सा हेल्दी सा कंपटीशन कराते हैं, सो दैट दे गेट इंटरेस्टेड। एक पूरा कॉम्बो देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे अभी समर कैंप्स हो रहे, तो समर कैंप्स में भी होगा, प्रॉपरली उनको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, एक बच्चा एजाज

0: मिल जाता कि देखो मैंने सर्टिफिकेट लिए, मुझे मेडल मिले, ना कि ओनली दैट, हम उनको लाइव टेलीकास्ट, मतलब आजकल सोशल मीडिया है तो टीवी इनसे सबसे ज्यादा मोबाइल एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमारे फेसबुक लाइव आते हैं, इंस्टा लाइव आते हैं, यूट्यूब लाइव आते हैं हमारे प्रोग्राम्स, तो बच्चा खुश हो जाता है कि मैं भी एक बार टीवी पे आऊंगा, मैं भी टीवी पे इंटरव्यू दूंगा, मैं भी टीवी पे बात करूंगा, अपने ख्यालात का मुजाहरा करूंगा। तो ऐसी चीजें हम करते हैं जिनसे बच्चे या जो भी बच्चा अच्छा एक्सील करता है, तो हम उनके पोस्टर्स बनवा के उनके एकेडमीज में लगवाते हैं, स्कूल्स में लगवाते हैं, ताकि बच्चे को एक अच्छी प्रोत्साहन मिले,
1: यानी कि बहुत अच्छे से सराहना होती है, बच्चा आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: अब आखिर में एक मैसेज उन पेरेंट्स के लिए, उन स्कूल्स के लिए जिन्होंने इस बच्चे को कैद रखा है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक तो स्कूल आपके सर्वलेंस में कह सकते हैं, अपने इलाके में मेशुपानुन अलाक बच चुका है टाइम परान, मतलब उससे भी बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसके लिए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। आई हैव अ किड जो 9 साल का है, और 9 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है, बाबा आई एम रियली टायर्ड और मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या बात है कि मुझे कल स्कूल में ये करना है, परसों ये है, अब दो दिन के बाद ये है, मेरी स्टडीज का मुझे टेंशन है
1: और
0: आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स।
1: अच्छा,
0: एक बच्चे को हमें एज अ पेरेंट, क्योंकि हमारे कश्मीर में ये बाहर की कंट्रीज की तरह लिबर्टी नहीं है बच्चे को कि वो खुद के लिए बहुत सारी चीजें चुने,
1: एक्सप्रेस भी कर पाता है बड़े मुश्किल से।
0: तो हम एक पेरेंट का ये बनता है, लाही अमल बनता है पेरेंट का कि वो बच्चे की नीड्स का ख्याल रखे, वो बच्चे को एक स्पेसिफिक टाइम दे जहां बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपनी हैप्पीनेस ढूंढे और बच्चा अपनी खुशी से कोई काम करे। पढ़ना कंपलसरी है, हम पढ़ने के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम दरसगाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम स्टडीज के साथ या किसी भी चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बट हमें टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से बनाना है कि बच्चे के हम एक सिर्फ 2 घंटे का स्लैब निकाले, 1-2 घंटे का स्लैब जिसमें बच्चा
1: पानी पड़ गिंदा, पानी पड़ कर जिंदगी
0: में, वो बच्चा है, अगर वो बचपना नहीं करेगा तो हम उसको बच्चा कैसे बोलेंगे? वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा 3 साल का बच्चा, जब मैं न्यूज सुन रहा हूँ, वो मुंह पे उंगली रख के बैठे, जबकि हमारा बच्चा टीवी के सामने उसी टाइम खड़ा होकर ताली बजाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके आस पड़ोस में स्कूल है, मुझे बच्चा छुट्टी गसाते मुझे 3 घंटे लगा पद घर वापस
0: राजबाग स्कूल। भाई साहब, आप अगर सोहरा में रहते हो
1: तो सोहरा में स्कूल है, बिल्कुल पढ़ाई
0: राजबाग तक आने में उसको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे, 4 घंटे ट्रैफिक में, ट्रैफिक जाम में बच्चे के 4 घंटे, उसकी पूरी जिंदगी के 3 साल आप खा जाते हो। 16 साल तक जब वो आपके स्कूल में पढ़ेगा तो ये 3 घंटे का टाइम उसकी जिंदगी के 3 साल, पूरे 3 साल आप खा जाते हो जो वो बस में खाएगा।
1: यानी कि कसूर वालदेन का भी है, कसूर कुछ इंस्टीट्यूशन इदारे का, स्कूलों का भी है कि ट्यूशन का बोझ, घर में पढ़ाई का बोझ और बाकी एक्टिविटीज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलता है। हमें सोचने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: एक लास्ट मैसेज ये है कि कोई आपके लिए आके आपकी हेल्प नहीं करेगा, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर होम।
1: बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ आज के शो से हम लेते हैं इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स मुस्तफीद हो गए होंगे आपकी बातों से, अब वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बच्चों का एडमिशन भी आपकी एकेडमीज में करवाएंगे। अगली आवाज़ लाहौर तक के।
0: अल्लाह।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सकीना। समीन, आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरेक्टिव शो प्याम सूप। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव और FM 2 103.5 MHz पर। समीन, हमारे अगले ऐलान का कीजिए बस जरा सा इंतजार। ये शो आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 17.8 MHz ते FM 13.5 MHz पर। समीन, सुबह 10:30 बजे आज शे बुधवार, तो इसकी दोहचे तुंदे बाबत पेश करान छाकर दुरू।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। जमीन दिन के 12 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

है लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

जी हाँ समीन, आपने अरुण भैरव के लिखे अशार समाप्त किए साजिद वाजिद की मौसीकी में। फिल्म का नाम वांटेड।

दोस्तों राहुल बी सेठ के अशआर आप समाप्त कर रहे थे नुमान जावेद की मौसीकी में, और इस नगमे को गाया है अली परवेज मेहदी और श्वेता पंडित ने।

हम अपने समीन को बता दें कि आप इस वक्त फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। दोस्तों, हम आपसे जुड़े हैं डीटीएच पर और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के एप्लीकेशन AIR न्यूज पर भी।

दिल जो भी कहे। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म का नाम जिसका नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जावेद अख्तर के अशआर आप समाप्त करेंगे शंकर एहसान लॉय की मौसिकी में। दोस्तों इस नगमे को गाया है सोनू निगम ने।

0: जहाँ जमीन आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में ठीक 12:30 हुआ चाहते हैं। आइए अब समाप्त करते हैं खबरें, पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ अख्तर। मुख्तलिफ ममालिक के लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से सबसे तवील मुद्दत

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय दिन का 1 बजने वाला है। चंद ही लम्हों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में खबरें।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा

0: धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: इथोपियन

0: कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
2: ओ।
1: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच

0: का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
0: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में

0: पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करता स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

अजब प्रेम की गजब कहानी। जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम। इरशाद कामिल के अशआर आपने समाअत किए प्रीतम की मौसीकी में, और यह आवाज़ थी आतिफ असलम की।

समीन, आप प्रीतम की मौसीकी से सजा नगमा समाप्त कर रहे हैं। मनोज यादव का लिखा नगमा है, ये अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजहर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। मरकजी काबिना ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत के तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबिना की मीटिंग के दौरान काबिना के मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबिना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी दे रहे हैं।
1: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ये तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वज़रा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आज़ाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वज़ीरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामा निगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुआशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामा निगारों से बात करते हुए

0: वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शानदार महारत, इत्मीनान और पुख्ताज़्म के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निज़ाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नज़रिए की तकमील का अहद कर रखा है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील के विज़न पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुल्क में सीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: ईरान के पासदान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अब नए हुर्मुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खत्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब नए हुर्मुज में बंदरगाही शहर सिरिक और किस्म जजीरे पर हमला किया गया है। उधर उर्दुन के मुसलह अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ से ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमेरिका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल के अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मरतबा मदार में स्पेस एक्स और ब्लू ऑर्गिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। दिफाई साजो सामान की खरीदारी दिफा के शोबे में महारत के लिए इख्तरात और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए जांच के मराहिल से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुक्काम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खत्ते में इंसानी हकूक की सूरत हाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई

मैं पिया तेरी, तू माने या ना माने। जी हाँ दोस्तों, ये दिलकश आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस नगमे को हमने लिया है फिल्म बसंत बहार से।

समीन, आपने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से ये नगमा समाप्त किया। आवाज़ थी तलत महमूद की। आइए अब मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को सुनते हैं फिल्म राजकुमार में।

जमीन आप समाप्त कर रहे थे पुराने सदाबहार फिल्मी नग में। आखिर पे आपने राजकुमार फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये नगमा समाप्त किया। ये जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 77.8 मीटर ते एफ एम .5 मेगाहर्ट्ज़ पर जमीन दूची 2:30 बजे वाले छक्कर तुरो बोजो। ये जो कला में अहमद डार सदाकार शे अली मोहम्मद शेख तिहिंद हम नवा।

સેવની માત્રમ તો ઈસુ પોઝાં છાકર તુરું યોસ કલામે આહમદ ડાર સરકારેસ અલી મોહમ્મદ શેખ તતે હિંદ હમનવા ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समय सपहर के ठीक 3 बज रहे हैं। अब पेश है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों, फौजी भाइयों, फिल्मी नगमे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और इसमें जो फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दोस्तों आइए समाप्त करते हैं प्रोग्राम की पहली सौगात।

फौजी भाइयों, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में ये प्यारा सा नगमा समाप्त किया। इंदीवर के अशार थे और इस नगमे की जो मौसीकी है वो तरतीब दी है जगजीत सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ठीक 3:05 हुए हैं। आपका मेरा साथ इस प्रोग्राम में सुपहर 4 तक का है। इस बीच हम आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे चुनिंदा नगमे और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। फौज भाइयों, आज के प्रोग्राम में हम चंद ख्वाहिशों और तमन्नाओं के बारे में बात करेंगे। तमन्नाओं, आरज़ुओं और ये सब जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं दोस्तों, दरअसल होता यूँ है कि ये इंसान के जन्म के साथ ही जन्म लेती हैं और जो जो इंसान बढ़ता है ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं।

फौजी भाइयों, आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये प्यारा सा नगमा समात किया। आपको बता दें कि सुमन कल्याणपुर और लता जी की आवाजें बहुत मिलती जुलती हैं। बज़ौकात ऐसा महसूस होता है कि हम सुमन कल्याणपुर की आवाज में जब नगमा सुनते हैं तो बेशतर लोग ऐसा कहते हैं कि आवाज लता मंगेशकर की जी है की है, जबकि ये सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। आपने इसी आवाज में अभी अभी ये नगमा समात किया। दोस्तों, अगला नगमा सुनवाने से पहले मैं आपके साथ एक और शेर जो मुझे ज़ाती तौर बहुत पसंद है आपको सुनवाना चाहूँगी, आपके साथ साझा करूँगी। शेर यूँ है, शिकस्ता पाई इरादों के पेशोपस नहीं, शिकस्ता पाई इरादों के पेशोपस में नहीं, दिल उसकी चाह में गुम है जो मेरे बस में नहीं।

0: हाजी भाई, क्यों आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमे? आपको बता दें कि प्रोग्राम अभी जारी है और फिल्मी नगमे हैं आपको सुनवाने के लिए। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: जी फाजी भाई, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

फौजी दोस्तों, आपने राज कवि तुलसी के कलमबंद के वैशार समात किए राहुल देव बर्मन की मौसीकी में। आवाजें थी आशा भोसले किशोर कुमार की, फिल्म का नाम कर्म। जिन दोस्तों ने अपने रेडियो सेट सभी अभी ऑन किए हैं, उन्हें हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे जुड़े हैं DTH के जरिए और आप हमें सुन सकते हैं अपने ही मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए।

अजय भाई, वो हनीमून फिल्म से आप ये प्यारा सा नगमा समाप्त कर रहे थे। योगेश के अशआर हैं, उषा खन्ना ने इस नगमे की तर्ज बनाई है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

0: ने भी वजीर अजम नरेंद्र मोदी को इस जिम्न में मुबारकबाद दी है। श्रीलंका के सदर अनुराग कुमाराध्यसिंयाका, पपुआ न्यू गिनिया के वजीर अजम जेम्स मैरपी के अलावा ट्रिनिडैड और टोबैगो के वजीर अजम ने भी नरेंद्र मोदी को दी मुबारकबाद। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन, दिल्ली के वजीर अला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीरों ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतख वजीर अजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नाबिन ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनक़द हो रही है। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतख वजीर अजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनक़द की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इतिहाद की हुक्मरानी वाले तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायबी वज़राए आला और तमाम इतिहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्राम और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता और मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 मारूफ खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बेमिसाल सलाहियतों से जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। मनोज सिन्हा ने नौकरियां पाने वाले इन उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर को मनशा की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम,
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक नामवर मौलिज डॉक्टर नजम साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और खानदानों को तबाह कर सकती है और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती है। वालिदैनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ पाक रखें।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी सरकार ने मुल्क में दही तरक्की के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का मंसूबा तैयार किया है। दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने MG नरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए की रकम तफवीज की है। उन्होंने कहा कि रियासत और मरकज के जेर इंतजाम खतों को 95,692 करोड़ रुपए का अबूरी बजट वागुजार किया गया है और इस तरह तफवीजशुदा कुल रकम 1,00,000 करोड़ रुपए से तजावीज कर गई है। ये बात वजीर मौसूफ ने भी सभी रियासतों और यूटीज के दी तरक्की के वज़रा के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के बाद कही, जिसमें विकसित भारत जीराम जी एक्ट की अमल आवरी के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर पंडित बिरादरी के एक ग्रुप ने आज प्रगाश हेरिटेज टूर के तहत अनंतनाग में मार्टन सूर्या मंदिर का दौरा किया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि इन में से बेशतर लोग 36 बरस के बाद कश्मीर लौटे हैं। यहां पहुंचने पर मुसलमान बिरादरी ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। बाद में एक कश्मीरी पंडित सुरिंदर कौल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया,
3: हमने एक इनिशिएटिव लिया प्रागाश के नाम, एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 6 से 12 तारीख को हेरिटेज कंपोनेंट है उसका, और 13 और 14 में SKICC में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज

0: ये समाज की आवाज। इसमें से बहुत सारे लोग 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, आज 36 साल के बाद जो घंटियां हमने 25 साल में सुनते आ रहे थे, मंदिरों में जाते थे, वो घंटियां आज 36 साल के बाद सुनने में आई।
1: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मानसून सीजन के दौरान इम्कानी बारिशों से पैदा होने वाले सूरतहाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने हसास इलाकों के ताल्लुक से सूरतहाल का चारा करने के लिए एक मुनज्जम नक्शराह तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरतहाल में इंसानी माल व जान के तहफ्फुज़ को तरजीह दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ एक मफाहमतनामा तय किया है, जिसके तहत डिलीवरीज़ों को 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस मफाहमतनामे पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। महकमा ज़राअत के अहतमाम से अनंतनाग में कल खेत बचाओ अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने की। प्रोग्राम में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के अलावा दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का मकसद पायदार ज़रई सरगर्मियों और नामियाती काश्तकारी को फ़रोग देना है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कल श्रीनगर में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान पारियमपुर जनरल बस स्टैंड अपग्रेडेशन प्लान, मुख्तलिफ कम्युनिटी हॉल्स के अलावा गांधरपुर और जिला बड़गाम में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। आईजीपी ट्रैफिक जम्मू कश्मीर सुलेमान चौधरी ने कल बालतल बेस कैंप का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा रूट्स और पार्किंग सहूलियात का जायजा लिया।

0: अब कुछ हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड किया कायम। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़रा और कई आलमी लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दी मुबारकबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 खिलाड़ियों की सलाहियतों की सताइश की। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव और FM 103.5 MHz पर। समय सफर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केन्द्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और संसारिया को अदब तय ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुस सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन अस जान दे हैं जी तुसको अपने इस मनपसंद प्रोग्राम की अड़ीक रही है। अस भी कोशिश करते हैं जी इस प्रोग्राम बिच तुस्ते मनपसंद की गलबात हो गीत हो सैफल मालूक जी कुछ भी तुम सुनना चाहते हो वह असी पेश कर। सामीन दरअसल एक आपसी मुहब्बत दोस्ती और एक दिली लगाओ जिहड़ा पैदा हो गया तो होंदा है। दरअसल इदारा यह तुस्ता इदारा है, एक आवाम का इदारा है, इस भी तुस्ती गल होंदी है। बल्कि असी कोशिश करते हैं जो सरकारी तरफों जिहड़ी स्कीम हो जिहड़े फायदे लोगों तकर पहुँचने वाले होन वो असी तुसां तकर पहुँचावां तां जे तुसीं उन्हां थी फायदा चाहो। सरकार सुन महकमे बढ़ाए दिन, अफसर बढ़ाए दिन, जिम्मेदार बढ़ाए दिन, उसी वास्ते उन्हें जी

कामन जेड़े वो हल होन, तुसते मसायल जेड़े वो हल होन और तुसतियां मुश्किलां दूर होन, तुसों को हर लिहाज नाल फायदा पहुंचे। तसामीन गल्लां असीं होर भी करसां तां आओ पहलियां सुनदे हां गुलाम हसन तबस्सुम दी आवाज़ विच एक गीत।

0: समीर अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 4:20 हुए हैं। पेश हैं पहाड़ी खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेके मैं से शाफिया, पहला खास खबरें दिया सुर्खियां। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सारे थो लम्बे वेले तक के बारे ते मुंतहिब वजीर अजम के तौर ते खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकजी वजरा और कुछ आलमी लीडर सुन वजीर अजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियां वास्ते मुंतहिब होए 223 खिलाड़ियों की सलाहत की सताइश की। और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मंशियात मुहालिफ सरगर्मियां चल रही हैं। और खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सारे थू ज्यादा लंबे वेले तक लगातार खिदमत अंजाम देने आले भारत के जमहूरी तौर ते मुंतहिब पहले वजीर अजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी सुन 26 मई 2014 को वजीर अजम के अहदे का हलफ लिया सा। पंडित जवाहर लाल नेहरू के दौर थू भी आगे निकल गए हैं, जिन्हें सुन 1952 बिच 13 मई को मुंतहिब होने थू बाद वजीर अजम की हैसियत नाल हलफ लिया सा और 27 मई 1964 तक इस अहदे ते फाइज रहे। मुंतहिब वजीर अजम के तौर ते पंडित नेहरू का दौरे हकूमत 4398 ध्याड़े का आसा, जदों के वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन अपने अहदे ते अजू तिकर 4399 ध्याड़े कामकार छोड़े और लगातार काम कर रहे हैं। मरकजी काबीने सुन अज वजीर अजम नरेंद्र मोदी दे बड़े लंबे वेले तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतहिब वजीर अजम बनने की सताइश करदे हुए एक करारदाद पास की। अज नवी दिल्ली बिच मरकजी काबीने दी मीटिंग दे दौरान काबीना दे मैंबरां सुन वजीर अजम नरेंद्र मोदी दा खड़े होकर इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन सारे थू ज्यादा वेले लगातार मुंतहिब वजीर अजम की हैसियत नाल खिदमत अंजाम देने ते वजीर अजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच सदर जमहूरिया सुन आख्या है कि यह तारीखी मौका इन्हां दी क्यादत बिच मुल्क ते आवाम दे एतमाद और भरोसे की अकासी करता है। मरकजी वजरा डॉक्टर एस जे शंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और कुछ वजरा सुन वजीर अजम नरेंद्र मोदी को उन्होंने आजाद भारत के सारे थू लम्बे वेले तक वजीर अजम बनने ते नेक ख्वाहिशां का इजहार किया। कुछ आलमी लीडर सुन भी वजीर अजम नरेंद्र मोदी

0: ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज है, ये समाज की आवाज। इसमें से बहुत सारे लोग 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, आज 36 साल के बाद जो घंटियां हमने 25 साल में सुनते आ रहे थे, मंदिरों में जाते थे, वो घंटियां आज 36 साल के बाद सुनने में आए।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरां दी मरकजी वजीर नितिन गडकरी सुनाखे के जम्मू ते श्रीनगर दे विचकार कनेक्टिविटी को अगले जाने नी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरां ते मियार बिच बढ़ावा देने वास्ते मरकजी सरकार आर मुमकिन मदद कर रही है। कल मीडिया नुमाइंदे दे नाल गल करदे होया उन्हें सुनाखे है कि आने आले कुछ महीनों बिच जम्मू कश्मीर जम्मू और श्रीनगर दे विचकार दा सफर 3 घंटे तक पूरा हो सीगा। उन्हें सुन जम्मू कश्मीर ते कुछ जरूरी प्रोजेक्टां दा भी जायजा किया।
2: जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 4 लेन पोल हम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद अरशद अंदराबी सुन आज आसा शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा करके उत्थे जदीद कमां का जायजा किया। उन्होंने सुन आख्या कि जियारत ते बुनियादी ढांचे को दुआम बख्शने वास्ते हर मुमकिन कदम चाहे जुल रहे। मीडिया नुमाइंदे दे नाल गल्लां करदे होए सुन आख्या,
3: हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगमरमर का है, लेकिन ये संगमरमर कहीं दिखा नहीं हमें, हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है, हमारा काम है और हमारे दिल की ये बात है, ये हमारा रूह है, इसको जितना भी हम खूबसूरत करें उतना कम है।
1: इस दे नाल ही पाड़ी खबरनामा मुकियास दा अगला बुलेटिन 5:50 तक गोजरी ज़बान विच नशर हो सी। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।
4: ये थे आकाशवाणी श्रीनगर समय ने मुतनम 2:53 सपे वाले छकर तुरह बजो पेश करन अली मोहम्मद शेख दी ये हिंद से थी कलामे अली जान।

0: की जी वैक्सीन वगैरह ये करा सके। उसके बाद चढ़ेंगी एक बीमारी आवे
1: अच्छा।
0: निका जानवर नवा असल में एक साल दिली गया दो साल का जड़ा भी बच्चा वगैरह हुआ बच्ची उनमें ज्यादा खतरा हुआ है
1: अच्छा।
0: तो उस मौसम में भी हमारे को बी क्यू वैक्सीन आवे है। तो तीजी एक वैक्सीन एच एस आवे एंथ्रेक्स की बीमारी है मौसम का उस वह वैक्सीन भी गवर्नमेंट सेंटर में दस्तियाब रखी है। मोखर उसमें एक जानवर को मुंह पक जाए
1: अच्छा।
0: पैर पक जाए तो गां वगैरह गबन जिड़ी हुआ है
1: अच्छा।
0: इसमें त्रून को भी खतरा हुआ है तो दूध वगैरह उसकी जिड़ी वह मिल्क प्रोडक्शन हमारे को जिड़ी हुआ है दूध की तादाद हुआ है वह भी काट के आया नवा तो यह मोखर की है जिड़ी हमारे को बी क्यों की हुआ है। बी क्यों की यह अलामत हुआ है किसी जानवर को सेर सोच जाए किसी की फरी सोच जाए जैसे हम कहा के मतलब चढ़ेंगी बीमारी गुजर मौसा ज्यादा क्या उस वास्तव की वे डॉक्टर की टीम अवेलेबल बैक में है सेंटर में वे रहे हमारी कौम एक सीधी सादी कौम है इनमें चाहिए कि अपनी वेटनरी जितना भी सेंटर क्लोज सेंटर है उनके विजिट करना चाहिए। वैक्सीन अपनी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है इतनी फैसिलिटी रखी है ताकि ये लोग जड़ा अपना जिंदगी का गुजारा करे इन माल की वजह से ये लोग आगे भी चले अपना बच्चों में भी पढ़ाई लगा
1: जी। इश्ताक साहब तुमने बीमारी को जिक्र किया ये सारी काबिल इलाज है
0: काबिल इलाज बीमारी
1: जी जी।
0: हर बीमारी को इलाज है
1: हाँ।
0: हर बीमारी ऐसी नहीं कि कोई बीमारी नहीं मतलब जिसको इलाज नहीं और हर बीमारी की वैक्सीन पहुंची है सेंटर को
1: जी। तुमने बड़ी कारगर गल दसी कि ये वैक्सीन जो ये भी मुफ्त है
0: मुफ्त है ये मुफ्त सेंटर में
1: तो इसको तो हम आसानी ना फायदा
0: आसानी ना भी फायदा मैं चाहूंगा गवर्नमेंट का सेंटर में हमारी वैक्सीन माल का हिसाब दे हर सेंटर को पहुंचे कि कितना माल इस सेंटर को इसको कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी उस हिसाब से मारो जो माल है
1: जी जी
0: वो सारा किसी भी एरिया जितना भी माल है ये सारा माल मारो आज ऑनलाइन है इसको साइनसी तरीका दे टेस्ट भी हुआ कोई मतलब ऐसी चीज नहीं की डंगर ना दे डंगर मारे जाए डंगर का बाबूदी वास्ते इस डंगर का इस चीज वास्ते कि डंगर इस ना सेफ रहेगा इस ना सेफ रहे फिर कल ना दूध मारी दूध की प्रोटेक्शन वह भी सेफ रहेगी मारा जो बच्चा आने वाला है निका मतलब गायों का बच्चा होगा पेड़ों का बच्चा होगा बकरियों का अभी भी सेफ रहेगा। तो इनके अंदर जी बड़ी बड़ी बीमारी है ट्रांसमिशन होगा ह्यूमन के अंदर उससे भी हम सेफ रहेंगे।
1: इस तरह साहब मारो का माल है उस साल एक जगह बांध रहा है
0: बेशक
1: तकरीबन चार पांच महीना थे हम एक ही जगह इंदा दानों पानी भी दिया और इसके अलावा कहा भी सटा तो ये अंदर बार ज्यादा चलता
0: है
1: लेकिन उन जो जो गर्मी को वक्त आ जाए ज्यादातर लोग तो जाता भी नहीं बहका लेकिन जिला जाए भी एकदम इस माल ना इस बैग से काट कहते नहीं चले जंगल बजा टोका बहका में नहीं चले तो वो जाकर जो वो कहा ऊपर हुआ है बाकी चीज में इसके नाल की कुछ एहतियात करनी चाहिए कई बीमारी भी लग सके।
0: देखो तुमने असल गल फरमाई कि मारो जो बीमार है सियाल ये त्रै महीना या चार महीना एक जगह आई हो इसमें आई हो तो सारा बड़ी गल हुई तब मैं यह कहूंगा कि मारा जरा गुजर बरादरी का गुआन हमने बनाया है काउ छाड़ जन मारो माल वगैरह हुआ है इसमें वो हवा को सिस्टम नहीं रखता जिसमें वेंटिलेशन का है वो हर गुआन में एक दारी खुली होनी चाहिए हालांकि मारे बरादरी के लोग अंदरू भी कावज ला दिया बाहरों भी ला दिया कि इन्हें हवा नहीं लगनी चाहिए हवा उस तरीका से लगे कि पूरे को कवर कर लिए नंबर एक। उसके बाद हम ना एक साल के अंदर इस माल में चार बार डोजिंग करनी है डिवर्मिंग करनी है और उस डिवर्मिंग में कनी कनी बच्चों की कनी आवेगी गबन गायों की कनी आवेगी पेड़ बकरी की कनी आए घोड़ा की कनी आए या भी तमना अपना सेंटर को मिलेगी वेटनरी जो भी सेंटर हो या उतू भी मिल सके और बाजार दे ज्यादा बेहतर है वेटनरी सेंटर दे आने तो उसको भी तमना या काफी कम कीमत को मिल सके अनायत उस पर काफी सब्सिडी
1: काफी तो जिस वक्त ये एट अ टाइम चले जाए ना अचानक चले जाए
0: जी जी जी।
1: तो कई लोग कहते हैं कि नहीं जड़ी बूटी लग जाए
0: जड़ी बूटी लग जाए उस वास्ते भी देखो जरा बैक मार मारो चले या डमेज हो जाए उस वास्ते गवर्नमेंट ने भी बैक मंसलिक करी है उसमें एक सेंटर ये शिफ्ट कर चुका है इसमें स्टाफ समेत उस स्टाफ को भी फायदा उठाना चाहिए उनके भी वो जो भी मार उस बीमार हो उनके इलाज करना चाहिए कुछ लोग खुद इलाज उठ के खुद शुरू कर लिए लेकिन वह चीज हमने कर बड़ी एहतियात करना है कि इंजेक्शन किस चीज में लगे वो कड़ो इंजेक्शन हमने रग में करना है कड़ो हमने गुफी में करना है कड़ो मांस में करना है कड़ो चमड़ी में करना है उस वास्ते गवर्नमेंट ने भी स्टाफ रखी है बाकी फैसिलिटी रखी है उस चीज को हमने खासकर हमारी जी कम्युनिटी है गुजर बकरवाल कम्युनिटी है इनमें फायदा भरपूर चाहना चाहिए इस चीज
1: जी। तो इश्ताक साहब कई लोग कह रहे हैं कि जिनको माल पारो एक ही जगह रहे खासतौर पर हमारी अगर गायों की गल करा दूध के प्रोडक्शन वास्ते ये एक ही जगह रखे 12 महीना तो कई लोग इस पर कह रहे हैं कि कहा भी दे

0: दे, लेकिन कई लोग के लिए दूध ज्यादा होने की वजह से फीड है या कशु है या खड़े बाकी चीज उनके मुनासिब रहे।
1: देखो आज दे पहला अगर हम गल करा कि हमारे पड़ा जो लाइव स्टॉक हुआ तो यो डेढ़ किलो अदो किलो दो किलो दूध गांव दिया थी, लेकिन कुछ टाइम दे गवर्नमेंट ने जिहड़ा भी हमारा सेंटर रखा इसको एआई फैसिलिटी जिहड़ी रखी है, हम इसको गांव के अंदर जो इंजेक्शन करा ही तां पहला दाम छोड़े था हम डॉक्टर इंजेक्शन करे उस इंजेक्शन दे मारो जो लाइव स्टॉक है यो कन्वर्ट हो यो इसको ब्रीड जो जर्सी में आ गयो एच एफ में आ गयो रेड सिंधी में आ गयो यो हाइब्रिड बन गयो हम मारी गां जिहड़ी सुबह डेढ़ किलो दूध दे थी यही गां अज कन्वर्ट हो गई है या छह दिन लेगा सात किलो में दूध देगी एच एफ की दस दिन लेगा बारह किलो में दूध देगी तो उस वास्ते हम रिक्वायरमेंट ऑफ फीड जी है बाजार में अवेलेबल है डोजिंग अवेलेबल है हम यह नहीं कह सकता कि मारी भाई गां किलो वाली हमारे डेरे अज जी गां होगी या फिर छह दिन लेगा सात किलो दूध होगी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को एक अहम रोल रही है जी उन्होंने जी ए आई फैसिलिटी रखी है गां में तखमरे जी जी हम करा है वह रखी है अपना सेंटर वो उसको मकसद यो है कि हम अपना जो माल है यो कन्वर्ट करना है हाइब्रिड में ताकि मारी जी अपना मुल्क के अंदर दूध की प्रोडक्शन है वो हम खुद कफील बना और बाकी मुल्कों बाकी स्टेटों ना भी हम अपने दूध की सप्लाई करा।
0: इस वास्ते फीड ज्यादा बेहतर है कि नहीं काट
1: से देखो हमारे को एक लिमिट शेड्यूल हुआ है कि फीड हम दिन में कितनी इस गाय ना देनी है दूध गाय हिसाब से इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है एक दूध गाय हिसाब से किसकी अपना बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना है उसका नाल नाल हमें इसमें कैल्शियम भी देनी है ताकि बॉडी के अंदर जी बीमार दूध मतलब इस गांव को अंदर खारिज हुआ है उसके अंदर यह दिया हमने ऐसा कैल्शियम देनी है ऐसा फीड देनी है इसलिए दवाइयां देनी है डॉक्टर ने पूछ के वेटनरी सेंटर वो सर्जन बैठा हुआ है इनका स्टाफ बैठा हुआ है उनसे पूछ के हमने कि यह गांव मेरे अंदर इतनी दूध दिए लगी ऐसा कितना फीड की रिक्वायरमेंट है ऐसा कितना दवा दे सकूँ वक्त रोज कितना टाइम से बात कर सकूँ उस चीज की भी फैसिलिटी अपना कार अगे ले चल सके पढ़ाई को सिलसिलो भी जारी रख सके
0: यदि आज के वक्त मतलब फरमाने लगा कि अगर एक कार के पीछे दो त्रै गांव है इसको मतलब ये पूरा मुलाजम है
1: पूरा मुलाजम है या इनकम असल देगी गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीम रखी है उस स्कीमों के अंदर हमारा को होना चाहिए कि फायदा उठाना चाहिए एच ए डी की इस वक्त चले लगी उसमें गांव था लगी एस टी लोगों का 50% उसको सब्सिडी है एस टी की लेडी होगी उसमें 10% अलावा थाएगी 60% थाएगी अपना वेटनरी सेंटर से एच ए डी की स्कीम ऑनलाइन करानी एस टी लेके जानो आधार कार्ड लेके जानो पैन कार्ड लेके जानो तो उन चीजों में भी यूनिट गवर्नमेंट कायम कर रहेगी ताकि बेरोजगार कोई भी लेडी डेरे बैठी है कोई नौजवान बैठा है वो खुद कफील बन जाए वो मुलाजमत के पीछे ना दौड़े वो ताकि अपना रोजगार खुद कमावे और 10 आदमी इसके नाल नाल अपना रोजगार भी ले चले।
0: सही फरमाया लगा कि एक वक्त वो थो कि मारा लोग दूध की पैदावार में खुद कफील था लेकिन रवायती रखे था
1: रवायती रखा था
0: लेकिन अगर कई लोग सिटी का लोग है शहर का लोग है टावर का लोग है कस्बा का वे भी घास हावड़ लग गया
1: लेकिन काफी चीज मारे भी कुछ है हम की करांगा क्योंकि पहला जमानो ऐसा था कि गुजर बरादरी के कोले माल थो बाकी किसी बरादरी के कोले माल नहीं थो लेकिन आज का जमाना में गुजर बरादरी आरामदेह बन गई है वो चीज मारे दी चल गई है
0: तो अगर हम इसका दोबारा रिवाइट करेंगे
1: जी जी
0: तो हमारा वास्ते बड़ी आसानी हो जाएगी।
1: आज बहुत बड़ी आसानी है तुमने असल चीज फरमाई कि आज वो दौर नहीं आज साइंसी दौर है आज अगर हम इस रिवाज में लेके चलेंगे हमारे को साइंसी तरीका है जगह जगह वो वेटनरी सेंटर है जगह जगह वो डॉक्टर तमना आएगा हमारा बैक में डॉक्टर उठाएगा तमने बड़ी बड़ी मारी माली हुआ उनमें डॉक्टर लगा हुआ शीप वाला का नहीं है एनिमल वाला का नहीं है उन लोगों से पूछ के हम अपने जो तरीको है इसमें बरकरार रख सकें
0: सफाई सुथराई हर एक जगह
1: जी जी बेशक
0: तो माल ना साफ रखने वास्ते हमें क्या करना चाहिए
1: इस तरह
0: हम अक्सर देखेंगे पैडा ना साफ दो त्रै दफा तो है इस तरह की आप अपनी गाय ना भी धो सका
1: बराबर जो हमने असल चीज फरमाई कि सफाई को जो यो अहम रोल का दौर में हमने कन्वर्ट करके कौशल की सूरत में आ गई गुआन की सूरत में आ गई लेकिन गुआन भी आज मनाया जाए कि एक डॉक्टर ने पूछ कर कि गुआन की हूँ ड्रेनेज की तू रखूंगो वेंटिलेशन सिस्टम की तू रखूंगो इसमें कितना डंगर आएगा कितना बाइक कितना रिक्वायरमेंट होगी एक गाँव वास्ते बच्चा वास्ते कितनी रिक्वायरमेंट मेरा जरूरत है और मेरा हफ्ता में कितनी बार यो गुआन तोड़ना है मैंने किस चीज ना तोड़ना है जिस चीज चिचड़ा भी बच्चा आएगा चिचड़ की बीमारी हुआ पहला हम लिप कर ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਮ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ।

0: लेकिन आज वो जमानों नहीं, आज लेटेस्ट जमानों है, टेक्नोलॉजी को दौर है, हर चीज मोबाइल वो आम हो गई है।
1: अगर आप थारा तेरा रहनुमाई हासिल कर लो चाहो कि एक गांव वास्ते कितनी जगह होनी चाहिए, एक गांव में कितना टैंक आप रख सके।
0: देखो अगर हम ना यो स्ट्रक्चर बनाना हो पहला ने हमने देखो नहीं हम माल कितना है, माल का हिसाब दे। दूसरी चीज हमने ये नहीं है कि जमीन हमारे को अवेलेबल कितनी है गांव वास्ते, तो अगर हमारे को एक गांव का एक बच्चो है या दो गांव का दो बच्चा है, इसके वास्ते हमने 10x10 को गांव रिक्वायरमेंट लगाएगा, तो उस वास्ते हमने बच्चा जा असल तरीका अंदर निकल जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम उसमें कहीं निकल जाएगा, हमारे गाँव को जो रिक्वायरमेंट फीड वगैरह को है वो भी कहीं निकल जाएगा।
1: तो हाइट कितनी रहनी चाहिए?
0: हाइट कम से कम आज मशीन की हाइट 8 फुट है।
1: अच्छा,
0: मोचा गोना में लोग ले चले जो पुराना गोवा है 6 फुट, लेकिन वो मशीन उसमें आती
1: जी।
0: कम से कम गवर्नमेंट का हिसाब 8 फुट गोवान होना चाहिए जिसमें किसी वक्त अल्लाह बचाए या गांव सूंगे बैस के प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उस मशीन के जरिए इस गांव हम 10-15 दिन उस मशीन को रखा खड़ी करा या अपनी शायद में वापस आ जाए। उस आदमी ना इस मशीन को फायदा नहीं खा सकता जिसको गुआन 5 फुट या 6 फुट या 4 फुट हो, क्योंकि उसके अंदर आशा ही नहीं।
1: आज अगर हम देखा थे इंसान जो है इस वास्ते अस्पताल है
0: जी जी,
1: हर एक बीमारी के लिए इसकी बात आ जाए, चाहे सीटी स्कैन करें, चाहे MRI करें, एक्सरे करें, या अल्ट्रासाउंड करें, या बाकी टेस्ट करें। अगर ये मानो जानवर बीमार हो जाए या मालिक का या दांत बीमार हो जाए,
0: इस वक्त हमारा महकमा को हर फैसिलिटी मौजूद है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इस दौर में एक अहम रोल अदा करे हुए, चाहे वो टेस्टिंग को सिलसिलो है, सर्जरी को सिलसिलो। गवर्नमेंट ने ऐसा भी सेंटर कायम रखा है कि किसी इलाका के अंदर ये फार फलंग इलाका है, इसके अंदर कई गांव ऐसी डैमेज हो गई जिन्हें वक्त वो पहुंच नहीं सकती। हमारा महकमा को गाड़ी अवेलेबल है, एम्बुलेंस अवेलेबल है इस माल ना हिरण वास्ते और इसे शिफ्ट करने वास्ते।
1: अच्छा,
0: उस नंबर को कॉल करनी है 162 उसको गाड़ी का नंबर है, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक हुआ है, उसमें इजी नाल किसी भी जगह में डैमेज होगी, कोई भी माल डैमेज होगी उस नंबर को फोन कर सके, आराम ना उठ मैं को बोल सके
1: जी।
0: कितनी प्रोटीन है, कितनी कैल्शियम है, बीमारी मत है, हर चीज की टेस्ट अवेलेबल है। हर दौर के अंदर जमाना नहीं करवट चाहिए, लेकिन ये जो मानो चले तो साइंस का दौर नहीं, इसमें हर टेस्ट हमारा महकमा ने एक अहम रोल अदा करे हुआ है।
1: इस तरह साहब पिछले साल आपने सुने थे कि नहीं जानवर जो या गाय या दांत ऑपरेशन भी हो सके,
0: हर चीज का ऑपरेशन है, हर चीज का ऑपरेशन है। हालांकि हमारे को आज इतना काबिल तरीन डॉक्टर है, इतना काबिल तरीन डॉक्टर है, वे हर चीज की सर्जरी अपना सेंटर के अंदर करेगा और हर जानवर की जड़ी भी किस्म की सर्जरी हुई उसके वास्ते वह फैसिलिटी भी अवेलेबल हुआ सेंटर को, जानवर सिर्फ लेके चलो है। मुझ एरिया का कांगड़ के अंदर मारी तकरीबन इतनी तादाद में गाय जो डिलीवर नहीं हो सके, बाद में सर्जरी कर गए डॉक्टर साहबान ने नहीं करी, उस फैस कामयाब बिल्कुल कामयाब रहे। उसके बाद सर्जरी के बाद एक हिस्सा जमींदार हुआ कि वो कितनी सफाई रखा है, इसको कितना केयर रखा वो जानवर को ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए।
1: इस तरह से पहला खैर बारह का बाढ़ आम थो उतनी बाढ़ की कदर भी नहीं रहती, लेकिन आज जो बाढ़ है जो काट भी किया और मेरे को भी काफी हो गया, अगर देखो 80,000 लाख भी पहुंच गई है, तो इस करके उसी किस्म के हमने एहतियात भी कर ली है।
0: इसमें काफी एहतियात है, तमें असल गल फरमाई की जुड़ी गाँव हमने पहला जमाना में 5,000 में था कि वही गाँव आज मामला लाख में 80,000 में, लेकिन वो नतीजो ये कि मिल्क प्रोडक्शन जी हमारी चेंज हो गई, क्योंकि पहले हम किलो की गांव खरीदा था 5,000 में, आज यह गांव हमारे को है, लेकिन इसको जो हमने जेनेटिक प्रोसेस जो है वो चेंज हो गई है, इसमें चेंज हो गई है, सिमन के जरिए चेंज हो गई है, इसमें जो हम सिमन ड्रॉप करा है उसके जरिए इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गई, तो उस चीज वास्ते कि अपने मिंग वो जानवर डेरा में रखने वास्ते काफी यमुना इसकी एहतियात की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, वक्त बहुत फायदा इससे चाह सका, हम बहुत फायदा चाह सका। काफी लोग में ऐसा एरिया है जिड़ा डेरा के अंदर तरह तरह चार चार गांव एक दो दो मुलाजम ने भी रखे है, ऑलरेडी उनको डेरो भी इसको चले लगो, तो मुलाजम की जी सैलरी है वह भी इसी चीज की निकल रही।
1: सही फरमाया लगा बेरोजगारी को
0: खत्म, बेरोजगारी
1: देखो देखो सरकार भी हर एक रोजगार नहीं दे सकती, अगर इस तरफ हम माइल हो जाते हम इस तरह पे आचार हासिल कर सकते। आज भी हालांकि कई जगह में हम देखा किसी इंसान का तेरे बड़ा कितना माल है, क्योंकि मेरे को 8-10 डंगर है, लेकिन वो बाजार थे दूध लिफाफो आज भी चाहे तो लिहाजा करके इसे चेंज करने वास्ते आपने
0: हर नौजवान ना हर फर्द ना रोजगार नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम लॉन्च करी है कि एक फर्द इस ना कमाने के बाद 10 आदमी ना रोजगार दे सके, उस वास्ते नौजवान आगे आना हमारी बरादरी का

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुन।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए।
4: जहां

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: सामीन आदाब, 5:50 हो गए हैं। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबरें नाल हूं रियाज अहमद बिजाड। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा अरसा तक भारत का मुंतखब वजीर आजम के तौर खिदमात देने को रिकॉर्ड कियो कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरी वास्ते मुंतखब होया 223 खिलाड़ियों की सलाहियता की तारीफ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वतरगाम कस्बा वास्ते 16 करोड़ रुपया लागत आली वाटर सप्लाई स्कीम ना दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मी जारी। खबरां की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसा तक लगातार खिदमात अंजाम देने वाला भारत का जमहूरी तौर पर मुंतखब पहला वजीर आजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 न वजीर आजम का ओहदा को हल्फ लियो तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर से भी अगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 13 मई ना मुंतखब होने के बाद वजीर आजम की हैसियत से हल्फ लियो थे और 27 मई 1964 तक इस ओहदा पर फायज रहा था। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू को दौरे हुकूमत 4398 दिन को था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना ओहदा पर होने तक 4399 दिन पूरा कर गए और लगातार काम कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तवील तरीन मुसलसिल मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाला मुंतखब वजीर आजम बनने की तारीफ करता एक करारदाद पास की। आज नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना का मेम्बरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खड़ के इस्तकबाल कियो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे लंबा अरसा तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क का लोगों का एतमाद और भरोसा की अक्कासी करे। मरकजी वजरा डॉक्टर एस जे शंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दूजा वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका आजाद भारत का मुसलसिल सबसे लंबा अरसा तक वजीर आजम बनन पर नेक ख्वाहिशात को इजहार कियो। बीजेपी का कौमी सदर नितिन नवीन, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली का वजीरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबसे तवील अरसा तक खिदमात अंजाम देने वाला मुंतखब वजीर आजम बनन का मौका पर आज नई दिल्ली में मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नवीन ने कहो जे वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरा मुल्क में एक नई तारीख दर्ज की है। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क का लंबा तरीन मुंतखब वजीर आजम बनन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जे इस तारीखी पेशरफ्त नाल जाहिर होया जे वजीर आजम अवामी खिदमात ना यकीनी बनाउन और मुल्क की तरक्की वास्ते कितना वादाबंद हैं। कई अवामी लीडरों ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वर मुबारकबाद दी है। श्रीलंका का सदर अनुरा कुमारा दिसानायका, पप्पू न्यू गोनिया का वजीर आजम जेम्स मारपे के अलावा त्रिनदाद और टोबागो का वजीर आजम

0: देउन और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का म्यार मा बादो करन वास्ते मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का कई अहम प्रोजेक्टों को भी जिक्र कियो।
1: जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 4 लेन पोलशरम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल को दौरो कियो ते मीडिया नुमाइंदा ना गल करता कियो।
2: हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगमरमर का है, लेकिन ये संगमरमर कहीं दिखा नहीं हमें। हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है।
0: इसके नाल ही गोजरी खबरनामा मुक्यो। खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीर नशर होगा। दियो इजाजत, रब रखो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
4: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
3: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत

क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और

0: 21 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये थे आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम शबाजीत 5 मिनट सफेद वन बोजन गर्मी बुआई पर अजुक प्रोग्राम।

आदाब, ये छे आकाशवाणी। शाम चे 6:15 सबज खबर नाम है चुस ब रऊफ अहमद। गोड़ खास खास खबरन पटाक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भारत के सारे खुद ज्यादा वक्त ताम लगातार पर खदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर चारनामित गुडनिक वजीर आजम बनीमित सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुख्तलिफ मरकजी वजीरों कौमी लीडरों तो आलमी रहनुमाओं चु अमे हवाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुबारक कोर्मुत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन्द क़यादत वाजन मरकजी सरकार 10 वरी मुकम्मल करमित तो मरकजी सरकार मुल्कस मं देह तरक्की बापत जायद 1,00,000 करोड़ रुपये हंद रकम मनसूब तैयार कोर्मुत। वन खबर विस्तार सान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भारत के सारे खुद ज्यादा वक्त ताम लगातार पर खदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर चारनामित गुडनिक वजीर आजम बनीमित नरेंद्र मोदी उस 17 मई 2014 मज वजीर आजम संद अहद हलफ तुलमुत तम से पंडित जवाहर लाल नेहरू संदिस दौरे इकतदार ब्रह द्रामित यमो 1992 मज 23 मई मुंतखब सपदन पत वजीर आजम संद हैसियत हलफ तुलमुत 17 मई 1964 ताम अत अहदस पे फायज रूदमित मुंतखब वजीर आजम सन्द रंग पंडित नेहरू सन्द दौरे हुकूमत 4,93 दुहन हंद यल जन वजीर आजम नरेंद्र मोदी वनिस ताम पन्नस अहदस पे 4,399 दुहन काम करम तो लगातार पठ वन काम करान मरकजी काबिन हन कर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन्द तवील तरीन मुसलसल वक्त ताम खदमत अंजाम दिन वल चारन आमित वजीर आजम बनने सठे तारीफ करान करारदाद पास। आज कोर नई दिल्ली में मरकजी काबीना च मीटिंग दौरान काबीना क्यों मेम्बरों वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुंद खड़ा सपदित इस्तकबाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून सारे खुद ज्यादा वक्त ताम लगातार मुंतखब वजीर आजम सन्द हैसियत खदमत अंजाम दिनस पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुबारक कोर्मुत। अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन सदर जमहूरियन जे ये तवारीखी विज नरेंद्र मोदी सन्दिस क़यादतस मज मुल्क कें लूकन हंद एतमाद तो भरोसे चकासी करान। मरकजी वजीर डॉक्टर एस जयशंकर पीयूष गोयल निर्मला सीतारमन शिवराज सिंह चौहान तो दोमे वजीरों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आजाद भारत के सारे खुद ज्यादा जीठस वक्त ताम वजीर आजम बननस पे पन्न नए ख्वाहिशात पेश करम। बीजेपी कौमी सदर नितिन नवीन दिल्ली हज वजीर आला रेखा गुप्ता तो दिल्ली हंदो वजीरों कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन्द सारे खुद ज्यादा जीठस वक्त ताम खदमत अंजाम दिन वालस मुंतखब वजीर आजम बननेकिस मौकस पे आज नवी दिल्ली अंदर पूजा अर्चना नाम निगारन सत कान वो नितिन नबीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन्द क्यादतन पूरे मुल्कस मज नौ तवारीख रकम कोर्मुत। बेई पास जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते मुल्क तवील तरीन वक्त मुंतखब वजीर आजम बननस पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सठा सठा मुबारक कोर्मुत। अकिस पैगाम एल जे एन वोन अमि तवारीखी मौक सनान वजीर आजम कत हदस ताम अवामी खदमत यकीनी बनान तो मुल्क च तरक्की बापत पुर अजम। वारीहो आलमी लीडरों तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमे हवाले मुबारक कोर्मुत। श्रीलंका हिक सदर अनुरा कुमारा दसनाइके पापुआ न्यू गयान हिक वजीर आजम जेम्स मारपे तो त्रिनिदाद तो टोबेगो के वजीर आजम तो नरेंद्र मोदी मुबारक कोर्मुत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सन्द क़यादत वाजन मरकजी सरकार 10 वरी मुकम्मल करमित तो इन 10 वरियन दौरान आई लूकन हज बजाई तो पापरजाई बापत वारिया प्रोग्राम तो स्कीम शुरू करन मरकजी सरकार कें इख्तिराई प्रोग्राम हंद बदौलत चाहे

याद रहे कि मौसूफ ने 26 मई 2014 को पहली बार वज़ीर-आज़म के तौर पर हल्फ लिया था और इसके बाद वो मुसलसल मुल्क के मुंतखब वज़ीर-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुंतखब वज़ीर-आज़म की हैसियत से कल यानी मंगलवार 9 जून को उनकी मुद्दत-ए-कार के 4,398 दिन मुकम्मल हुए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुंतखब वज़ीर-आज़म की हैसियत से 4,398 दिन की मुद्दत-ए-कार के बराबर है। याद रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला और मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से मजमूई तौर पर 9,000 से भी ज़ायद दिन की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने तीसरी मुसलसल मुद्दत के लिए 9 जून 2024 को वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ

0: दिन की मुदत कार के बराबर है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर-ए-आला और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मजमूई तौर पर 9,000 से भी ज़ायद दिन की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने तीसरी मुसलसल मुद्दत के लिए 9 जून 2024 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ लिया था। इधर सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आवाम का भरपूर एतमाद उनकी क़यादत और खिदमत के जज्बे का मजहर है। सदर जम्हूरिया ने गुज़श्ता 12 बरस में मालियाती शमूलियत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और पसमानदा तबकात के फलाह के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए इकदाम को सराहा। दरअसल दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की, गुड गवर्नेंस और कौमी वक़ार के नए संग मील उबूर किए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों, खुसूसन ख़वातीन की बहबूद और खुद रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीमों को नुमाया करार दिया। इसी दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 4,399 दिनों की मुसलसल खिदमात का ये तारीखी संग मील भारतीय जमहूरियत की मजबूती और अवामी एतमाद की अलामत है। SKICC श्रीनगर में आज से इम्यूनोकॉन 2026 का आगाज हुआ। वाजिर है कि ये कॉन्फ्रेंस इंडिया इम्यूनोलॉजी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस हुआ करती है और अब की बार इसे कश्मीर में मुनाकिद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज में इम्यूनोलॉजी की अहमियत पर मुफलसल तबादला ख्याल होगा और इसी गरज से मुल्क भर के तिबी माहरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। याद रहे कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की तरफ से किया जा रहा है। आज कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन।
1: इम्यूनोलॉजी की 53वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आज SKICC में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए माहिरीन ने शिरकत की। श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ह्यूमन जेनेटिक शोबे की तरफ से इम्यूनोकॉन 2026 का इनकार किया गया। ये कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर सीक्वेंस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई की क्यादत में मुनक़द की गई है। इस मौके पर डायरेक्टर सिकमस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा कि इस नवियत की इलमी कॉन्फ्रेंस तलाब मोहकिकीन, डॉक्टर्स और फैकल्टी अराकिन को नामवर माहरीन के साथ बराह रास्त तबादला ख्याल का मौका फराहम करती है और उन्हें अपने शोबों में होने वाली ताजा तरीन पेशरफ्त से बाखबर रखती है। उन्होंने कहा कि सिकमस एक मुमताज तिबी इदारा है और डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के नाते तालीमी मियार, तहकीक और इल्मी तबादले को खुसूसी अहमियत देता है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा,
2: नई नई चुनौतियां आप सबकी परीक्षा लेने वाली है। आप सब लोग डोमेन एक्सपर्ट हैं, लेकिन सामान्य रूप से हेल्थ सेक्टर में हो रहे एडवांसमेंट को जितना मैं समझ पाया हूँ उससे मुझे लगता है कि इम्यूनोलॉजिकल साइंस में पहले जो चीजें कल्पना मात्र थी अब वो हकीकत बनती जा रही है। अभी किसी ने कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट में पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी, अब इम्यूनोथेरेपी। लेकिन इम्यूनोथेरेपी में निजी तौर पर ऐसे अनेक मरीजों को जानता हूं कि जिनको इम्यूनोथेरेपी दी गई 80% को हार्ट अटैक हो गया। मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं एकदम अधिकृत आंकड़ा दे रहा हूं, जितने लोगों को इम्यूनोथेरेपी दी गई 80% लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो जाए। तो इस पर भी सोचने की जरूरत है कि इम्यूनोथेरेपी उसमें यूजफुल है कि नहीं है। और मैं निजी तौर पर ऐसे 7-8 मरीजों को जानता हूं जिनको इम्यूनोथेरेपी दी गई 9वें-10वें डोज के बाद उनमें हार्ट की नई बीमारी आई है। अभी भी इस बात पर नए रिसर्च हो रहे हैं ताकि सॉलिड ट्यूमर्स की चुनौती का समाधान कैसे किया जाए। मेरी अपेक्षा होगी कि विभिन्न डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशन से जुड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस कॉन्फ्रेंस में कोलेबोरेशन के साथ इस बात पर चर्चा करें कि बायोमेडिकल इतिहास में जाएं तो बायोमेडिकल डिस्कवरी का इतिहास मूलतः कोलेबोरेशन और आपसी संवाद का ही इतिहास है। एक साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन दूसरे साइंटिस्ट के सवालों से जब क्रिएटिव रूप से मिल जाता है तब समाधान निकलते हैं। खुशी है इस बात की कि ये कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आयोजित की जा रही है। प्राचीन काल से ही देखें तो नॉलेज और साइंटिफिक डिस्कवरी का ये केंद्र रहा है और कल्हण की राजतरंगिणी जिन्होंने पढ़ी है उसमें इस बात का जिक्र है कि प्राचीन काल में भी श्रीनगर में अनेक अस्पताल थे जो पब्लिक हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे जब देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे हॉस्पिटल नहीं थे। आप सभी को

0: भविष्य की तैयारी अभी से शुरू जरूर करनी चाहिए।
1: तीन रोजा पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जबकि इफ्तितानी तकरीब 13 जून को मुनक्कद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुख्तलिफ मुमताज इदारों से वाबस्ता माहिरीन और फैकल्टी अराकीन ने शिरकत की और इम्यूनोलॉजी के शोबे में होने वाली नई तहकीक, जदीद रुझान और साइंसी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी हुआ। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में मुनक्कद हो रही है जब इम्यूनोलॉजी बीमारियों को समझने, जदीद इलाज मुआलजा की राहें हमवार करने में मरीजों की बेहतर निगाहदाश्त में अहम किरदार अदा कर रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्कद होने वाले साइंसी इजलास उसातिज़ा मुहक्किकीन रेजिडेंट्स और तलबा के लिए सीखने और इल्मी इस्तिफादे के कीमती मौके फराहम किए गए।
2: एस के आई सी सी श्रीनगर में इम्यूनोकॉन 2026 का इनेकाद, ये कॉन्फ्रेंस जुमे को इख्ताम पजीर होगी। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले रोज जंतर मंत्र के नजदीक मुनक्कद होने वाले मुजवजा एहतजाज में इंडिया ब्लॉक की तमाम जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। आज सरनल अनंतनाग में जराई ब्लॉक के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम सिर्फ बिजनेस रूल्स ही नहीं बल्कि अपने मुकम्मल रियासती हुकूक की बहाली चाहते हैं। सदर बांदीपुरा जिले के कई इलाकों में महकमा जंगलात की तरफ से गुजर आबादी को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इतिलात के मुताबिक यह नोटिस 3 जून को इजरा किया गया, ताहम मुतल्लिक आबादी को यह नोटिस कल यानी 9 जून को मिला और जमीन खाली करने के लिए उन्हें फकत एक हफ्ते का वक्त दिया गया है जो आज मुकम्मल होता है। मजकूर आबादी से कहा गया है कि वह आज खुद जमीन खाली करें, बसूरत दीगर सरकार कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। मुतल्लिक गुजर आबादी हद दर्जा परेशान है और पूछती है कि जिस जमीन पर वो दहाइयों से रहते आए हैं वो इसे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। एक रिपोर्ट के साथ अंजुम फिरदौस।
3: जिला बांडीपुरा के दर्जनों इलाकों में महकमे जंगलात की जानिब से मुबैना जंगलाती एराजी पर कायम रिहायशी मकानात और दीगर तामीर सिलसिले में नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें लोगों को 7 दिन के अंदर खुद ही कब्जा हटाने की हिदायत दी गई है, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की तंबिया की गई है। इन नोटिसों के इजरा के बाद खुसूसन गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले खानदान शदीद परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मुतासर अफराद का कहना है कि उनके आबा व अजदाद कई सालों से इन इलाकों में आबाद हैं और उनके पास रिहाइश के लिए कोई दूसरी जमीन या मुतबादिल जगह मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके मकानात मुनहदिम किए गए तो वह अपने बच्चों और अहले खाना के साथ कहां जाएंगे। कई मकामी बाशिंदों की आंखें उस वक्त नम हो गईं जब उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्गों की कब्रें भी इन्हीं जमीनों पर कायम कब्रिस्तानों में मौजूद हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि उनकी यादों, तारीख और जज्बात का भी मसला है। मुतासरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि इंसानी बुनियादों पर इस मामले पर गौर किया जाए और गरीब खानदानों के घरों को मुनहदिम करने से पहले उनकी बाजाबादकारी और मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि वो कानून का एहतराम करते हैं, हम उनकी दरख्वास्त है कि उनकी मजबूरियां और हालात को भी मद्देनजर रखा जाए। उनके मुताबिक बेदखली से पहले उन खानदानों के मुस्तकबिल बच्चों की तालीम और रिहाइश के मसाइल का हल निकाला जरूरी है। एक मुतासर शख्स ने दर्द भरे लहजे में कहा, अगर हमारे घर गिरा दिए गए तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, हमारे पास न कोई और जमीन है और ना ही नया घर बनाने की इस्तामत है। हम हुकूमत से सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि हमें बेघर न किया जाए और अगर मुंतकिल करना जरूरी है तो पहले हमारे लिए मुनासिब इंतजाम किया जाए। मुतासर खानदानों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत उनकी अपील पर हमदर्दाना गौर करेगी और ऐसा हल तलाश करेगी जिससे कानून की पासदारी भी हो और गरीब लोगों को बेघर होने से भी बचाया जा सके।
4: डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के पानार से हूँ। अब अर्ज इस तरह है कि हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कल नोट से दी गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना कब्जा हटाएं और हमारी जमीन को छोड़ दें और इसका कब्जा आप हटा लें। कि जनाब हमें यहाँ पे पीढ़ियों से दादा परदादा फिर बाप फिर हम रह रहे हैं तो हमारे पास यही एक रहने की जगह है और इसके सिवा हमारा कोई सहारा और चारा नहीं है। तो अगर हमें ये कहा जाता है कि आप निकल जाएं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास और कोई सूरत है ही नहीं। मुश्किल से अपना वक्त गुजारा मजदूरी या माल मवेशी पालकर अपने बच्चे और पेट पालते हैं।

0: लेकिन आज हमें कहा जाता है कि आप लेके, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आपको फास्ट एक्ट राइट के तहत जमीन अलाट भी दी जाएगी, 4 मरले 5 मरले, वो अलाटमेंट भी तो नहीं हुई, लेकिन होता हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के आला अफसरान से कि जनाब हम पे रहम किया जाए और हमें इस मुसीबत में ना डाला जाए। हम ऑलरेडी अपनी गरीबी की मुसीबत और वो जो परेशानी झेल रहे हैं।
1: अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी उस नोटिस के हवाले से जो कि बांदीपुरा जिले के गुजराबादी को इजरा किया गया है कि वो उन जमीनों को खाली करें जो कई बरस से उनके कई दहाइयों से इन उनके कब्जे में हैं। वरिष्ठ एमएलए बांदीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने इस मामले की नस्बत से अपने तहफ्फुजात का इजहार कुछ यूं किया।
2: ये जो नोटिसेस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्राइबल आबादी के कुछ घरानों को मिली है, पानार में, कुड़ारा में है, दूसरे तीसरे गाँव में जो जंगल के नजदीक रहते हैं, रेंज ऑफिसर बांदीपुर की तरफ से कि जमीन जिन पे उनके मकानात हैं, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो मवेशियों के लिए इस्तेमाल होती है उनके कब्जे में है, दुहाइयों से कब्जे में है, जेरी इस्तेमाल है। नोटिस में कहा गया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, आप खाली करो 7 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वो बेचारे परेशान हैं कि ना निशानदेही कभी हुई, ना फॉरेस्ट लैंड की डिमार्केटेड लैंड के अंदर ये जमीन है, ये कहीं बहुत दूर जंगल से बाहर, और ये बस्ती में है ये सब पैच, ये जंगल के किसी ऐसे एरिया में जो मेरी इंफॉर्मेशन है नहीं आते हैं जहां हम कहेंगे कि डिमार्केटेड फॉरेस्ट। लिहाजा में जितने भी फॉरेस्ट अथॉरिटीज हैं जिन्होंने नोटिसेस किस सवाबदीद पे उन्होंने इशू की हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा वो देख लें। और फॉरेस्ट मिनिस्टर से इस्तदा करता हूं आपके माध्यम से कि ट्राइबल आबादी को इस तरह परेशान ना किया जाए, बेघर ना किया जाए सुनवाई के वक्त।
1: एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट एमएलए बांदीपुरा बात कर रहे थे। सभी शोरा आफाक सियाती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कार लगभग 15 रोज से बंद पड़ा है। वाजिर है कि मई के आखिरी हफ्ते में गंडोला में अचानक नक्स पैदा होने की वजह से इसमें सवार सैकड़ों सयाह मुअल्लक रहे, ताहम कई घंटों की मशक्कत और मनसूबेबंद बचाव कार्रवाई के बाद उन्हें बाहिफाजत गंडोला से बाहर लाया गया। गंडोला बंद रहने के नतीजे में हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। अलबत्त हुकूमत की कोशिश यह है कि गंडोला का हर एतबार से महफूज बनाया जाए और इसी गरज से अभी इसकी मरम्मत का काम शद्दोमद से जारी है। दरअसल मई में पेश आए वाकये की वजूहात मालूम करने और गंडोला की हद दर्जा हिफाजत के लिए तजावीज पेश करने की खातिर एक कमेटी अभी काम कर रही है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम।
3: सियाती मरकज गुलमर्ग में दुनिया के सबसे बड़े केबल कार प्रोजेक्ट गंडोला में पिछले माह 25 मई को पेश आने वाला वाकया की आला सतही तहकीकात के लिए ममताज सियाती माहिर और साबिका मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर टूरिज्म कॉरपोरेशन और मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड महमूद अहमद शाह की सरबराई में तश्कील दी है। कमेटी के दूसरे मेंबरान में विकास गुप्ता डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू, तारिक हुसैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जावेद अहमद तांत्रे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल सर्कल कश्मीर, मोहम्मद इस्माइल चेची एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल हॉस्पिटल डिवीजन बारामूला शामिल हैं। इस आला सती कमेटी को वाकया की वजूहात, हिफाजती इंतजाम और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के रोकथाम के लिए सिफारिशात मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ आपको ये बताते चले कि पिछले माह 25 मई को दुनिया के बुलंद तरीन और मारूफ केबल कार निजामों में शुमार होने वाले गुलमर्ग गंडोला में अचानक खराबी की वजह से करीबन 300 सयाह जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन शामिल थी, गंडोला के 65 कैबिनों में फिजा में मोहलक होकर रह गए। वाकये के फौरन बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और मुकामी नौजवानों ने 8 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद तमाम सयाहों को सही सलामत जमीन पर उतारा। ताहम इस हादसे में कोई

0: जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, मुबालिगा नहीं होगा। इस कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर ने इस ऑपरेशन में काम करने वाले तमाम अफराद को एजारात से नवाजने का भी ऐलान किया। जहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गंडोला के दोनों फेज एक और दो पिछले 15 रोज से बंद पड़े हैं, जिसे हुकूमत को करोड़ों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। गंडोला सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है और हर रोज करीबन 10,000 सयाही सयाहती मौसम में गंडोला की सवारी करते हैं, जिसे हुकूमत को लाखों रुपए का रेवेन्यू हासिल होता था। केबल कार जराए ने बताया कि अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए गंडोला को बंद रखा गया है।
1: करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर इतराल से शबीर भट्ट की इतला की पीडीपी की जानिब से आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती, मेंबर असेंबली इतराल रफीक अहमद नायक और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जेएम कांटू ने अपने साथियों के साथ पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी लीडरान ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि उनकी शमूलियत से पीडीपी इतराल में मजीद मजबूत होगी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। पंचायत हिब डांगरपुरा में आज 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान मुहिम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर जोन डंगीवच्छा की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिन्होंने इस मौके पर नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। वाजिर है कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के फ्रंट लाइन काकुलों ने शिरकत की और मनशियात से पाक माशरे की तश्कील के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हिब डांगरपुरा के तलबा ने योगा सरगर्मियों का एक परफॉर्मेंस भी पेश किया। मरकजी वजीर ममलुकत बराए दिफा संजय सेठ ने आज मारूफ अदीब और शायर डॉ सतीश विमल को अदब और सकाफती बेदारी के मैदान में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में एजाज अता किया। वजीर मौसूफ ने डॉ विमल की रिहायशगाह पर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्होंने गुजशत 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त के दौरान वादी में रहते हुए अदब और समाज की खिदमत में अहम किरदार अदा किया है। संजय सेठ ने मजीद कहा कि ऐसे बासलाहियत अदीबों की खिदमात का एतराफ करना बाइस फख्र है। समन चौकी बल कुपवाड़ा में कल शाम एक खातून तेंदुए के हमले में शदीद जख्मी हुई और अभी श्रीनगर के एक अस्पताल में उसका इलाज जारी है। गौरतलब है कि यह पिछले 2 रोज के दौरान होने वाला तेंदुए का दूसरा हमला है। आपको याद होगा कि 8 जून को तेंदुए के हमले में एक 9 साल मासूम बच्चा अपनी जान गंवा बैठा था। चौकी बल में बिलखसूस और कुपवाड़ा जिले में बेलमूम आबादी खौफ के आलम में है और महकमा वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करती है कि जंगली जानवरों पर काबू पाने के लिए हंगामे इकदाम किए जाएं। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ फैयाज हमीद।
4: जंगली दरिंदों ने गुज़श्ता 2 रोज में कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में एक मासूम बच्चे को हलाक कर दिया, जबकि एक खातून को जख्मी कर दिया। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक चौकी बल खलबल में एक तेंदुए ने 28 साल अफसाना बेगम जोजे शौकत अहमद मीर नामी हामिला खातून पर गुज़श्ता शाम को हमला कर दिया, जिससे अफसाना शदीद जख्मी हो गई। लोगों की बर वक्त चीखो पुकार के सबब अफसाना को तेंदुए के चुंगल से मुश्किल से जख्मी हालत में बचाया गया। अफसाना का इलाज श्रीनगर के एक अस्पताल में किया जा रहा है। चौकी बल के ही मंजपथर इलाके में एक रोज कबल 8 साल तजमुल बशीर नामी मासूम बच्चे को एक तेंदुए ने हमला करके उसे हलाक कर दिया। ये मासूम अपने घर के करीब चल रहा था कि तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिसे इस मासूम की जान कुछ ही लम्हों में चली गई। उधर हफरारा से खबर है कि यहाँ के अपर प्राइमरी स्कूल

0: के करीब गुज़श्ता कई दिनों से एक रीछ गश्त करता नजर आ रहा है, जिसके सबब इस स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा व तालिबात असातिज़ा और अवाम में तशवीश बढ़ गई है। याद रहे पांच रोज कबल रीछ ने मवेशियों को घास चराने गए 50 साल अली मोहम्मद लोन को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसका इलाज कुपवाड़ा के अस्पताल में किया जा रहा है। शहरबीन को जराये से मालूम हुआ है कि इस वक्त जिले भर में 2 दर्जन से ज्यादा मुकाम पर महकमे वाइल्ड लाइफ ने पिंजरे नस्ब किए हैं, जबकि चौकीबल इलाके में जिस तेंदुए ने मासूम बच्चे को हलाक कर दिया, उसे हलाक करने के लिए बालाई हुकाम से इजाजत हासिल करने के लिए तहरीरी तौर लिखा गया है।
1: फैज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर और मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने कुलगाम जिले के नूराबाद हल्के में जालाबारी से होने वाले नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर मुतालबा किया है कि मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा अदा करने के लिए इकदाम किए जाएं और सरदस्त उनके केसीसी कर्जजात माफ किए जाएं। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने अरबल को दोबारा खोले जाने का पुरजोर मुतालबा किया है ताकि मुतालिका आबादी को रोजगार के मौके मयसर हो सकें। सदन शुपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम लगभग 7:30 बजे फिर एक बार जालाबारी हुई, जिसने मेवागात के साथ साथ धान की पनीरी और सब्जी की फसल को नुकसान ज्यादा कर दिया। गौरतलब है कि रमा सीजन में यह शुपियां जिले में होने वाली चौथी जालाबारी है। मुतासर किसान सकते में आ चुके हैं और इस बात पर नालाम भी हैं कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एक रिपोर्ट के साथ फैयाज वानी।
0: जिला शुपियां में मंगल की शाम को एक बार फिर कहरंगे जालाबारी ने सैगरू कनाल अराजी पर फिरे मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान पहुँचा कर बागबानों की बरसों की मेहनत और रवा सीजन से वाबस्ता उम्मीदों को शदीद धचका पहुँचाया। गुज़श्ता रोज शाम करीब 7:15 बजे अचानक मौसम ने करवट ली, सया बादल छा गया और चंदी लम्हों में तेज हवाओं के साथ ही तबाहकुन जालाबारी शुरू हो गई, जिससे करेवा शहदाब, देवपोरा, चौगांव, गागरन, बेमुद्दर, चेक शहदाब, मर्दचेक, कोटपोरा और दीगर कई मुल्क का जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। काफी फिक्र बात है कि ये रवा सीजन के दौरान जिला शोपियान में होने वाली चौथी बड़ी जालाबारी थी, जिसने न सिर्फ बागात को नुकसान पहुँचा बल्कि पूरे खत्ते की मैशत के हवाले से भी संगीन सवाल खड़ा कर दिए हैं। जिले में गुजश्ता कई हफ्तों के दौरान वक्त वक्त से होने वाली जालाबारी ने बागबानी शोबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बायस बाग मालिकान शदीद बेचैनी, ज़हनी इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरतेहाल से दो चार हो रहे हैं। मुकामी बागबानों ने शहरबीन को बताया कि जालाबारी से सेब, नाशपाती, आलूबुखार, चेरी, खोबारी और दीगर फलदार दरख्तों पर मौजूद फल को शदीद नुकसान हुआ है। कई मारी ने शहरबीन को बताया कि जालाबारी से मुतासिर होने वाला मेवा अक्सर मियारी हैसियत खो देता है और सी ग्रेड में तब्दील हो जाता है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू कई गुना कम हो जाती है और यही वो नुकसान है जो अक्सर सरकारी तकनीनों में पूरी तरह जायज नहीं हो पाता है।
1: शुपियां से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर

0: दिल से बना है, खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।
1: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
2: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
1: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
2: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
1: मगर ये है आज सठा द्रो?
2: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
3: पनन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंत प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन की जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in
4: इशूडिंग पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जे एंड

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड किया कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 खिलाड़ियों की सलाहियतों की सताइश। वजीर आला ने वत्रगाम कस्बे के लिए 16 करोड़ रुपए लागत वाली वाटर सप्लाई स्कीम को दी मंजूरी। और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमात अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वजीर आजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब होने के बाद वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू का दौरे हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मेंबरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी कयादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वजरा डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दीगर वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आजाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। प्रदेश बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरान ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उम्र दराजी और अच्छी सेहत की दुआ की। उन्होंने वजीर आजम की जानिब से लगातार 4399 दिनों तक इस ओहदे पर लोगों की खिदमत करने का संग मील उबूर करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ, प्रदेश बीजेपी सदर और मेंबर ए पार्लियामेंट सत शर्मा और असेंबली में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में मुल्क ने कई शोबजात में तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क का तवील तरीन मुंतखब वजीर आजम बनने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे तारीखी पेशरफ्त से जाहिर होता है कि वजीर आजम अवामी खिदमत को यकीनी बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए कितने वादबंद है ये जाहिर होता है। कई आलमी लीडरों ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस जिम्न में मुबारकबाद दी है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायका, पापवा न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मार्पी के अलावा ट्रिनिडेड और टोबैगो के वजीर आजमों ने भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 मारूफ खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बेमिसाल सलाहियतों से जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। मनोज सिन्हा ने नौकरियां

0: पाने वाले इन उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिक महकमों और सलामती एजेंसियों को इस सिलसिले में तमाम इंतजाम पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी। इनमें खासतौर पर बुनियादी ढांचा, तिब्बी निगहदाश्त, सफाई सुथराई, मवासलात और राबतकारी जैसे इकदाम शामिल हैं। हुकूमत ने वित्रगाम कस्बे के लिए केपेक्स बजट 2026-27 के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत वाली एक वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है। यह जानकारी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत पीने के पानी का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होने के साथ साथ लोगों को पीने के पानी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। वजीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी हुकूमत के उस अजम का आकाश है जिसके तहत हम जम्मू कश्मीर के सभी खत्तों और सभी लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और लाजमी खिदमात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बांडीपोरा जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लेने के दौरान अफसरान पर जोर दिया है कि वह तरक्याती प्रोजेक्टों के मयार और उनकी बरवकत तकमील यकीनी बनाने के लिए तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने गुंडी सदरकूट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। नायब वजीर आला ने कालूसा में एक अवामी वफद से भी मुलाकात की जिस दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश कई मसाइल उभारे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उभारे गए मामलात मुतलिक हुकाम की नोट्स में लाए जाएंगे। वजीर सेहत सकीना ऐतू ने आज कुलगाम जिले के अहमदाबाद इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया जिस दौरान उन्होंने लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़िराअत, दी तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने हलके इंतखाब में फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा मजीद अहल अफराद तक बढ़ाने की हिदायत देते हुए मुतलिकीन को हिदायत दी कि वह सभी अहल अफराद की निशानदेही करके उन्हें स्कीम के फवायद पहुंचाने की सही करें। उन्होंने सभी जिस्मानी तौर खास अफराद को जरूरी साजो सामान फराहम करने के अमल में सूरत लाने की हिदायत देते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है और इस सिलसिले में तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल का दौरा करके वहां तजदीदी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जियारतगाह पर बुनियादी ढांचे को दुआम बख्शने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगमरमर का है, लेकिन ये संगमरमर कहीं दिखा नहीं हमें। हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है, हमारा काम है और हमारे दिल की ये बात है, ये हमारा रूह है, इसको जितना भी हम खूबसूरत करें उतना कम है।
0: दरी असना दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ ने भी आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में जाजबियत और तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी की तारीफ की है। वजीर मौसुफ ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल का दौरा करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान वक्फ बोर्ड ने जियारतगाह पर कई तजदीदी काम मुकम्मल किए हैं। इस दौरान संजय सेठ ने आज वादी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ और कसीर लिसानी अदीब डॉक्टर सतीश विमल के घर जाकर उनकी अदबी खिदमात के लिए मौसूफ की इज्जत अफजाई की। डॉक्टर सतीश विमल हिंदी, कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी में 30 किताबों के मुसन्निफ हैं और मुल्क के अदबी उफक पर छाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातें जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले रोज हो रहे एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रियासी दर्जे की बहाली से मुतल्लिक किया गया वादा पूरा करे। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जंग का सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, नीज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मयार में इजाफा करने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। कल मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चंद महीनों में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान का सफर महज 3 घंटों तक महदूद होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्टों का भी जिक्र किया।
2: जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको,

0: निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो फोर लेन पोलशुराम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक नामवर मुआलिज डॉक्टर नजमुस साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
3: ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और खानदानों को तबाह कर सकती है और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती है। वालिदैनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ वाक रखें।
1: इधर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए कदलबल पांपोर के मंजूर अहमद मीर उर्फ मन टाइगर नामी ड्रग स्मगलर के 1,20,00,000 रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। पुलिस ने कटीपोरा टंगमर्ग के रहने वाले एक SPO खालिद नजीर खान को NDPS के एक मामले में मुलावस होने की पादाश में बरतरफ किया है। पुलिस ने सोपोर में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई को जारी रखते हुए अशफाक अहमद इतू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली मरकजी सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 बरसों के दौरान आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मरकजी सरकार के इख्तराई प्रोग्रामों से एक तरफ मुल्क तरक्की की नई मंजिलों को छूने में कामयाब हुआ है तो दूसरी तरफ आम लोगों के मयार हयात में भी बेहतरी आ गई है। जम्मू कश्मीर भी इस तरीके से मुस्तफीद हो रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां द्रावी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
4: 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्यूर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता। ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई, अब तरक्की और कंप्यूटर AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
1: मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर पंडित बिरादरी के एक ग्रुप ने आज प्रागाश हेरिटेज टूर के तहत अनंतनाग में मार्टिन सूरी मंदिर का दौरा किया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि इनमें से बेशतर लोग 36 बरस के बाद कश्मीर लौटे हैं। यहां पहुंचने पर मुसलमान बिरादरी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद में एक कश्मीरी पंडित सुरेंद्र कौल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया।
5: हमने एक इनिशिएटिव लिया प्रागाश के नाम, एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव, जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 6 से 12 तारीख को हेरिटेज कंपोनेंट है उसका और 13 और 14 में SKICC में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज है, ये समाज की आवाज। इसमें से बहुत सारे लोग 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, आज 36 साल के बाद जो घंटियां हम

0: 25 साल में सुनते आ रहे थे, मंदिरों में जाते थे, वो घंटियां आज 36 साल के बाद सुनने में आई।
1: दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर ने आलमी यौम माहौलियात के ताल्लुक से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का उनवान ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन था, जिसमें सभी मुकर्रीन ने बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजों और नई इंसानी पर इसके असरात पर रोशनी डाली। सेमिनार में माहौलियात के बचाव की खातिर फौरी कार्रवाई की जरूरत उजागर की गई। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू मेहमान खुसूसी। सागर कल्चरल फोरम सुकर पट्टन की तरफ से 13 जून को शीरी बारामूला में इश्च कशिर कशिस लोला बरव मौजू के तहत एक रोजा अदबी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मुत्तू ने आज अनंतनाग में एक मीटिंग के दौरान आने वाली यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतलिका सलामती एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि यात्रा के ऐसे इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और दीगर सलामती एजेंसियां यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज शोहामा गांधरबल में 22वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद खान ने की। मीटिंग में जरिए इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में मरकज के रोल को उजागर करते हुए वाइस चांसलर मौसूफ ने कहा कि तरक्की पसंद किसानों और ज़राअत से मुंसलिक कारखानादारों को इस ताल्लुक से एतमाद में लिया जाना चाहिए। और अब रेल से मुतल्लिक ये खबर। रेलवे डिवीजन जम्मू ने रवां मौसम के दौरान मुसाफिर और श्रद्धालुओं के रश के पेश नजर कन्याकुमारी और त्रिनेलवेली से कटरा तक चलने वाली रेलगाड़ियों में इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है। कन्याकुमारी से वैष्णो देवी कटरा तक आने वाली कन्याकुमारी हेम सागर एक्सप्रेस में एक कोच, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा त्रिनेलवेली एक्सप्रेस में भी एक कोच का इजाफा किया गया है। आखिर पर मौसम से मुतलिक ये इतला। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीना पेश खदमत है तबसरा।
3: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। किसी भी खित्ते की तामीर और तरक्की, बेहतर मईशत और इक्तिसादियात के लिए रसल और रसाइल का बेहतर निज़ाम बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सड़कों का एक बेहतर जाल कलीदी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में सड़क राबते को जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने के लिए मरकजी वजारत ने मौजूदा सरकार के मारिज़े वजूद में आने के साथ ही सरफेस ट्रांसपोर्ट को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा। नतीजा ये कि आज हमारी यूटी में सड़कों का एक बेहतरीन जाल तामीर हो चुका है। खासकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरख की सूरत में आज हमारे पास एक बैनुल अक्वामी मेयार की सड़क मौजूद है, जो सर्दियों के अयाम में अक्सर बंद रहा करती थी। सड़क का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और बाकी की तामीर भी जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है, जिसके बाद सड़क को ऑल वेदर रोड का दर्जा हासिल होगा। इस शाहरा पर तामीरी शाहकारों की सूरत में पहाड़ों को काट कर कई सुरंगें तामीर की जा चुकी हैं, जिनमें बानिहाल और नाशरी टनलें काबिले जिक्र हैं, जिनकी लंबाई बिलतरतीब 8.5 और 11 किलोमीटर है। इधर वादी कश्मीर को लद्दाख से मिलाने वाली शाहरा भी, जो मौसम सरमा के दौरान मुकम्मल तौर बंद रहती थी, जोजिला टनल की मुकम्मल होने के साथ ही ऑल वेदर रोड बनने जा रही है। गुज़िश्ता रोज ही टनल का ब्रेक थ्रू अंजाम दिया गया और इस मौके पर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर बजाते खुद मौजूद थे। 13 किलोमीटर लंबी इस टनल की बदौलत अब श्रीनगर से लद्दाख का सफर साल भर के लिए मुमकिन हो जाएगा। 6,500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर इस टनल की तकमील दोनों यूटीज यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का देरे न ख्वाब भी अब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने जहां टनल के ब्रेक थ्रू को एक तारीखी मौका करार दिया, वहीं खत्ते के आवाम के लिए ये मौका खुशी की एक नवीद लेकर आया है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे।

0: आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: हाँ, ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा। हाँ,

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से, और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बल्कि इसकी आलमी हैसियत, इलाकाई किरदार और मुस्तकबिल के इम्कानात से भी गहरा ताल्लुक रखता है। मौजू है आलमी मामलात में पाकिस्तान की नाजुक पोजीशन और मौजूदा मशरक वस्ता के तनाजे के तनाजुर में अपनी अहमियत दिखाने की इसकी कोशिशें। पाकिस्तान एक 17 करोड़ से ज्यादा अफराद का मुल्क है, लेकिन तारीख का एक असूल है, जो ममालिक अपनी अहमियत को दूसरों की ज़रूरतों के सहारे कायम रखते हैं वो इन ज़रूरतों के ख़त्म होते ही हाशिए पर चले जाते हैं। आज पाकिस्तान को इसी हकीकत का सामना है। आलमी मईशत की समत मशरक एशिया की जानब मुंतकिल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की दौड़ में अमरीका और चीन सफ़े आ रहा है। यूरोप अपने दाखिली और सलामती के मसाइल में उलझा हुआ है। मशरक वस्ता में नई सफ बंदियाँ तश्कील पा रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का आलमी बयानिया अक्सर माजी के हवालों पर खड़ा नजर आता है, जबकि दुनिया मुस्तकबिल के इम्कानात और माशी शराकत दारों को तरजीह दे रही है। मौजूदा मशरकी वस्ता के बहरान ने सूरतहाल को मजीद वाजिया कर दिया है। जब भी मशरकी वस्ता में कोई बड़ा तनाजा जन्म लेता है, पाकिस्तान के सियासी और मीडिया हलकों में फौरी तौर पर यह बहस शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए। बाज़ हलके सालसी की बात करते हैं, बाज़ मुस्लिम दुनिया की क़यादत का तस्वूर पेश करते हैं, और बाज़ ये उम्मीद बांध लेते हैं कि पाकिस्तान एक फैसला कुन सफारती कुव्वत के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया भी पाकिस्तान को इसी नज़र से देखती है? बैनुल अक़वामी तालुकात में नेक ख्वाहिशात और हकीकी सलाहियतों के दरमियान फ़र्क बहुत अहम होता है। पाकिस्तान की मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। इसे मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक की मदद की ज़रूरत रहती है। इसकी बरामदात महदूद है। साइंसी और तकनीकी मैदान में इसकी मौजूदगी आलमी मयार पर कमज़ोर है। इलाकाई सतह पर भी इसके ताल्लुकात पेचीदगियों का शिकार हैं। ऐसे में मशरक वस्ता जैसे इंतहाई हसास और ताकतवर खिलाड़ियों से भरपूर खित्ते में पाकिस्तान का असर रसूख महदूद होना कोई हैरत की बात नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान के बाद सरकारी और गैर सरकारी बयानियों में ये तासुर मिलता है कि मुल्क अब भी दुनिया के कुदरती कायदीन में शामिल है। ये तस्वुर जज्बाती तौर पर तो पुरकशिश हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकायक इसकी मुकम्मल तायद नहीं करते। आज मशरक वस्ता की सियासत का मरकज रियाज, अबू जही, तेहरान, इनकरा, दोहा और तल अबीब जैसे दारुल हुकूमत हैं। इन ममालिक के पास सरमाया, तवन्नाई, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सफारती नेटवर्क और इलाकाई असर रसूख मौजूद है। इनके फैसले आलमी मंडियों, तवन्नाई की कीमतों और इलाकाई सलामती पर बराह रास्त असर डालते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान अक्सर एक मुबसर के तौर पर नजर आता है, न कि एक फैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर। मशरक वस्ता के हालिया तनाजात के दौरान पाकिस्तान की पॉलिसी एक दिलचस्प तजाद की अकासी करती है। एक तरफ पाकिस्तान यकजहती की बात करता है, दूसरी तरफ इसे मुख्तलिफ इलाकाई ताकतों के दरमियान तवाजुन भी बरकरार रखना होता है। इसे खलीजी ममालिक से माशी ताल्लुकात दरकार है, ईरान के साथ सरहदी और जोग्राफियाई ताल्लुकात का ख्याल रखना है, चीन के मुफादात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी अहम है। यही वजह है कि पाकिस्तान अक्सर मोहतात बयानात जारी करता है। वो इखलाकी हिमायत का इजहार तो करता है, लेकिन अमली इकदामात के मामले में निस्बतन मोहतात रहता है। नाकदीन के नज़दीक एहतियात बाज़ अवकात गैर यकीनी और कमज़ोर सफारतकारी का तासुर देती है। ताहम मसला सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि खुद के तसव्वुर का भी है। पाकिस्तान में अक्सर ये ख्वाहिश पाई जाती है कि मुल्क आलमी सतह पर एक बड़े और बाअसर किरदार का हामिल हो। ये ख्वाहिश अपनी जगह काबिल फहम है। हर कौम चाहती है कि इसे इज्जत और विकार हासिल हो, लेकिन जब कौमी ख्वाहिशात और हकीकी सलाहियतों के दरमियान फासला बढ़ जाता है तो मायूसी जन्म लेती है। कई मरतबा ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान आलमी सियासत में अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करता है, जबकि दुनिया इसे ज़्यादा महदूद जाविये से देख रही होती है। यही वो मकाम है जहां बाज़ मुबसरीन कोशिशों को गैर हकीकत पसंदाना या अबस करार देते हैं। मिसाल के तौर पर जब मशरक वस्ता में कोई बहरान शिद्दत इख्तियार करता है तो बाज़ पाकिस्तानी हलके फौरी तौर पर सालसी या क़यादत की बात करने लगते हैं, लेकिन सालसी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होती। सालसी के लिए तमाम फरीकों का एतमाद, माशी असर, सफारती सरमाया और मुस्तकिल इलाकाई मौजूदगी दरकार होती है। अगर ये अनासर मौजूद न हो तो ऐसे दावे ज़्यादातर अलामती हैसियत रखते हैं। सामीन प्रोग्राम को जारी रखते हुए आइए पहले सुनते हैं आप और हम ये गज़ल।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और बात हो रही है पाकिस्तान की। अगर कोई मुल्क अपनी माशी और सफारती बुनियादों को मजबूत नहीं करता तो दूसरे ममालिक इसकी जगह ले लेते हैं। गुज़श्ता बरसों में तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने फाल सफारतकारी, सरमायाकारी और इलाकाई मुदाखलत के जरिए अपनी हैसियत में इजाफा किया है। पाकिस्तान इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सका। इस सूरतेहाल की एक वजह दाखिली मसाइल भी हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी बहरान, इदारा जाती कश्मकश और पॉलिसियों के अदम तसलसल ने पाकिस्तान की बैनुल अक्वामी साख को मुतासिर किया है। दुनिया के बड़े सरमायाकार और ताकतवर ममालिक अमूमन ऐसे शराकत दारों को तरजीह देते हैं

जो तवील उल्मुद्दत इस्तेकाम और पेश बीनी फराहम कर सके। यह एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान वाकई गैर मुतलक होता जा रहा है? शायद इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर मुतलक नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत भी नहीं रही। इसे एक ऐसे मरहले का सामना है जहां पुरानी स्ट्रैटेजिक अहमियत कम हो रही है, जबकि नई माशी और तकनीकी अहमियत अभी पैदा नहीं हुई। ये एक अबूरी कैफियत है और यही कैफियत इसे नाजुक बनाती है। मशरक वस्ता के बहरान ने इस हकीकत को मजीद नुमाया कर दिया है। पाकिस्तान तनाज़े के बारे में मौकफ तो इख्तियार कर सकता है, इंसानी हमदर्दी का इजहार भी कर सकता है, सफारती कोशिशें भी कर सकता है, लेकिन वो इन चंद ममालिक में शामिल नहीं जो इस बहरान की समत मुतय्यन कर रहे हैं। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। आखिर में ये कहना मुनासिब होगा कि किसी भी कौम की इज्जत इसके दावों से नहीं बल्कि इसकी सलाहियतों से पैदा होती है। पाकिस्तान के पास बेशुमार इम्कानात मौजूद है, लेकिन इम्कानात और कामयाबी के दरमियान एक तवील फासला होता है। मशरक वस्ता के मौजूदा बहरान ने पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है जिसमें इसकी ख्वाहिशात और इसकी हकीकी ताकत दोनों वाजिया नज़र आती है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में अहम है या नहीं, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी अहमियत को किस बुनियाद पर कायम करना चाहता है। सीधे तौर दिखता है कि इसके लीडरान जो बयान देते हैं वो सिर्फ नारेबाजी होती है और इन बयान का खालीपन साफ झलकता है, और जब खालीपन इतना साफ दिखता हो तो एतमाद और भरोसा कैसे कायम हो सकता है। सामिन, ये तो थी बात पाकिस्तान की, और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम व्यू 268.1 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीर आपको बताते चलें कि आज शब के 9:30 पर प्रोग्राम समाप्त करें सुन फनकार। प्रोग्राम में फोक सिंगर गुलजार अहमद मीर के साथ हम कलाम होंगे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलाम रसूल आखून।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन 8:30 हो रहे हैं। समाप्त करें शब खबर की पेशकश डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
1: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मंसूबे।

0: की है अंडर PMMSY। पालपोरा में वाटू में वो अभी फंक्शनल है और जो यहाँ के कुछ यूनिट होल्डर है उससे लेते हैं और उसके भी अपने जो है 4-5 यूनिट है वो अपनी फीड खुद ही तैयार करके तो अपना रोजगार उसमें कमा रहा है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास बायोफ्लाक है, नई इंटरवेंशन है।
1: बायोफ्लाक क्या है?
0: बायोफ्लाक जो है इसमें टैंक बनते हैं, 7.5 लाख का यूनिट है। तो उसमें भी सब्सिडी पैटर्न वही है 40 और 60। रास में भी है, रास में भी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें जैसा कि आप जो रेसवे में देखते हैं कि पानी कंटिन्यूस फ्लो चाहे, लेकिन रास में हमारा होता है कि उसमें जो है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करनी पड़ती है थ्रू इक्विपमेंट्स एंड टेम्परेचर जो है बाय मतलब एडवांस इक्विपमेंट्स। उसमें हमें इतना पानी नहीं चाहिए होता, ज़रूरत नहीं होता है, तो मेरा आस है। उसके अलावा हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरीज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल फीड मिल्स है, मतलब बड़ी वाली फीड मिल्स है, मतलब बहुत सारे जो है इसमें हमारे कंपोनेंट है।
1: प्रोडक्शन क्या है आप प्रोडक्शन के बारे
0: जैसे
1: पैदावार की बरामदात
0: हमारे जो है मतलब जहाँ पे
1: प्राइवेट की बात करें जो आपके अपने यूनिट्स है 3 यूनिट्स है क्या प्रोडक्शन रेट?
0: तो हमारे पिछले साल जो है 2025-26 की मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा 579 क्विंटल जो है प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन हुई है। इसी तरह 50 क्विंटल जो है गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन इन टोटल
1: 579
0: जी जी
1: जी जी
0: 579 क्विंटल अराउंड जो है प्रोडक्शन जो है इन टोटल जो है 661.24 मेट्रिक टन हमारी जो है प्रोडक्शन ट्राउट की है पिछले साल की 25-26 की।
1: तो इस साल क्या टारगेट है?
0: इस साल इंशाल्लाह जो हमारे पिछले साल जो 10 यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं हमारे HADP में अभी तक हमारे 32 यूनिट्स एस्टेब्लिश हुए हैं और जो 22 यूनिट जो है 2023-24 एंड 24-25 में एस्टेब्लिश है उनका अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा है और इंशाल्लाह जो 2025-26 का प्रोडक्शन है वो इस साल आएगा क्योंकि हमने वो पिछले साल स्टॉक किए हुए हैं तो उनको रेयरिंग टाइम अराउंड 1 ईयर लगता है तो इस साल इसकी प्रोडक्शन आ जाएगी।
1: नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं दाले ददी नाले होते हैं जैसे कि रबियारा हुआ हमारा, टोंगरी हुई हमारी या और दूसरे ये छोटे छोटे नाले हैं वहाँ आप वो सीडलिंग का सीड डालते हैं?
0: जैसा हमारा एक जो है मतलब फेमस रंबियारा नाला है इसके अपर रीचेस में हमने पिछले साल भी ब्राउन ट्रोट सीड डाला हुआ है तो इंशाल्लाह इस साल वो तैयार होगा। तो और इसमें हर साल जो है स्पोर्ट फिशरीज के काफ़ी परमिट आते हैं, होपफुली इस साल पिछले साल से ज़्यादा आएंगे क्योंकि जो हमने ब्राउन ट्रोट पिछले साल स्टार्ट किया है और उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। इसकी जो अपर रीचेज में हमने 3 बीटें डिवाइड किया है इसको, अपर, लोअर एंड मिडल बीट, और इसके लोग हमने ट्रोट स्पोर्ट फिशरीज के लिए रिजर्व रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी छोटे नाले वगैरह है उसमें जो है इसमें कैप्चर फिशरीज के हमारे पास 52 माहीगी फिशरमैन पिछले जो नेचुरल से नेचुरल वाटर रिसोर्स से फिशिंग करके अपना जो है लाइवलीहुड कमाते हैं। HADP में हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है 32 की है और उसके साथ जो है 2-3-4 लोग मतलब जैसे उनका मतलब जो है उनका कल्चर कर रहे हैं जितनी उनकी प्रोडक्शन है उस हिसाब से वो आगे जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2 या 3 आदमियों को हर कोई यूनिट होल्डर दे रहा है। इसके अलावा जो है ना हमने जो है लाइव फिशिंग वेंडर सेंटर 2 एस्टेब्लिश किए हैं उसमें भी 4-4, 5-5 लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले साल अंडर PMMSY हमने 2 फिश कयास एस्टेब्लिश की हैं और उसके साथ भी 3-3, 4-4 लोग जुड़े हुए हैं।
2: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
3: शुक्रिया तजमल। सामीन, फिशरीज या माही पालन का शोबा हमारे यहाँ काफी तादाद में नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकता है क्योंकि पानी के हमारे कुदरती वसाइल वादी को माही पालन के ताल्लुक से एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। हमारा कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ से नदी नाले, दरिया या फिर पानी के कुदरती चश्मे ना गुजरते हों। हौसला अफजा बात तो ये है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी अब माही पालन के शोबे की तरफ खास तवज्जो देने लगे हैं और कई नौजवानों हत्ता की खवातीन ने भी इस ताल्लुक से कामयाबी की कई कहानियां रकम की हैं। शोपियां जिले में निजी सतह पर कायम किए गए ट्रॉफ फार्म्स और सरकारी इमदाद के ताल्लुक से जब हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने कुछ नौजवानों के साथ बात की तो उन्होंने अपने तासरात यूं बयां किए।
4: मेरा नाम है वसीम सिद्दीक शेख, मैं कजडोरा से बिलोंग करता हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पड़ता है। मैंने 2013-14 में ये यूनिट एस्टेब्लिश किया है। 2013 में मैंने अपनी MSc कंप्लीट किया है बॉटनी में। फिर जॉब की थोड़ी परेशानी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने एक प्रोग्राम हमारे गाँव में एक वहाँ पे मुनाकद किया जिसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ऐसा कुछ स्कीम मिलता है इसमें। तो फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से कॉन्टेक्ट करके हमने

0: वहाँ पे अप्लाई किया
1: जी।
0: अप्लाई करने के बाद उन्होंने ये सेंक्शन किया है हमारा ये फार्म, तो जिसमें हमने उस टाइम बनाए थे 3 रेसवेज, जो गवर्नमेंट का जो इसमें सब्सिडी आई थी उस टाइम 1.5 लाख कैश, और उसके बावजूद उन्होंने दिया हमें उस टाइम 3000 फिंगरलिंग्स और 300 केजीज ऑफ फीड, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड उस टाइम हुई और उसी से हमने ये
1: यूनिट स्टार्ट
0: किया
1: जी।
0: तो तब से अभी हमारा यूनिट चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब कोई नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे हम अपना जो है अच्छा रोजगार हमें ये प्रोवाइड कर रहा है।
2: शाहिद अली मीर बर्थी पर शोपियान छ ऐसे यूनिट है।
1: कुछ अच्छा था कैपेसिटी, कुछ प्रोडक्शन छात
2: प्रोडक्शन छ ऐसे काफी आज, मगर थोड़ा से आप इस कलातन आप से पत के काम यवन आज करीबन करीबन करन 4000 पीस आज स्टॉकिंग पर ईयर 4000 स्टॉकिंग छ ऐसे गसन करीबन करीबन 8 रेतन में छ तैयार आसन आज सोरी 8 रेत बाद छ ऐसे सेल लागन आज खालिस ता जरत नेरन तम मजीव छ मे कम से कम 50-60 क्विंटल गाड़ इन बनाव छ सन पहलगाम पेटन तिम छ मे पवन पनिस फार्म छट कनन आज मार्केटिंग छ असली मेवन 8 टन आज मगर पनिस फार्मस पर प्रोडक्शन खाली 40 क्विंटल तान है 2019 में जिथे मैं ग्रेजुएशन मकलो करत आज मैं दपन छी बेहत क्या करो यथे आज का उपाय ओस नेवन किहिन आज आइत उछ आज यह ना आप छस बोंट किन आसन आंगन में आज जबरदस्त स्प्रिंग सोर्स असल गारियो द दुख छना साल इस्तरावे तंग गार फार्म 2019 में बिल्ली रेगुलेशन स्कीम थ्रू आज जते से एडी एस समदा दे शबीर सोबन तमे सा तुम उछ आज करमत आज इशू करमत तमे सातन 2019 में आज
1: कोतो गोत कास्ट
2: तमे सातो सात लगन कमे कास्ट आज आज बोंट शावरी सात वरी खर्चा ते बड़े तन पठन 3.5-4 लाख तम सात लग खर्चा बनानस
1: वन
2: सब्सिडी आज तम सात गल पा तम सात गरीबन करीबन अक्स रेस पे 5,70-6,000 रुपये गम सात सब्सिडी आज अस तकरीबन गरिक चोर नफर आज अगर यो हको जो नफर तथा मुलाजिम थे मगर अच्छे गरिक कर्मित वन अथ मज कन्वर्ट सारी गरिक बस अथ स
3: और अब पेश होगा प्रोग्राम का इदारिया, पेश कर रही है हमारी साथी आबिदा अख्तर।
4: शुक्रिया जज़ा। समीन, हमारी वादी को कुदरत ने बेपनाह आबी वसाइल से मालामाल किया है। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारी बेएतनाइयों और खुदगर्जियों की वजह से हमारे पानी के अक्सर व बेशतर वसाइल अब आलूदा हो चुके हैं। ताहम ये बात भी एक मुसलमा हकीकत है कि हम अगर लगन और मेहनत से काम करें तो हम एक तो पानी के इन वसाइल को आलूदगी से पाक कर सकते हैं और दूसरा इनसे हमारे नौजवान फिशरीज के शोबे के तहत रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत कश्मीर ने माही परवरी के शोबे को फरोग देने के लिए HADP और मरकजी मानत वाली स्कीमों का एक वसी दायरा शुरू किया और इस ताल्लुक से अगर हम हुकूमत से ये गिला करें कि वो इस शोबे की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है तो बेजा होगा। हाँ, इस ताल्लुक से अगर कोई कमी बेशी है तो वो हम में है। हमारे नौजवान हर वक्त सरकारी नौकरियों के पीछे लगे रहते हैं और सरकारी नौकरियों के इंतजार में न जाने कितने नौजवान अपना कीमती वक्त जाया करते हैं। मछली की तलब और खपत को देखते हुए हमारे देही इलाकों के नौजवान अपने बल्कि अपने पूरे कुंबे के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर इसमें जरूरत इस अम्र की है कि हमारे नौजवान कमर हिम्मत कसें और मेहनत और लगन से ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में रोजगार के मौके तलाश करने की कोशिश करें। सरकार को भी चाहिए कि वो ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में जिस कदर हो सके ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करे और के लिए जरूरी है कि हमारे मुतल्लिका हुकाम को अपने दफातर से निकलकर लोगों की दहलीज पर जाकर इन स्कीमों और प्रोग्रामों के ताल्लुक से बेदारी पैदा करनी चाहिए। यही माही परवरी के शोबे को फरोग देने और बेरोजगार नौजवानों की खातिर रोजगार के मौके पैदा करने का एक बेहतरीन वसीला हो सकता है।
5: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समय 8:45 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप हिंदी खबरें समाप्त करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने

0: इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समय शब के 9 बज चुके हैं। समय

0: रक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी, जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा, जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
0: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वज़ीर आज़म मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वज़ीर आज़म मोदी की फ़र्ज शिनासी के साथ खिदमत और क़यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने बरसों से भारत की इक्तसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वज़ीर आज़म मोदी की क़्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मरापे और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वज़ीर आज़म मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इक्तसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोबा खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन
3: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए कारोबारी अफराद ने PM मुद्रा योजना कर्ज से फ़ायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और ख़ुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार

0: पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटीज की जदीद कार्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
2: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर का अंदाज़ा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपये के कर्ज जात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज़ कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी श्रीनगर समय 9:30 अक वक्फ पद बोजू तो प्रोग्राम सुन फनकार
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: بوزن والن سلام عرض کران سامن محترم قشر موسیقی چھ بیون بیون شعبہ تو امیک اک اہم شعبہ چھ چھکر تو روف یمن لکن صوفیت سیت لوائک ہوئی چھ یا یمن قشر صوفی موسیقی سیت لوائک ہوئی چھ تم

0: مس چھُے ملریان شراب شیٖشن
1: مس چھُے ملریان

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन शब के 10 बज रहे हैं। एक वक्फे के बाद प्रोग्राम समाप्त करें। हेलो महफिले गजल।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: महफिले गजल,
3: गजलों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम।
4: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
3: महफिल गजल सजा करती है बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे।
5: दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। वो आए हैं पुकार के हमारी महफिल में, जैसे बुझे हुए चरागों में जिंदगी उतर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्त।

दोस्तों, गजल सिर्फ शायरी नहीं है, ये तो वो खामोश जज्बात हैं जो लफ्जों का लिबास पहनकर जब बाहर आते हैं तो सीधा दिल को छू लेते हैं। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ हसीन यादें और आपकी पसंदीदा गजलों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये महफिल हमारी अकेले की नहीं है, ये हम सब की महफिल है। इसके रंग तभी निखरते हैं जब आपकी आवाज़ हमारे स्टूडियोज तक पहुंचती है। हर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक हम इस स्टूडियो में बैठकर आपकी फरमाइशों को अपनी डायरी में दर्ज करते हैं और आपके जज्बातों को रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा राबता कायम करने का एक जरिया है ये खास नंबर 2480

0: हेलो, महफिल
1: हेलो,
0: गजल।
1: सलाम अलैकुम इरम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आपकी पूरी टीम कैसी है?
0: बिल्कुल ठीक है।
1: उनको सलाम कहिएगा मेरी तरफ से।
0: वालेकुम अस्सलाम। क्या हम जान सकते हैं किन से बात हो रही है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, साहिल डार बात कर रहा हूँ जनाब साहब आचार से।
0: तो साहिल, आज कौन सी गजल
1: इंशाल्लाह
0: सुनेंगे?
1: इंशाल्लाह हमारे दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी।
0: बिल्कुल, आप हमारे बहुत पुराने लिसनर्स हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो, ईमेल्स के ज़रिए हो। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है उन लिसनर्स का जो हमारे साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उनसे बात करके, उनसे गुफ्तगू करके हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है।
1: शुक्रिया दीदी आपका।
0: तो साहिल, आज कौन सी गज़ल सुनेंगे?
1: आज मुझे जगजीत सिंह की आवाज़ में एक गज़ल सुननी थी, पत्थर के खुदा पत्थर के सनम पत्थर के इंसान पाए है।
0: बिल्कुल, ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे आपकी ये पसंदीदा गज़ल। आपके साथ कोई साथी?
1: जी मेरे भाई वो मुश्ताक और इम्तियाज, और एक गौडरा गांधरबल से फारुक अहमद मलिक,
0: जी
1: और एक मीरपुरा से नज़ीर अहमद कुंदू और बशीर अहमद कुंदू और एजाज अहमद हमदानी।
0: ठीक है साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल।

0: हेलो महफिले गजल।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम जी, ठीक हो?
0: वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लाल हसन गोजर काल पंजे से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: शुक्र खुदा का, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ होनी चाहिए। आज कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
1: बेवफा से प्यार होता है, मुन्नी बेगम की आवाज़।
0: बेवफा से भी प्यार होता है, मुनी बेगम जी की आवाज़ में ये गजल है।
1: जी जी,
0: आपके साथ कोई साथी जो ये गजल सुनना चाहेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ है शमीम अहमद गोजर, मोहम्मद खलील गोजर, जावेद अहमद गोजर और मेरा भाई जलालुद्दीन गोजर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप तक जरूर पहुंचाएंगे आपकी पसंदीदा गजल। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम।
1: आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: कैसे हैं मैडम जी? आप ठीक हो
0: बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी? मैं वरागम बीरवा से, मैं नईम मलिक आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: नईम, कैसे हैं आप?
1: बस अल्लाह ताला का फजल करम होने चाहिए, आपकी दुआ से मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। खेती बाड़ी का सीजन है, आज दुकान तो बंद है, सोचा है कि खेती बाड़ी का काम भी करूंगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब खेती बाड़ी का काम, जो वो थल लगाने का सीजन है ना यहाँ
0: जी
1: पर,
0: जी जी जी
1: अभी तो लगभग बस 10-15% लोगों ने यहाँ पर वो काम किया था, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो हमने भी सोचा कि आज मैं खेत पर जाऊंगा, और खेत पर काम करने के साथ साथ ही आपकी याद भी आई, इस प्रोग्राम की याद भी आई।
0: तो आपने वहीं से कॉल लगा लिया हमें,
1: बिल्कुल, और वहीं से मैंने कॉल लगाई।
0: तो आप अभी खेतों में काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आज कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
1: अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में एक शेर खूबसूरत अर्ज करना चाहता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल इरशाद।
1: कहते हैं दिल आपकी याद में उदास है, दिल आपकी याद में उदास है, बस आपसे मिलने की आश है, बस आपसे मिलने की आश है। न जाने कितने लोग हमारे पास हैं, न जाने कितने लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमारे लिए आप ही खास है।
0: बहुत ही अच्छा शेर आपने सुनवाया नईम। तो कौन सी
1: जगजीत
0: गजल आज आप सुनेंगे?
1: सिंह की खूबसूरत आवाज में ये गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
0: जी।
1: यही गजल सुनना चाहता हूँ अपने इन दोस्तों के साथ। सबसे पहले जो इस वक्त हमारे साथ जो खेत पर काम करे ये भी सुनेंगे। अगर मैं नाम लूंगा तो 5-6 लोग हैं हम। मेरा भाई रियाज मलिक है, दो सिस्टर तबर रानी तबस्सुम है, तनागुर खान साहब जो पीर अल्ताफ खान साहब हैं, अब्दुल्ला खान, तनवीर अहमद खान, नावपुरा चाड़ोरा से ये खालदा जी हैं, हिमो जान भी सुनेंगे, और साथ ही सर मेरी प्यारी सी बेटी हाल ही फिलहाल ने उसने जन्म लिया था,
0: माशाल्लाह।
1: वो भी सुनेंगे हमारे साथ।
0: नईम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम।
1: शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो महफिले गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, हमें एक गजल की फरमाइश करनी थी।
0: पहले अपना तारुफ कराइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैं बिस्मा जी कॉल कर रही हूँ, बरजला से।
0: बिस्मा कैसी हैं आप?
1: शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ।
0: बिस्मा आज कौन सी गजल की फरमाइश करना चाहेंगी?
1: नुसरत फतेह अली साहब खान की आवाज में। इतना बन्ना सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कह ना तो माना करो। जी मुझे एक कुछ ना मतलब शायर, थोड़ी सी चंद शायर मैं कहूंगी, किसी के बारे में कहना है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपसे मोहब्बत करके किसी और से हमें मोहब्बत नहीं हुई, आपसे दिल लगाने के बाद किसी और से हमारा दिल लगा ही नहीं, आपको देखने के बाद किसी और को देखने की जरूरत नहीं।
0: इसमें बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। इसके अलावा आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है।
1: एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ, काफी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। बताइए आप कैसी है, आपकी पूरी टीम ठीक है?
0: बिल्कुल, हमारी टीम भी बिल्कुल ठीक है, और आपकी दुआ जब तक हमारे साथ है, हमारे लिसनर्स का साथ जब तक हमारे साथ है, तो
1: हमारी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है। तो मेरे साथ है डॉक्टर अरशद बुर्जा और डॉक्टर सईद इरम कादरी और मोहित कुरैशी और मैं हूँ और गुलजार अहमद मीर और सबा।
0: बिस्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक हमसे जुड़ने के लिए और हम तक कॉल करने के लिए। आपकी फरमाइश जरूर आप तक पहुंचाएंगे।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज।

0: आएगा।
1: वक्त की रफ्तार को भला कौन रोक पाया है, पता ही नहीं चला कि कब एक घंटा गुजर गया और हमारी इस हसीन महफिल को सिमटने का वक्त हो गया। जान दोस्तों, अगली मंगलवार हमें हमारी कॉलर्स की कॉल्स का इंतजार रहेगा हमारे फोन नंबर 2480364 पर। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन, आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी खबरें समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7

0: सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.

हसन गोंडपुरी। गोजी प्रोग्राम रोज की तरह शाम के 5 बजे नशर होगा। देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम गमी बाहर हिंद खतर नशर होगा शाम के 6:05 पर। जमीन हालात वाकत पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन पेश होता है शाम के 7 बजे और प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त रहेगा रात के 8 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25

0: 20 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hai, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: On this occasion, NDA adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Nabin said, a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Mr. Nabin said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू लेकर आई हूँ आपका प्रोग्राम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमें से शहर की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ। किसी के दिल में बसना कुछ बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना कोई खता तो नहीं, गुनाह तो ये जमाने की जर में तब हो, क्या ये जमाने वाले खुदा तो नहीं।

ऐसा भी इत्तेफाक मुझे 12 हुआ, ऐसा भी इत्तेफाक मुझे 12 हुआ कि मैं उनसे मिला हूं, उनसे ही उनका पता पूछता हुआ।

यूं तो हजारों रास्ते हैं जिंदगी के सफर में, पर पता है सुकून सिर्फ तब मिलता है जब वो मेरा हाथ थाम कर कहती है कि हाँ चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।

समय हुआ है 12:29 और 52 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। जी हाँ, लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। तुम जैसा कोई प्यारा भी तो नहीं इस जमाने में।

न समझ थी न कोई तजुर्बा था हमें, न कोई समझ थी न कोई तजुर्बा था हमें, बस एक चेहरा देखा और उसमें ही खो गए। वो पहली मोहब्बत का जादू ही ऐसा था कि बिना कुछ कहे हम उनके दीवाने हो गए।

कुछ कहे बिना तेरा मुस्कुराना मुझे आज भी याद है। नजरें मिलते ही तेरा पलकें झुकाना आज भी याद है। छूकर गुजरी थी जो हवा मेरे मन को, उस हवा का मुझे दीवाना बनाना आज भी याद है।

कुछ तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। कुछ तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। पतझड़ में भी वक्त से पहले पत्ते शाखों से नहीं गिरते।

दोस्तों, समय हुआ है अब समाचारों का। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। गीत सुहाने लेकर रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिक अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को

0: कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Naveen said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised his leadership and contributions to India's growth and global standing. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Hailing Prime Minister Modi as the doyen of all Indian Prime Ministers, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said, Russia hopes Mr. Modi will continue to strengthen India-Russia relations. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that Parliament is not merely a platform for lawmaking but the highest expression of the aspirations, expectations and concerns of the people. He said an association with Parliament provides

दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन अल्फाज के साथ कि ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है, ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है कि हर पल इस दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है।

धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। अब आ भी जा कि सिर्फ तेरा ही इंतजार है।

ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ले चलो वहां जहां बस सुकून का हो नूर।

जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, बस दुआ है कि कहीं भटको नहीं राहों में, बस यही दुआ।

होश में रहना अब मुमकिन नहीं हमारे लिए, होश में रहना अब मुमकिन नहीं हमारे लिए, हम तो बस जी रहे हैं इन नशीली आंखों को देख।

जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, मेरी आंखों का नूर और मेरी दुनिया भी तुम्हारे ही बीच समाई।

तेरे बगैर सोनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल। तेरे बगैर सोनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल। तुम्हें नहीं पता कि तुमसे ही महकेगा मेरा घर आंगन और हर एक महफिल।

जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, एक बार देखो तो सही कि हम भी तुम्हारे प्यार के काबिल हैं।

सारा जहां भूल बैठे हम उस एक ही पल में, सारा जहां भूल बैठे हम एक उस एक ही पल में कि बस इतना ही याद है कि तुमसे निगाहें मिली थीं।

अभी कुछ ही समय में होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

0: दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Nabin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes the India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised him. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The Defence Ministry has signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy. The project will have a minimum indigenous content of 75%. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Bulgaria's Prime Minister Ruman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jayashankar highlighted India's strong bilateral ties with Bulgaria and the opportunities arising from the growing India-Bulgaria strategic partnership. He also stressed the need for closer cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile global environment. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. Indian Railways has launched nationwide fire safety audits at railway stations to strengthen passenger safety. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas for improvement and to better protect passengers and railway assets. The railway ministry has said the audit will cover key infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment.

दोस्तों समय हुआ है 2:11:03 और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आपके साथ साथ निभाने आ गई हूँ। अंजू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और इस घंटे रहेंगे बहुत ही मधुर गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, तुम इस कदर याद आकर हमें बहुत बेचैन करते हो।

पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, और जब जिक्र मोहब्बत का होता है, यकीन मानो तुम बहुत याद आते हो।

कुछ कहते हैं हमसे कि अभी उम्र देखकर थोड़े ही होती है ये मोहब्बत, अब इस नादान दिल को कौन समझाए।

दोस्तों रात सुरमई सुन रहे हैं आप और 2:31:19 अंजु है आपके साथ और ये सफर अभी और आधे घंटे का है, रहे मेरे साथ।

सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में, सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में। सुन माँ, सब छोड़कर जाने को मन भागे है पिया की गलियों में।

कुछ इस कदर खोए रहते हैं हम तुम्हारी यादों में, कुछ रहते हैं हम तुम्हारी यादों में कि तुम्हारे बिना अब कोई नाम हमें याद ही नहीं रहता।

तुम देख लेना, चाहे बदल जाए ये सारा जहां, पर मेरा प्यार कभी ना बदलेगा। अब तेरे बिना जीना नहीं, और मरते दम तक और दिल धड़कने तक बस ही बस तुम्हारा ही रहेगा।

चलिए इनके गले शिकवे तो चलते रहेंगे और अब हमारे भी चलने का वक्त आ गया है क्योंकि अर्चित पांडे आ गए हैं स्टूडियो में और कह रहे हैं भी अब जल्दी से सीट खाली करो। तो भाई मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगे अर्जित पांडे हमराही लेकर 3:10 पर। आपसे भी कहूँगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरे यानी अर्चित के साथ।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, आज के इस प्यारे से गीत जिसके बोल है तुझे देखा तुझे चाहा।

मोहम्मद रफ़ी जी और सुमन जी की आवाज़ में तुझे देखा तुझे चाहा। मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

तुमसे ओ हसीना, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। कोई अच्छा या बुरा हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है, कोई अच्छा या बुरा हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा, और अगर हमें ज़रूरत ना हो तो वही बुरा लगता है। क्योंकि सूरज तो एक ही होता है, जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में कुछ कम अच्छा लगता है। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कदर हम थे तन्हा की तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:36 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनूं।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

कोई हो ना हो मेरे पास, कोई हो ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त यानी अर्चित के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

आशा भोसले जी की आवाज में हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। 3:49 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, बाकी का तो नहीं पता, हम आपसे जरूर मिलते रहेंगे। किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए तो कहां उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो, उसे संभाल कर रखिए।

दिल है जो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:55 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन, कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपेई की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, जिसे लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं, आपका दोस्त अर्चित।

कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल है, जाइए आप कहाँ जाएंगे।

कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह बेकार नहीं होती है। बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों न पड़ी हो, घड़ी चाहे बंद ही क्यों न पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। 4:25 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसको ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना। 4:31 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही अच्छा सा गीत अभी अभी आपने सुना। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:37 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

किशोर कुमार जी की आवाज में गाता रहे मेरा दिल। कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 4:44 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखिए। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखिए। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:55 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।